0: ओड़ी साहिब हुए दयाल कृपा करता स्वीकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म ने हमें परमाता कसमै का महल पाए सी कसमै पावे सो करे मनो चिंदया सो फल पाए सी तांदर गए पैदा जाए सी तांदर गए पैदा जाए सी
1: कोई गावे रागी नाती पीती बहु पहाड़ दिलदार नहीं हार हार पी दे।

0: काट जप माली धान मलेछा खाई अंतर पूजा पड़े कते बस निंतर का भाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज श्री बदाय तिन घर ब्राह्मण पूरे नाम

से श्री दरबार साहब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवन कर रहे थे। मेगावेव 143.6 मीटर यानी 877 किलो हर्ट्ज थे। असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर के 6 बजे जा रहे हैं। हूं तो कुछ ही पलों बाद आओ सुनते हैं हिंदी समाचार साढ़े दिल्ली केंद्र तो।

चोरों वाट निहारा सावल मोड़ मुहारा देश नारंग दे गए गुलाम फरीद दे इस कलाम दे नाल ही नेबरहुड सर्विस दी पंजाबी सेवा दी पहली सभा हुण इत्थे खत्म हुंदी है। एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे अमृतसर केंद्र तो बोल रहे हां। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस उधर 9870 किलोहर्ट से तें खां सवाए तवां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस विस ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफ्रेडिश ते बुझ सकना है। प्रोग्राम शुरू थी चुका है, डिटेल्स कुछ मित्र हैं थोड़ी देर में तवां हमेशा भगत करम साहब के बुधना तें खां कोई तफसर पेश कंदो। अज मां अदबी गुलशन प्रोग्राम तहत जनाब अनिल खेमाणी का नंढ कहानी बुधना तें खां कोई कलाम पोए प्रोग्राम जे आख़िर में खास खास खबरूं नशर कई वेंदियूं। इन लाइ प्रोग्राम जी तफ़सील तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधो। हींअर छो त भगत कराम साहब खे ॿुधूं।

0: आनंद सा मक्खन और मिश्री कटाओ प्याल व्यासम जो हरे
1: भगत करम साहब जन जी मिश्रे आवाज में कलाम दे रहे हैं आकाशवाणी जी सिंधी सरस आए हिंदर पेश है तबसरो ट्रांजेक्शन बिल्कुल मुफ्त शख्स का शख्स तीन बिल्कुल मुफ्त इन अलावा वापर में जो ट्रांजेक्शन कई वन से 96% बिल्कुल मुफ्त नो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस जो ताजो आंदो हो तई जो शख्स का शख्स के पेमेंट ते रकम अदायगी ते को भी फर्क कोन पवंदो को असर कोन पवंदो यूपीआई बिल्कुल मुफ्त है खास करे मानन सा मानन जे ट्रांजेक्शन ते रकम अदायगी ते पो भले केतरो भी मकदार छो न होजे वापरन के 2000 रुपए ते रकम अदायगी मुफ्त है उनखा वधिक जका है ते ते तमाम न जे बराबर फी लगाई वेंदी इन अलावा जो नंढा व्यापारी तीन के रकम अदायगी केतरे भी अमाउंट तीन बिल्कुल मुफ्त है नतीजन लगभग 96% यूपीआई ट्रांजेक्शन बिल्कुल मुफ्त रहन एमडीआर सिर्फ किन खास व्यापारी लगनी जो ट्रांजेक्शन 2000 रुपये का होंद साफ तो कहें कि एमडीआर न तो का ढल है न का वरी का चार्ज है या फी है जी सरकार या वरी एनपीसीआई तखा वसूले रही है एमडीआर जगह रकम अदायगी है सा एक पेमेंट इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट के विराया वेंदो तंहिंमें बैंकू ए पेमेंट एप्लीकेशन प्रोवाइडर अची था वन तेजी कार्रवाई के दुरुस्त नमूने से कन्दा रहन ए यूपीआई इकोसिस्टम के अना फैलाएं इन सृष्टि के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 तहत आंदो हो तंहिंमें यूपीआई स्टेयरिंग कमेटी ते ढांचो तैयार कर लंबे अरसे के यूपीआई के बरकरार रखने के लिए शख्स में नन्हन वापर के वधिक चार्जेस का बचाव मैसर कराया वेंदो मू का मू तई शख्स का शख्स तीन यूपीआई ट्रांजेक्शन बिल्कुल मुफ्त रहनी पोए भले नाणे जो अमाउंट यानी चाहिए कि केतरो भी अमाउंट हुए सो मुफ्त रहंदो का भी ट्रांजेक्शन फी का भी प्लेटफॉर्म फी या बी का भी फी कें भी शख्स के मथा पैसा मोकलण या वठण ते यूपीआई जरिए कान लगाई वेंदी इन तरह का 70% यूपीआई ट्रांजेक्शन जी एमडीआर ढांचे का बाहर बिल्कुल मुफ्त रहनियो परसेंट मर्चेंट यानी कि शख्स का वी व्यापारी तीन ट्रांजेक्शन जी 2000 रुपए तीन से बिल्कुल मुफ्त है ग्राहक के भी टैक्सेस के भी चार्जेस यूपीआई जरिए को पे करणी नंढा व्यापारी जो रस्से से फुटकर विक्रो कंदा से 1,00,000 रुपये महीने तई परसेंट परसेंट ट्रांजेक्शन बिल्कुल मुफ्त वी खेन का भी एमडीआर चार्जेस को डेणी पवंदी इन शर्त से रस्ते विक्रो कड़ पाड़ेसरी नंढा दुकान ए बया जे नंढा नंढा व्यापारी तीन ते को खर्च को लगंदो

4 सैकड़ो जी महज़ तमाम ई मामूली एमडीआर फी जेका लॻंदी सां शख़्स खां वठी वापरींदा आहिनि जिन जी ट्रांज़ेक्शन अमाउंट जेको आहे सो 20,000 रुपए खां वधीक आहे। जेको एमडीआर अमाउंट हासिल कयो वेंदो सो पेमेंट इको सिस्टम पार्टिसिपेंट मंझि विरायो वेंदो बैंकुनि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स मंझि ऐं यूपीआई एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स मंझि। 75,000 रुपए खां वधीक यूपीआई ट्रांज़ेक्शन ते एमडीआर जे नाणे खे 300 रुपए ते मुक़ररु कयो आहे, इन खां वधीक पैसा कोन लॻंदा। 2,000 रुपए ताईं जेके बि ट्रांज़ेक्शन आहिनि से बिल्कुलु मुफ़्त आहिनि। इन खां वधीक रेलवे दूर मुआसिलात इंश्योरेंस फ्यूल ऐं ज़रई इनपुट ते 2,000 रुपए खां वधीक यूपीआई ट्रांज़ेक्शन ते फ्लैट 5 रुपया पर ट्रांज़ेक्शन लॻाई वेंदी। फ्लैट 5 रुपया लॻाइण जो मक़सदु आहे कि लाज़मी अवामी सेवाउनि ते इन खां अलावा वापारी कारवाइनि ते घणो बोझ न विधो वञे। म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज स्टॉक ब्रोकर ऐं डीलर्स ते पिण एमडीआर जेका आहे सा महज़ 2.5% लॻाई वेंदी ऐं हिन जी वधि में वधि फी जेका आहे सा 300 रुपया पर ट्रांज़ेक्शन आहे। इन जो मक़सदु आहे कि सभई माण्हू रस्मी तौर ते माली मार्केट में पंहिंजो हिसो वठी सघनि, कार्रवाई करे सघनि। एमडीआर जेका चार्ज आहे सा मर्चेंट पेमेंट इको सिस्टम लाइ, पर कस्टमर ते ग्राहकनि ते का बि यूपीआई पेमेंट चार्ज कोन हई वेंदी। बैंकुनि खे सलाह ॾिनी वई त उहो ध्यानु रखनि त वापारी एमडीआर चार्जिस ग्राहकनि जे मथां न थोपनि, छो यूपीआई एप्लीकेशन में कंहिं बि तरह जी फी या लिकल चार्जिस कोन लॻाई वेंदियूं। शख़्सनि खे पिणु चयो आहे त हू बे इंतिहा यूपीआई जो इस्तेमालु करे सघंदा आहिनि। इन में का बि मंथली रिस्ट्रिक्शन्स कान्हे, कई बि बंदिशूं कोन्हनि ऐं नई का वरी का मथी या अपर फी लिमिट आहे। रोज़ानो जेके बैंकुनि ऐं एमपीसीआई ट्रांज़ेक्शन जी जेका मंज़ूरी ॾिनी आहे सा 1,00,000 खां वठी करे 5,00,000 रुपए ताईं आहिनि। इन खां अलावा ॿियो के बि थ्रेशहोल्ड चार्जिस कोन आहिनि। अॻे अख़र ॿुधाइनि था त एमडीआर सिर्फ़ उन्हनि 4% वापारी ट्रांज़ेक्शन ते ई लॻंदियूं, जंहिंजी माना आहे कि 96% वापारी ट्रांज़ेक्शन बिल्कुलु मुफ़्त रहंदियूं, इन ते को असरु कोन पवण वारो आहे। एमडीआर चार्जिस में जेको फंड ईंदो सो यूपीआई एक्सेप्टेंस इन जे बरकरार रहण खे ऐं ॿियनि नंढनि नंढनि वापारनि खे शुमार करण ते लॻायो वेंदो। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007 कानून तहत इन ढांचे खे आंदो वियो आहे। इन ढांचे तहत लंबे अरसे जे लाइ यूपीआई खे बरकरार रखियो वेंदो। हुन शख़्सनि खे कंहिं बि तरह जे नुक़सान खां बचाव ॾिनो वियो आहे ऐं कंहिं तरह जूं बि चार्जिस कोन लॻायूं वेंदियूं। तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

अहमियत अंगेज अंदाज में पेश कयो वेंदो आहे। बई हिक ॿिए जे साम्हूं अची हिक टेबल ते वेठा, कुझु गंभीर मुद्रा में कोल्ड कॉफी सिप करण लॻा। मदन पंहिंजी महबूबा राणीअ सां गॾु अची रोमा जे भर में वेठो। राणी ख़ासि कोन्हे, तब ॻाल्हाईंदी ईअं आहे ॼण संसार जे सभिनी हसीन औरतुनि जी सिरमोर आहे। मदन सिगरेट वात में विधो त राणीअ लाइटर बारे अॻिते वधायो। मदन थैंक्यू चई रोमा ॾांहुं मुखातिब थियो। छा हाल आहे भाभी, अॼुकल्ह मां नज़र ई कोन ईंदा आहियो, ऐं तूं ॿुधाए राजेंद्र, तुंहिंजो छा हाल आहे? फिकरे में कुझु कोन हो, लेकिन राजेंद्र खे ॼण ठठोलीअ जो लहजो लॻो। तॾहिं बि गंभीरता सां पुछाई, तूं ॿुधाए कॾहिं था इंग्लैंड भॼी वञो? भाई, पंहिंजी त सॼी योजना फेल थी वई आहे। 3 सालनि जी योजना ठाही हुई, पर किथां बि कर्ज़ नथो मिले। रोमा चयो, भारत खे हेतिरो सारो कर्ज़ मिले थो ऐं भारत जे नागरिक खे नथो मिले, अजब जी ॻाल्हि आहे। मदन चयो, भाभी अॼुकल्ह भारत खे बि कर्ज़ नथो मिले, त भारत जे नागरिक खे केरु ॾींदो? पर अव्हां जी योजना कहिड़ी आहे? राजेंद्र पुछो। रोमा चयो, इहा ई हूंदनि त हितां इंग्लैंड वेंदा, होटलनि में प्लेटूं साफ़ कंदा ऐं यूरोप जी यात्रा कंदे ऐश कंदा। अचण वक़्तु कुझु सामान खणी ईंदा जो हिते यारनि दोस्तनि खे महांगो विकणंदा, ऐं थी सघनि त उतां हिकु सपूत बि इम्पोर्ट करे ईंदा। राणीअ चयो, सपूत खां सवाइ बाक़ी जो बि थी सघियो इम्पोर्ट करे ईंदासीं। ऐं मदन खिली वेठो, लेकिन राजेंद्र खिली न सघियो। अञा बि गंभीर थी चयईं, छा बेवकूफ़ी आहे, ज़रूरु को मक़सदु खणी वेंदा हूंदा ऐं तूं मथे ठठोली थी करीं। मदन जवाबु ॾिनो, भाभी ठीकु थी चवे, काई ठठोली कान्हे। पर तॾहिं बि राजेंद्र खिली न सघियो। मदन रोमा खां पुछो, राजेंद्र जी तबियत ठीकु न आहे छा? डरी वियो आहे। राजेंद्र खुद जो मुआवनो कंदे रोमा ॾांहुं निहारियो। रोमा जवाब में सिर्फ़ मुस्कुराई। राजेंद्र खे लॻो ॼण कंहिं पराई ख़ूबसूरत औरत ॾांहुं निहारे मुस्करायो हो, ऐं हिन पाण खे निहाल थींदो महसूस कयो। मदन ऐं राणीअ खे घर अचण जो नोतो ॾेई जॾहिं राजेंद्र ऐं रोमा हलण लॻा, त राजेंद्र थोरो परभरो थी मदन खे चयो, तुंहिंजी भाभी हिकु प्राइवेट फर्म में नौकरी करणु शुरू कई आहे। मदन चयो, ॾाढो सुठो, मिठाई खारा। राजेंद्र चयो, लेकिन मूंखे पसंदि न आहे। मदन पुछो, छो? राजेंद्र चयो, घर ॿार रुली थो वञे। मदन हिकु ॼाणू डॉक्टर वांगुरु डायग्नोस कंदे पुछो, तुंहिंजा त इहे ख़्याल कोन हुआ? राजेंद्र न चयो, न ॿियो कोई कारण न आहे, पर नौकरीअ ते हिरी वेंदी त पोइ ॾाढी मुश्किल पेश ईंदी। घर जे जवाबदारियुनि जो गपल हिसो मूंखे पाण ते हमवार करणो पवंदो, जंहिं लाइ मां तयारु न आहियां। मदन थोरो मुश्कियो, जवाब में राजेंद्र बि मुस्करायो। मदन जे मुस्कुराहट में कॉफी हाउस जा चंद खण उतरी आया, जिन में विकास, तरक्की, नए इख़लाक ऐं फ़राख दिली जा बहस थींदा रहंदा हुआ। ॼण मुस्कुराहट जे ज़रिए हिन चयो, खुली दिलि जो थी, रोमा जहिड़ी पत्नी मिली अथई तॾहिं तूं नखरा करीं। मां राणीअ सां कंहिं ॻाल्हि ते एतराज़ कयां त हिन देश जी महानता मूंखे बख़्शे अकेली इंग्लैंड भॼी वञे। तोखे नौकरी पसंदि न आहे त न कराइसि, लेकिन कंहिं ठोस ज़मीन ते अच। तुंहिंजे निगाहनि ऐं लहजे में हिकु कमज़ोर शख़्स साफ़ थो नज़र अचे। राजेंद्र जी मुस्कुराहट ॼण इहो दोहिरायो हो त हिरी वेंदी पोइ मुश्किल पेश ईंदी। राजेंद्र ऐं रोमा जॾहिं घर पहुता त 10 लॻी चुका हुआ। हिकु कमरे में राजेंद्र कपिड़ा मटाईंदो रहियो ऐं ॿिए में रोमा कपिड़ा मटाइण लाइ हली वई। कपिड़ा लाहींदे राजेंद्र अनुभव करण लॻो ॼण रोमा संदसि साम्हूं कपिड़ा लाहे रही आहे, ऐं चंद क्षणनि बैदि हिन पंहिंजो पाण खे गुम थींदो महसूस कयो।
हिन

शासन के फातह थींदो महसूम कयो। हिन खे लॻो हू ख़ुद ई ख़ुद जो अपमान करे रहियो हो। हिन पाण खे हिकु ख़सीस इंसान सम्झो, लेकिन तॾहिं बि हू पाण खे पीड़ा खां आजो करे न सघियो। जॾहिं ॿिए कमरे जो दर खोले अंदर घिड़ियो त उन वक़्तु रोमा साड़ीअ खे वेड़े रही हुई। राजेंद्र हिन जे भरिसां आयो ऐं साॼी बाह में हथ विझी चयाईं, तूं नौकरी छॾे ॾे, तोखे मां चवां थो तूं नौकरी छॾे ॾे, वरना छा। रोमा हिन जे सुभाउ खां वाक़िफ़ हुई। हिन जो मन भरिजी आयो ऐं अचानक चंद कतरा आंसू हिन जे गलनि जो सिंगार बणिजी विया। हू पाण खे रोके न सघी। हिन जे मन में हिकु कड़वाहट धीरे धीरे जमा थींदी रही हुई। साहस सां हर ॻाल्हि टारण ॼाणंदी हुई, लेकिन अॼु लाइ छो उहो पाण विञाए वेठी। तोखे कंहिं अहिड़ीअ सां शादी करणु घुर्बी हुई जा तुंहिंजे भावनाउनि खे सचो साबित करे। हा, पंहिंजे प्रिमिटिव मैन खे ॿियनि कारणनि अंदरि न लिकाए, पर मां ॿुधाए थी छॾियां, मां नौकरी कान छॾींदसि, कान छॾींदसि। पंहिंजे दोस्तनि यारनि सां मिलंदी रहंदसि। तोखे जेकी करणो हुजे वञी कर। ऐं अचानक ॼण हिन जी ज़बान कटिजी वई। गलनि जी आलाण उघी कुर्सीअ में धम सां किरी पई ऐं ॼण हुन में गुम थी वई। केतिरी देर ताईं राजेंद्र ईअं फर्श ते वेठो रहियो। संदसि अखियूं बि बंदि थी वयूं। जॾहिं खुलियूं त सुबुह थी चुको हो। इहो सुबुह हिन खे ईअं लॻो ॼण राति कंहिं क़रीबी में क़रीबी रिश्तेदार जो अग्नि संस्कार करे आयो हो ऐं सुबुह जे ख़ुशनुमा फिज़ा जो संदसि लाइ कोई मुल न हो। रोमा रंधिणे में हुई। राजेंद्र वटिसि वञण जी हिमत न करे सघियो। जल्दी जल्दी तयारु थी बिना खाधे पीते घर खां ॿाहिरि निकिरी वियो। रोमा खेसि वेंदो ॾिठो, लेकिन हूअ कुझु बि पुछी न सघी। ॼण हिन जो मन वीचार शून्य थी चुको हो। नज़रनि ई नज़रनि में हिन राजेंद्र खे वेंदो ॾिठो। शाम जो राजेंद्र घर वापसि आयो त उन वक़्तु रोमा पंहिंजा वार संवारे रही हुई। अखियुनि में काजल पातो हुआईं, मुंहं ते सनो लॻायो हुआईं, मथे ते बिंदी ऐं हिकु हल्के नीरे रंग जी साड़ी। राजेंद्र अची संदसि भरिसां बीठो ऐं खेसि ईअं संभरंदो ॾिसंदो रहियो। रोमा शीशे ॾांहुं मुंहुं हूंदे बि मुस्करायो। शीशे जे मार्फत उन मुस्कराहट खे राजेंद्र पकड़े वरितो ऐं खेसि मोट बि ॾिनई। बिल्कुल शाइस्तगीअ सां रोमा जो संभरण खेसि ईअं लॻो ॼण का अभिसारिका तयारीअ में हुजे। राजेंद्र वेठो रहियो ऐं रोमा वञी चांहि ठाहे आई। चांहि जो कोप वठंदे राजेंद्र जा ॼण हथ ॾकी रहिया हुआ। हिकु बार डुक भरे खाली खाली नज़रनि सां धीरे धीरे पुछियई, सवेल आई आई छा? रोमा हिकु ॿ खण जवाब न ॾिनो, पोइ मुस्कराईंदे चयई, इस्तीफ़ा मोकिले ॾिनी अथमि। राजेंद्र ॼण विश्वास करे न सघियो। राति जो नज़ारो संदसि तन में अञा बि ॾकनी पैदा करे रहियो हो। तव्हां तां तुम ते लही आई हुई ऐं छा छा चई वई हुई। अपमान जे आग में जलंदे हिन कोशिश कई हुई समझण जी त हिन जे शख़्सियत में छा आहे जो हर को अपमान थो करे ऐं रोमा बि खेसि टॉलरेट नथी करे। हिन दिल में मञी वरितो हो त हू बेवकूफ़ आहे, लेकिन हू छा करे? खेसि समुझ में नथे आयो त हू छा करे। पछताव हू करे ॼाणे, पर इहा बि हिकु बीमारी आहे, रुगो पियो पछताव में सड़। शाम जो घर अचण ताईं राजेंद्र जी तलखी घटिजी चुकी हुई। खेसि हैरत लॻी हुई त जंहिं अर्थ खे साकार करण लाइ हिन जे ज़हन में जे लफ़्ज़ जनम वठी संदसि ज़बान ते रक़्स करण लाइ आता हुआ, से रोमा जे ज़बान ते थोरो ई अची कुचलजी विया हुआ। जंहिं अपमान जी तिखी लहर खे हिन जिस्म जे हर हिसे में ज़हर मिसल फैलियल महसूस कयो हो, उन खे शाम जो ईंदे ईंदे ॿिए रूप में वरितो हो। ॿी स्थिति जो तस्वर करे हू ला इंतिहा ख़ौफ़ में घिरजी वियो हो। खेसि ख़ुशी हुई रोमा हिन जे भावनि जी वागडोर संभाले खेसि वधीक अपमानित थियण खां बचायो हो। हू केतिरी देर ताईं रोमा जे उपकार खे मञींदो रहियो। रोमा पुछो, ठीकु आहे न? राजेंद्र कुझु कुझु न सघियो। अलबत खेसि हिकु नओं अहसास थियो। रोमा ॼण संदसि लाइ अभिसार कयो हो। चंद मिंट अॻु रोमा जे वारनि सवारनि खे मन में वरी ॾिसी रहियो हो ऐं मन ई मन में हिन रोमा

0: जे वारन ते एक लट के उंझायो जन रोमा चयो जट हिन खे लॻो अनेक सदियुनि खां पोइ हिन रोमा सां गॾु चांहि पीती हुई हिन जे तमन्नाउनि जे बाग में हिकु ख़ूबसूरत कली खिली हुई जंहिंखे हिन टोड़े पंहिंजे शख़्सियत जो अंग बणायो हो ऐं हिन पाण खे ईंदड़ हर ॾींहुं अहिड़े ई हिकु ख़ूबसूरत अहसास खे पाईंदो ॾिठो लेकिन हू रोमा जे ठीकु आहे न जो को जवाब ॾेई न सघियो हू ॾुखी थी न सघियो धीरे धीरे सिर्फ़ चांहि पीअंदो रहियो
1: जनाब अनंत खे माणिक खां हिकु नंढी कहाणी ॿुधी रहिया आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे हींअर अचो त आर्द परमी आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

आकाशवाणी जी सिंधी सर से और पेश हैं खास खास खबरों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 जो मुहूर्त कंदो, जैमें 52 मुल्क जो 600 का भी कंपनियों हिस्सों वठंदियों। भारत पाकिस्तान चीन सरहद कमीशन के थोड़े छड़ो है, इनके कें भी कानूनी जायज़ बुनियाद को

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधर हिंसर असाजे प्रोग्राम जो वक्त पुरासी रहा है वरी असा मुलाकात हिंदी सुभाने सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक साढ़े छह बजे तेसी तीन इजाजत सदाई कर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सेमिकॉन सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज कर है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री को भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज

0: विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रूपये पर मंथ सैलरी पर लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के तहत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में हैं। 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2026 तक की स्थिति समीक्षा के अनुसार इसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए जीवित चीते और उनके संतानों के साथ बोत्सवाना से हाल में लाए गए चीते भी शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 today morning at Yashobhoomi in New Delhi. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today and celebrate completion of his 25 years of public service as a head of government. To mark the occasion, a Seva Sankalp Abhiyan will be launched from his hometown, Vadnagar, in Gujarat today. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will flag off a Vadnagar to Varanasi bike rally as part of the celebrations. A report.
3: A series of welfare programs will be held at PM's birthplace in Vadnagar today on the occasion of his birthday and 25 years of his public service. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will participate in a grand Mahaarti at historic Shamishta Lake, where sacred water will be collected in a kalash and handed over to bikers travelling to Varanasi. The dignitaries will lead a foot march from the lake to Hatkeshwar Temple to offer prayers, followed by flagging off a rally of 250 bikers heading to Varanasi to spread the message of public service. Home Minister and Chief Minister will also lead a cleanliness drive at Vadnagar Railway Station today. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
2: India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said the ministry has seen reports in this regard and India's position on this matter is clear and consistent. He said there is no boundary between Pakistan and China. Mr. Jaiswal said New Delhi rejects the Pakistan-China Boundary Joint Commission, which is without any legal basis.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, टीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं और अब वक्त है कार्यक्रम संगीतिका का। इसमें आज आप सुनेंगे समृद्धि मल्होत्रा के गाए कुछ भजन। तो लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका।

शुभा, अभी आप सुन रहे थे समृद्धि मल्होत्रा को, कार्यक्रम था संगीतिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी और लेकर आई हूं आपके लिए प्यारा सा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह, एक नया दिन और अपने साथ ढेर सारी नई उम्मीदें लेकर आई है। साथियों, कहते हैं ना, हर सुबह हमें जिंदगी की तरफ से दिया गया एक नया मौका होता है। कल जो नहीं कर पाए उसे आज करने का मौका, जो खो गया उसे भूलकर आगे बढ़ने का मौका, और जो सपना देखा था ना हमने उसे पूरा करने का एक नई शुरुआत। तो क्यों ना आज की सुबह की शुरुआत एक खूबसूरत मुस्कान के साथ की जाए। दोस्तों, आप जहां भी हैं, घर में, ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी में, सफर में, या शायद चाय की प्याली के साथ हमारी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा हो, आपके चेहरे पर मुस्कान हो और आपके मन में एक सुकून हो। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारे सुबह को एक प्यारे से गीत के साथ और भी खूबसूरत बनाते हैं।

क्या खूबसूरत एहसास है ना दोस्तों, आज फिर जीने की तमन्ना है। सच कहें तो हर सुबह हमें यही तो याद दिलाती है साथियों कि जिंदगी अभी बाकी है। कभी कभी हम बीते हुए कल की परेशानियों को इतना अपने साथ लेकर चलते हैं कि आज की जो खूबसूरती है ना वो देख ही नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, सुबह कहती है जो बीत गया उसे जाने दो, आज तुम्हारे पास एक नया दिन है, इसलिए आज किसी पुरानी गलती को लेकर खुद को परेशान मत कीजिए। अगर गलती हुई है तो उससे कुछ सीखिए। अगर कोई सपना अधूरा है तो उसके लिए एक छोटा सा कदम आज उठा लीजिए। और अगर जिंदगी में कोई परेशानी है तो खुद से बस इतना कहिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि कोई भी समय रुकता नहीं है साथियों, क्योंकि जिंदगी में रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है।

0: दोस्तों सुबह की बात हो और चाय की बात ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। एक कप चाय, खिड़की से आती हल्की सी धूप, सुबह की जो ठंडी हवा होती है वो, और पक्षियों की आवाज, और अपने पसंदीदा गीत की धुन। साथियों, कभी कभी खुशी के लिए ना हमें बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां छिपी होती हैं। आज सुबह अपनी चाय या कॉफी की पहली चुस्की लेते हुए एक पल के लिए आप अपने आप से ये पूछिएगा, मैं आज किस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। हो सकता है जवाब बहुत ही साधारण हो, आपका परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, अपने घर के लिए या अपने काम के लिए, या फिर दोस्तों सिर्फ इस बात के लिए कि आज हम एक और सुबह देख पा रहे हैं। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं एक और सदाबहार गीत।
1: I reached a point where I said stardom is now very big. If stardom has to finish somewhere, but a man who is a director and a writer who is a writer, they never finish. And it is a director's medium, and I knew I could direct, I knew I could write. I want to take it across to new horizons.

दोस्तों एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ कि अपने दिन की जो शुरुआत है ना वो तुलना से मत कीजिएगा, धन्यवाद से कीजिए। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर ना साथियों अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं। किसी के पास बड़ी नौकरी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, लेकिन हमें नहीं पता कि उस व्यक्ति की जिंदगी के पीछे कितनी परेशानियां होती हैं। साथियों इसलिए अपनी जिंदगी है ना उसकी तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि देखिए आपकी यात्रा आपकी अपनी है, आपका समय आपका अपना है और आपकी जो सफलता का रास्ता है ना वो भी आपका अपना है। भले ही धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए, क्योंकि दोस्तों मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो रुकना नहीं है।

दोस्तों, आज सुबह एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। है तो छोटा सा, लेकिन साथियों बहुत गहरा है। आज हम किसी एक इंसान को मुस्कुराने की वजह देंगे, किसी एक व्यक्ति की मदद जरूर करेंगे और किसी एक पुराने गिले शिकवे को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं और अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालते हैं। दोस्तों याद रखिए साथियों, आप दूसरों के लिए जितने जरूरी हैं उतने ही अपने आप के लिए भी जरूरी हैं। इसलिए अपने मन का ख्याल रखिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए और सपनों का ख्याल रखिए, और सबसे जरूरी बात, अपने अंदर की उम्मीद को जिंदा रखिए। क्योंकि दोस्तों उम्मीद वो रोशनी है जो अंधेरे रास्ते में भी ना हमें आगे बढ़ने की वजह देती है। अब इस उम्मीद और ऊर्जा के साथ एक और खूबसूरत सा गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे हमारा सुबह का ये प्यारा सा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को एक बार फिर सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और खुशियों से भरा हो। और इस गीत के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ, लेकिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को है और 8 बजे आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सेमिकॉन से सिस्टम्स बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
5: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच थ्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में जीडी कन्ना रोड पर खाटू श्याम तेली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवानी मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
6: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
1: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
7: हाल राजकोट एमएसएमई उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो आने का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
1: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। 1.25 लाख दीयों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी H76 संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह

0: Modi's 25-year public life as Prime Minister Modi turns 76 today. Former President Ramnath Kovind, in his article in Hindustan Times, says bringing the margins into mainstream has been the most enduring achievement of Narendra Modi government. The dailies have widely noticed India lodging strong protest with Pakistan over unprofessional conduct of its navy. The Times of India writes, Pak diplomat summoned after naval vessel collide. The Indian Express writes, EPFO wage ceiling raised to 25,000 rupees, widening the social security. The Economic Advisory Council recommends ending sterilization-linked incentives as national fertility rate is well below the replacement fertility rate, writes the Hindustan Times. And finally, in a historic milestone, Sayukta Parashar becomes first woman IPS officer to lead CRPF's elite Cobra unit, states the Pioneer. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi, New Delhi this morning. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan today to mark Prime Minister Modi's birthday. India rejects so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, says Islamabad has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. U.S. Federal Reserve raises interest rates for first time in 3 years. U.S. House of Representatives passes package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. And in men's cricket, third and final T20 international to be played in Delhi this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर आज पूरे मुल्क में एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। भारत ने नाम निहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से फायदे करने का कोई इख्तियार नहीं है जिस पर उसने जबरन और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार शरह सूद में इजाफा किया है। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने रूस के अहदेदारों और उसकी मईशत के अहम सतूनों को निशाना बनाते हुए पाबंदियों के पैकेज को मंजूरी दी है। मर्दों की क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज शाम दिल्ली में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। आज से शुरू होने वाली 3 रोजा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का मौजू है सिलिकॉन से सिस्टम तक इको निजाम की तामीर। इस मौके पर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन से वाबस्ता आलमी और भारतीय कंपनियां पॉलिसी साज अहदेदार सरमायाकार तहकीकार स्टार्टअप इदारे तालीमी इदारे और तलबा शरीक होंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: कॉन्फ्रेंस में भारत में शराकतदारी सरमायाकारी इख्तरा और सलाह साजी को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुतवाजी सेशंस में डिस्प्ले इंडस्ट्री में पेशरफ्त शराकतदारी और मुश्तरका इकदाम को आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 मुल्कों के गोलमेज इजलास और खवातीन की क्यादत पर एक फोरम शामिल होगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में एक जामे वैल्यू चेन का नुक्ता नजर अपनाया जाएगा जिसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आलात और चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन एडवांस्ड पैकेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम्स तक के सफर को पेश किया जाएगा। इसमें 600 से ज्यादा कंपनियां शिरकत करेंगी और 52 मुल्कों के नुमाइंदों 400 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव और 150 से ज्यादा मुकर्रीन के साथ तकरीबन 50,000 अफराद की आमद मुतवक्के है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह और अवामी खिदमत के उनके 25 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान आज गुजरात में उनके आबाई कस्बे वार्डनगर से शुरू किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और गुजरात के वजीर आला भूपेन्द्र पटेल तकरीबात के हिस्से के तौर पर वार्डनगर से वाराणसी तक एक

0: एक रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर आज उनकी जाए पैदाइश वडनगर में बहबूद के कई प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आला भूपेंद्र पटेल तारीखी शर्मिष्ठा झील पर बड़ी महाआरती में शिरकत करेंगे, जहां पवित्र जल को एक कलश में इकट्ठा किया जाएगा और उसे वाराणसी जाने वाले बाइकर्स के सुपुर्द किया जाएगा। मुमताज अफराद झील से हटकेश्वर मंदिर तक पैदल मार्च करेंगे, जहाँ वो पूजा अर्चना करेंगे।

0: को झंडा दिखाकर रवाना करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर उनके पार्लियामानी हल्के वाराणसी में कई बड़ी तकरीबात का एहतमाम किया गया है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: जनाब मोदी की सालगिरह के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में खसूसी पूजा अर्चना और रुद्र अभिषेक का अहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी से वाडनगर जाने वाले 500 नौजवान बाइकर्स की इज्जत अफजाई की जाएगी। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर मुमताज अफराद भी मौजूद रहेंगे। इधर रियासत के वजीर JPS राठौर ने बताया है कि बाइक रैली शुरू होने से पहले पवित्र दरियाओं का जल काशी में काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जाएगा। खसूसी यात्रा के लिए गंगा, यमुना, राप्ती, नर्मदा, गोमती, बेटवा, अलकनंदा, कुआनो और सरयू समेत बड़े दरियाओं और पवित्र संगम से पवित्र जल इकट्ठा किया गया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: दिल्ली सरकार आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर चार बड़े प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है। इनमें खिदमत, लगन और अवामी शमूलियत पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा अवामी जिंदगी में वजीर आजम मोदी के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर दिल्ली सरकार एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। इसके तहत ट्रांसपोर्ट, सड़कों, पानी की निकासी, पानी को साफ करने, तालीम, बिजली, अवामी सहूलियात और शहरी इलाकों की तजीन कारी से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाएगा और कुछ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया प्रोग्राम के तहत आज कर्तव्य पथ पर 1 लाख से ज्यादा दिए रोशन किए जाएंगे। जन सेवा से, देश सेवा से तहरीक लेकर ये प्रोग्राम आवाम की शराकत और खिदमत के जज्बे का एक मजबूत पैगाम देगा। एक साथ 1,25,000 दीयों का रोशन होना लोगों की ख्वाहिशात, आशीर्वाद, शराकत और कौम की खिदमत के तय अहदबस्तगी की अलामत होगा। इस दौरान त्यागराज स्टेडियम में 11 बजे से शाम 5 बजे तक खून के का एक बड़ा कैंप लगाया जाएगा, जिसमें 2,500 यूनिट खून जमा करने का निशाना रखा गया है। दिल्ली की वजीर आला ने कहा है कि अलीपुर में GT करनाल रोड में वाके खाटू श्याम दिल्ली धाम में 108 कुंड योगा का एहतमाम भी किया जाएगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा का मंत्र और पुख्ता अहद उनके इस सफर की खासियत रही है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद के हुसूल की संत लगातार काम कर रही है। आज खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के तहत हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि किस तरह इस नजरिए को मेक इन इंडिया के जरिए अमली शक्ल दी गई है, जो मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इख्तरा का आलमी मरकज बनाने की एक बड़ी कौमी पहल है। मेक इन इंडिया पहल के तहत PLI स्कीमों के जरिए मुल्क में 20,41,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत का सामान तैयार किया गया और 14,15,000 से ज्यादा मुलाजमत के मौके दस्तियाब कराए गए, ताकि एक खुदकफील मुल्क की तामीर की जा सके। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सरकर्दा पहल मेक इन इंडिया 2014 में शुरू की गई थी। इसकी बदौलत मुल्क एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग ताकत बन गया है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की तैयारी बढ़कर 13,11,000 करोड़ रूपये तक पहुंच गई है, जबकि 2014-15 में यह महज 1,90,000 करोड़ रूपये थी। मोबाइल फोन की बरामदात में 171 गुना इजाफा हो चुका है। भारत नेट दरामदकार से नेट बरामदकार बन गया है। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड नजरिए को उजागर करते हुए वज़ीर नरेंद्र मोदी ने इसे खुदकफील भारत के लिए एक मजबूत बुनियाद करार दिया है।
4: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
2: इधर राजकोट के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर पार्थ गणत्र ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया स्कीम के जरिए एमएसएमई शोबे खासतौर पर

0: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बड़ा फायदा हुआ है।
1: हाल राजकोट एमएसएमई उद्योग काफी स्वर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है, खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट जाने शुरू हो चुके हैं।
0: इधर अहमदाबाद के एक स्टार्टअप मालिक ध्रुव पटेल ने कहा कि मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम से स्टार्टअप इदारों के लिए साजगार माहौल पैदा हुआ है। आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के तरक्की के एक अहम वसीले के तौर पर खड़ा है, जिसके तहत कौमी पॉलिसी को जमीनी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात की कामयाबी में बदल दिया गया है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
2: सिंधी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जहां मोदी की मिसाली अवामी खिदमत और वजीर आला से लेकर वजीर आजम का ओहदा संभालने तक 25 साल के उनके सफर में मुल्क की तामीर में उनके अहम रोल को सराहा। अपने पैगाम में मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने अच्छी हुक्मरानी के कई पैमाने तय किए हैं और जाम तरक्की को नई रफ्तार दी है, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। स्वच्छता ही सेवा मुहिम आज से मुल्क में शुरू की गई है। इस मुहिम का मौजू है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत विकसित भारत इस साल स्वच्छता ही सेवा मुहिम के 5 अहम सुतून हैं, जो इस तरह हैं: सफाई सुथराई की अक्सर तब्दीली के निशानजद किए गए यूनिट्स और साफ सुथरे अवामी मकामात, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी, स्वच्छता से समृद्धि। भारत ने नामनिहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से मुआहदे करने का कोई इख्तियार नहीं है जिस पर उसने जबरन और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजारत ने इस सिलसिले में रिपोर्ट्स का नोटिस लिया है और इस मामले पर भारत का मौकफ वाजे और ठोस है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कोई सरहद नहीं है। जहां जायसवाल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है, जिसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। तर्जुमान ने यह बात दोहराई कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी 1963 के नामनिहाद चीन पाकिस्तान सरहदी समझौते को तस्लीम नहीं किया और हमेशा उसका यह मौकफ रहा है कि यह गैर कानूनी और नाजायज है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आज हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जा रहा है। यह दिन 17 सितंबर 1948 को साबिका रजवाड़े हैदराबाद के भारतीय यूनियन के साथ तारीखी इंजमाम की याद में मनाया जाता है। मरकजी सरकार साल 2022 से बाजाब्ता तौर पर हैदराबाद लिबरेशन डे तकरीबात का एहतमाम करती रही है। इस साल की बड़ी तकरीब सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर होगी, जहां नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसका आगाज वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने साल 2023 में किया था। इस स्कीम के तहत 30 लाख मुस्तफिदीन के इंदराज का संगे मील हासिल किया गया है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार शरह सूद में इजाफा किया है। अफलाते जर की शरह को बढ़ने से रोकने की कोशिश में ऐसा किया गया है, जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। अमरीका में ऐवान नुमाइंदगान ने रूसी हुक्काम और उसकी मईशत के अहम सुतूनों के खिलाफ बंदिशों को मंजूरी दी है। इस इकदाम का मकसद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए जरूरी मालियाती वसाइल से महरूम करना है। मर्दों के क्रिकेट में आज भारत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 बैन अलावामी सीरीज का आखिरी मैच खेलेगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
3: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के जरिए सेमी कॉन इंडिया का इफ्तिताह किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, मोदी आज करेंगे सेमी कॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह, 600 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल। अखबार इंकलाब की एक अहम सुर्खी है, हुकूमत का पीएफ के लिए बेसिक सैलरी की हद 15,000 से 25,000 रूपये करने का ऐलान। दूसरे अखबार ने मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर भारत की मजम्मत और सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के स्वरगंगा में पंडित राजेंद्र सिंह को राग था नट भैरव। सारंगी पर संगत दे रहे थे गुलाम अली, हारमोनियम पर संगत दे रहे थे कौशिक मित्रा और तबले पर संगत दे रहे थे शारिक मुस्तफा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए अब सुनिए उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है।
3: साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि प्रबंधन किसी भी व्यवस्था या संस्था को संचालित करने की एक सफलता की कुंजी है। प्रबंधन किसी भी संस्था, संगठन या कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की कला और विज्ञान है। ये केवल संसाधनों का उपयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम समन्वय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। आज के प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते परिवेश में प्रभावी प्रबंधन की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी को। आप प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
4: धन्यवाद सर।
3: हेमेंद्र जी, ये प्रबंधन से हम क्या समझे, किस प्रकार का प्रबंधन? एक आर्थिक प्रबंधन भी है, सामाजिक प्रबंधन भी हो सकता है, वित्तीय प्रबंधन जिसे कहते हैं, और एक संस्था, ये प्रबंधन भी हो सकता है। किस रूप में आप इसे परिभाषित करेंगे, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है?
4: प्रबंधन एक ऐसा चीज है जिसको कुछ लोग जो है इसको एक करिकुलम के तरीके से देखते हैं, एक विषय के तौर पे देखते हैं, पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा हो, चाहे वो उसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी ली हो या चाहे उसने फॉर्मल एजुकेशन ली हो, चाहे उसने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली हो, पर हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा है।
3: लेकिन हेमेंद्र जी, आजकल के दौर में, आज इस भागम भाग जिंदगी में और सबको आगे निकल जाने की दौड़ लगी हुई है, इस दौर में सबको यही चाहता है कि मुझे कुछ ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो वित्तीय प्रबंधन है वो ज्यादा से ज्यादा गेन करने की होती है, इसे आप किस प्रकार देखेंगे?
4: वित्तीय प्रबंधन ज्यादा से ज्यादा गेन करने का तो है ही, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास हमेशा सीमित होते हैं, तो उनको किस तरह से उपयोग किया जाए कि उनसे जो हमें रिटर्न मिल सके, उनका उपयोग कर सके, वो मैक्सिमम तरीके से कर सके, शायद वित्तीय प्रबंधन में भी यही मूल मंत्र है। देखिए, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है या प्रबंधन का जो विचार है वो आया था कि जब किसी चीज की कमी हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, जैसे पैसे की कमी है, समय की कमी है, तो एक पहलू ये है कि जब संसाधन ज्यादा हो तो मैनेज कैसे किया जाए, एक संसाधन कम हो तो कैसे मैनेज किया जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है, समय की कमी है तो आप प्रबंधन करोगे, आपके पास वित्त की कमी है तो प्रबंधन करोगे, पर एट द सेम टाइम इसी तरह से इन्फॉर्मेशन की अबंडेंस है। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इन्फॉर्मेटिक्स में रह रहे हैं, हम जो है हर तरफ से सूचनाओं से गिरे हुए हैं। आज का जो युवा है उसके पास इतनी सूचनाएं अवेलेबल है, हम सबके पास इतनी सूचना अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आसपास के सिस्टम से, अब आपके पास जो प्रबंधन करना पड़ रहा है वो अबंडेंस का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। तो वित्तीय का जो आपने प्रश्न पूछा उसमें हम जनरली स्केयरसिटी मैनेजमेंट करते हैं कि जहां रिसोर्सेज की कमी है उनको हम मैनेज करने की बात करते हैं।
3: तो एक अच्छे प्रबंधक को, एक अच्छे मैनेजर को, उसमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए?
4: एक अच्छे प्रबंधक और एक अच्छे मैनेजर को मेरे ख्याल से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम जरूर एक बिजनेस स्कूल में भी ट्रेन करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। उसमें एक तो ये होता है कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को, सबसे बड़ी बात है कि वो इनोवेटिव, नई सोच विकसित करे, लीक से हटके करे।
3: लेकिन कई बार ये भी तो होता है कि नई सोच हमने विकसित तो कर ली, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए उसके पास संसाधन नहीं।

0: ही होते हैं, उसे किस प्रकार से मैनेज करें?
1: अभी जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं उसमें इस पे लेके ही ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। पहले बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा उम्दा आइडिया देते थे, पर इकोसिस्टम नहीं होने की वजह से वो आइडिया कभी ग्रो ही नहीं कर पाता था, वो व्यक्ति रिस्क नहीं ले पाता था। अब सरकार का भी ये एक मूवमेंट चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया जैसे है, या हर विश्वविद्यालय में हर कॉलेज में आजकल स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सेल बनाई जाती है, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति के पास आइडिया है तो वो संसाधनों की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए, इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। अब ये इकोसिस्टम रातों रात तो नहीं बन सकता है, अब इसमें एक कल्चरल शिफ्ट आ रहा है। जैसे बड़े बड़े संस्थान है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, IIT IIMs है, इनमें तो ये बड़ा एस्टेब्लिश हो चुका है कि इकोसिस्टम में आप जो है एक इनोवेशन सेल्स बनाइए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाइए, बच्चों को स्टार्टअप का मौका दीजिए। और अब Tier 2 Tier 3 सिटीज में, छोटे विश्वविद्यालयों में, इनमें भी एक कल्चर आ रहा है। और मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कल्चर जो है जब थोड़े समय बाद पूरे भारत लेवल पर आएगा तो आपका जो ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है कि आइडिया बहुत अच्छा है, अगर बीज बहुत अच्छा है पर उसको आसपास पानी, खाद, बिजली, प्रकाश ये ना मिले तो कैसे वो ग्रो करेगा। तो ये काम इकोसिस्टम अब विश्वविद्यालय कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर कर रहे हैं और सरकार कर रही है।
0: हेमेंद्र जी, शहर की बात अलग होती है, गांव की बात अलग होती है, और गांव में भी गांव की बात, यानी कि जो बिल्कुल रिमोट एरिया है वहां पर हम कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आइडिया है, अच्छे विचार हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, तो इसे किस प्रकार मैनेज किया जाए?
1: इसको मैनेज करने का सर जो मुझे तरीका समझ में आता है वो यही आता है कि हमें जब उद्यमिता का आइडिया आया या एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडिया आया तो पहले हमने कुछ समय तक ये देखा कि ज्यादातर लोग जो हैं जो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर जो समस्याएं हैं और उनका जो समाधान निकला, जैसे ये टैक्सी की एग्रीगेटर्स का आइडिया आया या जहां आया, तो हमने वहां के कॉन्टेक्स्ट में जो आइडिया डेवलप हुआ उसी को हमने यहां पर भी कॉपी करने की कोशिश करी। पर अब जो आपने ये बताया कि गांवों की समस्याएं अलग है, एक किसान की समस्या अलग है, गांव के युवा की समस्याएं अलग है, तो उनके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव है। पर अब समस्या मेन क्या है कि उनकी अवेयरनेस, जिस इंटेंट के साथ ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं, अगर इसकी अवेयरनेस को अगर ठीक किया जाए तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है तो आज का तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो अपना आइडिया सोशल मीडिया पर लगाए और उसके आइडिया में मेरिट है, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरी आपको मिल जाएगी कि कहीं गांव से कोई आइडिया निकला, किसी ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको फंडिंग की गई और वो आर डूइंग ग्रेट।
0: हर कोई चाहता है कि उसका जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो वो बढ़े, और इसके लिए वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। साथ में सरकार भी कहती है कि आप एक जॉब क्रिएटर बने, जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने, लेकिन इसमें आगे चलकर भी कई सारी परेशानियां होती हैं, तो इसको किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए?
1: जॉब क्रिएटर की जो बात है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत होंगे, और अगर विकसित भारत बनना है तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक इकोनॉमी में एक अच्छा खासा बैलेंस बना रहे, और उस बैलेंस को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाएगी कि हम जॉब क्रिएटर कैसे बने। अब जॉब क्रिएटर में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आइडिया को लेके स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग में कुछ समस्याएं आती है, उससे घबरा के वो अपना आइडिया बंद कर देते हैं या बिजनेस बंद कर देते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप का जो फेलियर रेट है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई है। पर इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी तब नई शुरुआत करते हैं, और स्पेशली युवा के अंदर वो शक्ति है, भारत के अंदर वो शक्ति है कि वो हमारी लोकल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर अगर कोई भी आइडिया थोड़ा सा भी हिट कर गया, क्लिक कर गया, तो मार्केट इतना बड़ा है कि जो हम कहते हैं ना यूनिकॉर्न बनना, वो तो अगर कोई बन गया आइडिया तो शेयर मार्केट इंडिया में इतना है कि वो यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि कोई भी आइडिया अगर आपने कंसेप्चुलाइज किया उसके लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। तो धैर्य अगर आप रखेंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, और अगर आप संसाधनों का सही से उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये स्टार्टअप फेलियर रेट है ये कम हो सकता है, सक्सेस रेट बढ़ सकता है, और सही मायने में जॉब क्रिएटर बन सकता है।
0: जी हेमेंद्र जी, आज डिजिटल युग है, तकनीकी युग है, इनोवेशन का युग है, तो इसमें जो प्रबंधन की जो कार्यशैली है, स्टाइल है, काम करने की जो शैली है, वो किस प्रकार से आज का जो डिजिटल युग है वो प्रभावित कर रहा है?
1: AI को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न आजकल आ रहा है, और प्रबंधन में आपने बिल्कुल कहा कि जो काम पहले चार लोग करते थे, जो काम रूटीन रिपीटेटिव होते थे, वो रूटीन रिपीटेटिव काम जो है वो मैनेजमेंट में जो हम सिखाते थे, ट्रेन करते थे, वो काफी हद तक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
0: तो इसका मतलब हम ये समझें कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब जगह ले रही है तो कुछ काम आसान हो गया, आपको ऐसा नहीं लगता है?
1: कुछ काम बहुत आसान हो गया है।

0: इसके प्रति जो एक ये नेगेटिव माइंडसेट बन गया है कि ये जॉब ले लेगा, मुझे लगता है कि ये ओवर स्टेटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। जब कंप्यूटराइजेशन आया तब भी एक डर था। हाँ, ये जरूर है कि एआई का मोमेंटम स्पेक्ट्रम जो आ रहा है वो बहुत हाई है, और अब वही व्यक्ति सर्वाइव करेंगे जो एआई को रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एडवांटेजेस तरीके से यूज कर पाएंगे। आप अगर ये कहें कि मैं समय के बदलाव के साथ एआई के साथ लिटरेट नहीं होना चाहता हूं, मैं एआई के कंधे के साथ कंधा मिला के लिए तैयार नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि आपको समस्या आएगी। पर जो अब डिफरेंशिएटर ये बन जाएगा कि मैं एआई को अच्छा यूज कर पाता हूं, कोई और एआई को अच्छा यूज नहीं कर पाएगा, तो मैं सर्वाइव करूंगा, उसको दिक्कत आएगी। पर ऐसा नहीं है, नए तरह के जॉब आएंगे, एआई में अपने आप में जॉब आएंगे। पर इसमें मैं एक बात जरूर आपसे ये कहूंगा, हमें एआई में भी ये समझने की जरूरत है, भारत जैसे देश में हमें सिर्फ एआई का कंज्यूमर मार्केट नहीं बनना है, एआई का यूजर मार्केट नहीं बनना है, एआई के डेवलपमेंट साइड में जाने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि पॉइंट है कि हमें देखना है कि अब हम एआई की बात कर रहे हैं तो हम एआई के यूजर है या एआई के सर्विस प्रोवाइडर है।
1: तो कम्प्लीटली हमें एआई पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए?
0: मुझे नहीं लगता है कि हमें एआई पे डिपेंडेंट होना चाहिए या हम एआई पे डिपेंडेंट कभी हो पाएंगे। एक बैलेंस है, एक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई रहेगा और वो उसका इथिकल यूज करना पड़ेगा, जिसलिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आज नहीं तो कल आएंगे, जिसमें एक डिमार्केशन लाइन बनेगी कि कब एआई को रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाए और कब यह डेंजरस हो सके।
1: सोशल मीडिया किस प्रकार से प्रबंधन को, मैनेजमेंट को प्रभावित कर रहा है?
0: सोशल मीडिया ने जो बिजनेस की रीच है, बिजनेस का कवरेज है, आइडिया की वायरलिटी है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उद्यमों को, बिजनेसों को फायदा किया है। आज मेरा आइडिया है, प्रोडक्ट है, मैं किसी भी सोशल मीडिया पर डाल देता हूं, मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं एक्सेस है, उतना मेरे पास बजट नहीं है, इतना मैं कैटर नहीं कर पाता हूं, तो मैं आराम से सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट की नीड को कैटर कर पा रहा हूं। तो सोशल मीडिया एक डबल एजेड सॉर्ड है, क्योंकि इससे मेरा रीच एंड कवरेज तो बढ़ गया, पर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन सोशल मीडिया तो रातों रात मेरे को जो है बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है, इससे फर्स्ट पे आ सकते हैं, पर एट द सेम टाइम ये जो रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो ये सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है।
1: चाहे कोई संस्था हो या फिर कोई ऐसी व्यवस्था है या कह सकते हैं कोई स्टार्टअप हो, तो उसको चलाने के लिए टीम वर्क की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसमें टीम वर्क की क्या नेतृत्व हो सकती है, इसमें किस प्रकार से एक टीम वर्क किसी भी संस्था को, किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी कंपनी को, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए भूमिका निभाती है?
0: टीम वर्क हर जगह जरूरी है। टीम वर्क आप देखते होंगे क्रिकेट के मैदान में भी, एक व्यक्ति के अच्छे खेलने से टीम नहीं जीत जाती है, पर अगर कलेक्टिवली टीम अच्छा करती है, देखिए प्लेयर्स अगर अच्छा करते हैं तो टीम अच्छा करती है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही है, स्टार्टअप में सिर्फ एक जो इन्वेस्टर है या एक जो एंटरप्रेन्योर है जिसने फंड रेज किया है उसके करने से अच्छा नहीं चल रहा है। टीम वर्क एक नेसेसिटी है। परिवार को भी अच्छा चलाने के लिए सारे परिवार के सदस्यों का सामूहिक प्रयास होता है, समाज को चलाने के लिए भी सामूहिक प्रयास होता है, देश को चलाने के लिए भी सामूहिक प्रयास होता है, उसी तरह से एक बिजनेस को चलाने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है।
1: हेमेंद्र डांगी जी, समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट और दूसरी तरफ होता है कि रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है?
0: टाइम भी अपने आप में एक रिसोर्स है, तो रिसोर्सेस में जब हम बात करते हैं तो जनरली मेन मटेरियल, मशीन, मनी और आज की डेट में मैं कहूंगा इन्फॉर्मेशन। तो हम हिस्टोरिकली ये बोलते थे कि एम्स होते हैं, मेन मटेरियल, मशीन, मनी, पर आज की डेट में मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी में से एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है टाइम, क्योंकि सबके पास समय तो वही है, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी। व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल एंड व्हाट नॉट मी सक्सेसफुल इज द टाइम मैनेजमेंट।
1: एक देखा जाता है कि जो सार्वजनिक संस्थान है, पब्लिक सेक्टर्स हैं और प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है, ऐसा क्यों, और उसमें प्रबंधन की क्या भूमिका होती है?
0: मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, उस सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी को प्राइवेट में कहीं ना कहीं ज्यादा क्लियरली मॉनिटर किया जाता है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। एक समय पे इतना नहीं मैनेज किया जा सकता है, पर अब परिस्थितियां वहां पे भी चेंज हो रही है, गवर्नेंस में इफिशियंसी आ रही है, पर एक कल्चरल शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, पर अब जो देख रहे हैं हम, अब वो फर्क नहीं रह गया है।
1: तो इसके क्या कारण हो सकते हैं?
0: उसका कारण यही है सर कि जो ये परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन इसीलिए आ रहा है कि अब जो है स्टेक होल्डर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, कंज्यूमर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, अब ओवरऑल जो सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए अब पब्लिक सेक्टर भी बहुत ही अकाउंटेबल होते जा रहे हैं और होना भी चाहिए, ये एक इफिशियंसी का पैरामीटर।
1: हमारे देश की युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और सक्षम भी है, तो इसे प्रबंधन कौशल कैसे उनसे विकसित करवाया जा सकता है या फिर कर सकती है?
0: हमारी जो शक्ति है वो यही है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, हमारी शायद एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है यूथ का जो बोलबाला है वो बहुत अच्छा है, और इस यूथ को ठीक से चैनलाइज किया जाए, इनको ठीक से मार्गदर्शन दिया जाए, इनको ठीक से परिस्थितियां दी जाए, तो ये एक कीर्तिमान रह सकते हैं, और मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर इनको क्लैरिटी ऑफ कमांड नहीं है, इनको ये नहीं नहीं पता है कि गोल क्या है।

0: तो हम वो विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। पर अगर एक डायरेक्शन दी जाए, उनको रिसोर्सेज दी जाए, उनको संकल्प दिया जाए, उनको हौसला दिया जाए, तो हम ये जो यूथ है, ये युवा है, यही हमें विकसित भारत बनाएगा 2047।
1: प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी, हम देख रहे हैं कि आज के जमाने में, आज के दौर में महिलाएं बहुत आगे निकल रही हैं। उनकी क्या भूमिका हो सकती है, किस प्रकार ये आगे लेके जा सकते हैं?
0: हम शुरू से नारियों को साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, हम तो देवी देवताओं की इकट्ठे पूजा करते थे। ये थोड़ा सा जो अभी कंसेप्ट आया है, ये वेस्टर्नाइजेशन की वजह से आया है, पर एक क्लियर शिफ्ट हमें देख रहा है। आज आप कोई भी बोर्ड की मेरिट लिस्ट उठा के देख लीजिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लीजिए, नारी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, और इकोनॉमी में भी, देश के डेवलपमेंट में भी, और विकसित भारत में भी उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये खुशी की बात है कि बहुत ही अच्छे से उसमें योगदान कर रही है।
1: प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने वक्त निकाला, और प्रबंधन के विषय में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आपने छुआ, बहुत सारी बातों को आपने उजागर किया, जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुबगाही के तहत भजन, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है आज सवेरे।
1: और श्रोताओं आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर के पन्नों पर सिमट कर रह जाती है, लेकिन कुछ तारीखें इतिहास की धारा को नई दिशा दे जाती है। 17 सितंबर भी ऐसी ही तारीख है। आइए जानते हैं आज का दिन इतिहास में क्यों खास है। 1948 में आज ही के दिन भारत के एकीकरण की कहानी का एक निर्णायक अध्याय पूरा हुआ। आजादी के बाद हैदराबाद रियासत ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। सरदार पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई ऑपरेशन पोलो नाम की

0: लड़ाई 13 सितंबर को शुरू हुई थी और 17 सितंबर यानी आज ही के दिन निजाम की सेना के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुई। शाम 5 बजे निजाम ने डेक्कन रेडियो से युद्ध विराम की घोषणा की और अगले दिन ही हैदराबाद की सेना ने मेजर जनरल जे एन चौधरी के समक्ष औपचारिक आत्मसमर्पण किया था। और 1991 में फिनिश कंप्यूटर प्रोग्रामर लिनस टोरवाल्ड्स ने इंटरनेट पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल लिनक्स का पहला आधिकारिक संस्करण जारी किया था। वहीं 2004 में भारत सरकार ने औपचारिक रूप से तमिल को देश की पहली आधिकारिक शास्त्रीय भाषा का प्रतिष्ठित दर्जा देने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। श्रोताओ, कविता जब सिर्फ शब्द न रहकर मिट्टी, स्मृतियों और संस्कृति की आवाज बन जाए तो वे अपने समय से कहीं आगे निकल जाती है। आज ही के दिन 1937 को जन्मे सीताकांत महापात्र ओडिया साहित्य के ऐसे ही महत्वपूर्ण कवि और साहित्यकार हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन, प्रकृति, परंपरा और मानवीय संवेदनाओं की गहरी छाप दिखाई देती है। उन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण समेत कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गगेंद्रनाथ टैगोर के बारे में। टैगोर परिवार की कला परंपरा में गगेंद्रनाथ टैगोर की पहचान कुछ अलग थी। वे चित्रकार तो थे ही थे, लेकिन अपने व्यंग्यात्मक कार्टून और सामाजिक टिप्पणियों के लिए भी जाने गए। उन्होंने 1917 के आसपास सामाजिक और राजनीतिक बदलावों पर व्यंग्यात्मक चित्रों की श्रृंखला बनाई। आगे चलकर गगेंद्रनाथ टैगोर ने आधुनिक कला, विशेषकर क्यूबिज्म से भी प्रयोग किए। उनकी प्रमुख व्यंग्यात्मक कृतियों में अद्भुत लोक, नभुल्लड़ और विरूप ब्रज शामिल है। श्रोताओं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही कोई चेहरा, कोई मौसम और कोई पुरानी याद हमारे सामने आ जाती है। ऐसे ही गीतों के पीछे एक नाम है, हसरत जयपुरी। 17 सितंबर 1999 को दुनिया से विदा हुए हसरत जयपुरी का असली नाम इकबाल हुसैन था। राज कपूर के साथ उनकी लंबी रचनात्मक साझेदारी ने हिंदी फिल्म संगीत को कई यादगार गीत दिए।
1: Hasrat Jaipuri developed interest in poetry at a very young age and began writing poetry in Urdu, and in the year 1940 he moved to Mumbai where he worked as a bus conductor while continuing to write and recite poetry.

0: बहार है।
1: बरसात से शुरू हुआ ये सिलसिला आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर और कई दूसरों फिल्मों तक पहुंचा। उनकी कलम ने प्रेम, इंतजार, खुशी और जिंदगी के अलग अलग रंगों को बेहद सरल और खूबसूरत शब्द दिए। जिया बेकरार है आजा सनम मधुर चांदनी में हम, ये रात भीगी भीगी बहारों फूल बरसाओ और जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिसके उन्हीं के लिखे गीत आज भी श्रोताओं के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं।
2: जी

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर आज पूरे मुल्क में एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। भारत ने नाम नेहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से मुआहदे करने का कोई इख्तियार नहीं है जिस पर उसने जबरन और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अमरीका के फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार शरह सूद में इजाफा किया है। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान ने रूस के अहदेदारों और उसकी मईशत के अहम सतूनों को निशाना बनाते हुए पाबंदियों के पैकेज को मंजूरी दी है और मर्दों की क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज शाम दिल्ली में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली की यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। आज से शुरू होने वाली 3 रोजा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का मौजू है सिलिकॉन से सिस्टम तक इको निजाम की तामीर। इस मौके पर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन से वाबस्ता आलमी और भारतीय कंपनियां पॉलिसी साज अहदेदार सरमायाकार तहकीकार स्टार्टअप इदारे तालीमी इदारे और तलबा शरीक होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह और अवामी खिदमत के उनके 25 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान आज गुजरात में उनके आबाई कस्बे वडनगर से शुरू किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और गुजरात के वजीर आला भूपेन्द्र पटेल तकरीबात के हिस्से के तौर पर वडनगर से वाराणसी तक एक बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर उनके पार्लियामानी हल्के वाराणसी में कई बड़ी तकरीबात का एहतमाम किया गया है। वजीर आजम की सालगिरह के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में खसूसी पूजा अर्चना और रुद्र अभिषेक का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी से वडनगर जाने वाले 500 नौजवान बाइकर्स की इज्जत अफजाई की जाएगी। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर मुमताज अफराद भी मौजूद रहेंगे। रियासत के वजीर JPS राठौर ने बताया कि बाइक रैली शुरू होने से पहले पवित्र दरियाओं का जल काशी में काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जाएगा। खसूसी यात्रा के लिए गंगा यमुना राप्ती नर्मदा गोमती बेतवा अलकनंदा कुरानो और सरयू समेत बड़े दरियाओं और पवित्र संगम से पवित्र जल इकट्ठा किया गया है। दिल्ली सरकार आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर 4 बड़े प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है। इनमें खिदमत लगन और अवामी शमूलियत पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा अवामी जिंदगी में वजीर आजम मोदी के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर दिल्ली सरकार एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। इसके तहत ट्रांसपोर्ट सड़कों पानी की निकासी पानी को साफ करने तालीम बिजली अवामी सहूलियात और शहरी इलाकों की तजीनकारी से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाएगा और कुछ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा का मंत्र और पुख्ता अहद उनके इस सफर की खासियत रही है और यह सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद के हुसूल की समत लगातार काम कर रही है। आज खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के तहत हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि किस तरह इस नजरिए को

मेक इन इंडिया के जरिए अमली शक्ल दी गई है, जो मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इख्तरा का आलमी मरकज बनाने की एक बड़ी कौमी पहल है। मेक इन इंडिया पहल के तहत पीएलआई स्कीमों के जरिए मुल्क में 20,41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का सामान तैयार किया गया और 14,15,000 से ज्यादा मुलाजमत के मौके दस्तयाब कराए गए, ताकि एक खुद कफील मुल्क की तामीर की जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जनाब मोदी की मिसाली अवामी खिदमत और वजीर आला से लेकर वजीर आजम का ओहदा संभालने तक 25 साल के उनके सफर में मुल्क की तामीर में उनके अहम रोल को सराहा। अपने पैगाम में मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने अच्छी हुक्मरानी के कई पैमाने तय किए हैं और जाम तरक्की को नई रफ्तार दी है, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। स्वच्छता ही सेवा मुहिम आज से मुल्क में शुरू की गई है। इस मुहिम का मौजू है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस साल स्वच्छता ही सेवा मुहिम के 5 अहम सतून हैं, जो इस तरह है: सफाई सुथराई की अक्सर तब्दीली के निशान जद किए गए यूनिट्स और साफ सुथरे अवामी मकामात, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र, रक्षा एवं सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी, स्वच्छता से समृद्धि। इस मुहिम में भारत की मुश्तरका जिम्मेदारी, जाम सफाई सुथराई और गांवों और शहरों के अवाम की शमूलियत पर खास तौर पर तवज्जो दी जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने नामनिहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से मुआहदे करने का कोई अख्तियार नहीं है, जिस पर उसने जबरन और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजारत ने इस सिलसिले में रिपोर्ट्स का नोटिस लिया है और इस मामले पर भारत का मौकिफ वाज़ेह और ठोस है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कोई सरहद नहीं है। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है, जिसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। आज हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जा रहा है। यह दिन 17 सितंबर

आज हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जा रहा है। ये दिन 17 सितंबर 1948 को साबिका रजवाड़े हैदराबाद के भारतीय यूनियन के साथ तारीखी इंजमाम की याद में मनाया जाता है। मरकजी सरकार साल 2022 से बाजाब्ता तौर पर हैदराबाद लिबरेशन डे तकरीबात का एहतमाम करती रही है। इस साल की बड़ी तकरीब सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर होगी, जहां नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। पीएम विश्वकर्मा

बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर ने समाजी जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका इस दोहे में बताया है। इस बात को दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि खिदमत और दूसरों के काम आना जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है। इंसान किसी भी दर्जे में हो, वो कुछ लोगों के लिए बड़ा होता है और कुछ लोगों के लिए छोटा। बड़े से बड़ा आदमी भी इस कुलिया से मुस्तस्ना नहीं और छोटे से छोटा आदमी भी। दरअसल ये जिंदगी एक न खत्म होने वाले दायरे की तरह है, न उसके आगाज को मुतय्यन किया जा सकता है और न उसके किसी हिस्से को नुमाया किया जा सकता है। जिस तरह पहिए के अंदर किसी हिस्से को नुमाया करने की कोशिश

पर 0.4% MDR लागू होगा। ये ग्राहक से लिया जाने वाला UPI ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है बल्कि मर्चेंट साइड फ्रेमवर्क है। जिन छोटे दुकानदारों की या कारोबारियों की UPI QR रिसिप्ट्स 1,00,000 रुपए हर महीने है उनके लिए 0 MDR व्यवस्था जारी रहेगी।

इनोवेशन की आवश्यकता रहती है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इतने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ आज की तारीख में 56 करोड़ लोग अनबोर्ड हो चुके हैं और लगभग 6.5 करोड़ आपके छोटे बड़े मार्चेंट उसमें शामिल है, लगभग 750 बैंकों के साथ भी ये लिंक, तो कितना बड़ा जिसको मैं समझता हूँ ऐसा व्यवस्था कहीं भी नहीं होगा जहाँ इतने सारे लोग जुड़े हुए होंगे किसी पेमेंट सिस्टम में, इतने मार्चेंट जुड़े होंगे और तो और इसमें लगभग 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रोज हो रहा है और लगभग 1 ट्रिलियन जो पेमेंट जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी वैल्यू जो है लगभग 1 ट्रिलियन है। आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पे ये कार्य हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है जब काम इतने बड़े स्केल पे

उसकी वैल्यू जो है लगभग 1 ट्रिलियन है। आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पे ये कार्य हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है जब काम इतने बड़े स्केल पे हो जाए तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता रहती है। अब ये इन्वेस्टमेंट की खर्चा कौन बियर करेगा, उसमें ये बिल्कुल सही है, ये आवश्यक है कि जो आम नागरिक है, जो छोटे काश्तकार है, जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको इसका कोई उनके ऊपर कोई

0: सरकार ने ये प्रावधान तो रखा है कि 2000 तक इसमें कोई शुल्क नहीं देगा, मार्केट डिस्काउंट रेट 2000 से ज्यादा अगर हो तो उसमें एक सीमा रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए तक का उसमें MDR लगेगा, मार्केट डिस्काउंट रेट। ये पैसा जो है, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले बैंक, PSP बैंक जो कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर आज कहा जाता है, और जो रिसीविंग बैंक और पेइंग बैंक, इस समय ये पैसे बचेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट और कर पाए मशीनरी में, IT में और पैसे लगाए।
1: जी विकास जी, जब हम MDR की चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी जहन में उभरता है और बहुत सारे श्रोताओं के जहन में भी होगा कि MDR का भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके का योगदान है, क्योंकि जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उन कोशिशों का लक्ष्य एक ही है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, सुविधाजनक बन सके और 2047 में हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। हम इस MDR फ्रेमवर्क पर एक के बाद एक डिटेल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि MDR और भारतीय अर्थव्यवस्था का समायोजन किस तरीके का है।
0: कोई भी अर्थव्यवस्था हो, आजकल हम IT में इन्वेस्टमेंट से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कोई काम पुख्ता हो तो एनेबलिंग सिस्टम है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो MDR से तो सरकार के पास कोई पैसे इसमें नहीं आएंगे, ये MDR के जो भी पैसे इसमें से लिए जाएंगे तो वो

उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो एनडीआर से तो सरकार के पास कोई पैसे इसमें नहीं आएंगे, ये एनडीआर के जो भी पैसे इसमें मौसम से लिए जाएंगे तो वो पैसे जाएंगे ये स्टेक होल्डर्स के पास, जो लोग यूपीआई प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। मैंने बताया ना जरा 3-4 प्लेयर्स जो उसमें है। तो अब देखिए जन धन के माध्यम से लगभग 60 करोड़ खाता खोला है और अभी केवल 56 करोड़ हमारे, एक तो क्योंकि बहुत अच्छा काम हुआ है 56 करोड़ लोग आ गए हैं, दूसरा ये है कि इसमें और भी स्कोप है लोग को ऑनबोर्ड करने के लिए। गांव के लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास वो नॉर्मल फोन है या फोन है भी नहीं, तो वो सब लोगों को अभी ऑनबोर्ड करने का और स्कोप है। और हम कैशलेस इकोनॉमी की बात जब करते हैं तो कैशलेस इकोनॉमी तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें यूपीआई को अपनाएं।

0: रखा गया। अब जब डिजिटल इंडिया स्थापित हो चुका है तो इस चरण में एमडीआर की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने की जो कीमत है सरकार इससे वो वसूली करना चाहती है?
1: नमस्कार आपको भी और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं। तो इसको हम इसी प्रकार से देखें कि 20,700 करोड़ रुपए इसको साल का चलाने का खर्चा आ रहा है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए के अप्रोक्सीमेटली किसी साल 2100, किसी को 2200, किसी साल 1900 करोड़ रुपए सरकार इसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी, एक तरह से सब्सिडी थी ये। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया और इस प्रकार ये फैल गया, लोग इसके इतने आदी हो गए, और जो इसकी सुविधा थी आप पलक झपकते ही किसी को कहीं से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको आगे अपग्रेड रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात इसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसको सस्टेनेबल तभी बना रहेगा अगर इसमें कोई छोटी सी फी लेके और इसमें लोगों को सुविधा जो मिल रही है वो लगातार निरंतर मिलती रहे। दूसरा, इसमें डेटा सिक्योरिटी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इशू है। कल को आपके सारे बैंक अकाउंट यूपीआई के जरिए जुड़े हुए, हम सब जानते हैं, जो आप बैंक अकाउंट ओटीपी के जरिए अप्रूव करते हैं वो बैंक अकाउंट आपका उसमें जुड़ जाता है। लोगों के 3-3, 4-4, 5-5 अकाउंट्स उस इंटरफेस में जुड़े होते हैं, और इसके अलावा जो पेमेंट ऐप है वो ऐप भी अपना पूरा एडमिन, तो हम पेमेंट कर देते हैं, हमारे लिए एक क्यूआर कोड हमने स्कैन किया और हमने पेमेंट कर दिया, पर उसके पीछे एक पूरी प्रणाली, एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये इसमें समझने वाली बात है कि खाली आपने क्यूआर कोड डाला और पेमेंट हो गया ये तो ठीक है, आपको तो सुविधा मिल गई, जिसने पेमेंट लेनी थी उसको भी मिल गई, परंतु इसके पीछे जो पूरी प्रणाली चल रही है उसके पीछे खर्च आता है, उसको मेंटेन करना है, उसमें नए नए अपग्रेड लाने हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाना है। तो ये सही है बात के जो छोटे व्यापारी हैं 2000 से नीचे पे तो है ही नहीं, आपको पता है जो 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन है वो तो पहले की तरह चलते रहेंगे, और P2P पर्सन टू पर्सन आपने अपने दोस्त को पेमेंट करी, रिश्तेदार को पेमेंट करी, जो कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी कि आप कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं, आप कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, वो अभी भी वैसा ही बना रहेगा चाहे कितना भी अमाउंट हो। सिर्फ वहां लगाया गया है जहां एमडीआर को मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार आ रहा है, आप अभी क्रेडिट कार्ड यहां सालों से दशकों से चल रहा है, क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हैं तो अभी भी तो आप मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे करते हैं, जो व्यापारी आपसे पेमेंट लेता है उसके ऊपर 1% कहीं 1.5%, अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट है, अमेरिकन एक्सप्रेस तो मुझे याद है 3-3.5% तक भी कई दफे ले लेता है, तो बकायदा मर्चेंट का वो कटता है। अब मर्चेंट क्यों देता है उसको, मैंने बहुत सारे मर्चेंट से इतने सालों में बात करी कि मैंने कहा भाई आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट क्यों लेते हैं, वो कहते हैं हम इसलिए लेते हैं कि ग्राहक अगर 10 ग्राहक हमारे यहाँ आए और उसमें से 4 ग्राहक के पास क्रेडिट कार्ड है, हम उनको मना कर देंगे हमारे यहाँ तो साहब ग्राहक पियो ऐसे नहीं है, कार्ड लेने की सुविधा नहीं है, तो वो ग्राहक वापस चले जाएंगे, वो ग्राहक यहाँ नहीं आएंगे, तो उसको सुविधा देने के लिए हम अपने प्रॉफिट पर थोड़े से चार्ज बर्दाश्त कर लेंगे पर हम उस ग्राहक को वापस नहीं जाने देंगे। तो ऐसे ही है क्योंकि अब कैश का प्रचलन समाप्त हो चुका है, लोगों को घर से वॉलेट जेब में रखने की आदत नहीं है, जेन ज़ी तो बिना पैसे लिए चलते हैं, बहुत सारे मुझे यंग लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमारी जेब में कोई कैश नहीं है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास UPI है, तो हमें कैश की जरूरत ही नहीं है, कहां नहीं चलता ये। तो इस बात को देखते हुए जो दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, तो एक बहुत बड़ी सुविधा 315 लाख करोड़ का साल में ट्रांजेक्शन होना, 24,000 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होना, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि पर ट्रांजेक्शन इसकी क्या कॉस्ट आती है अभी जिस लेवल पर है, तो उसमें पर ट्रांजेक्शन हमारी 6

ओपन करते हैं तो उनके जो कंपिटिटर है उनके पास लोग चले जाएंगे। आज वो इंडियन एक्सप्रेस में भी एक इंटरव्यू मॉर्निंग प्लेस का किसने कोई सर्वे किया है उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये दिया है इंटरव्यू के बाद। दूसरा जो अनलोडिंग कराते हैं अपने एप्स जैसे गूगल है यूपीआई पेटीएम है तो वो लोग भी कुछ ना कुछ उनको सम बेनिफिट्स दे उनकी जिसके तहत वो कंपनसेट उसमें हो जाएंगे। और रहा आपके एसेंशियल सर्विसेज में, वहाँ केवल ₹5 में आपके रेलवे टिकट इंश्योरेंस ये सब चीजें केवल ₹5 चार्ज रखा गया है, वो भी जो ऐप जिसका है उसी से वसूल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तो ये जो है इसको हो सकता है रिकंसिडर हो जाए, जो एसेंशियल सर्विसेज है उसमें पेमेंट और कम हो जाए या नहीं हो जाए। दूसरा जो 1 लाख का उन्होंने रखा है सीमा छोटे एमवीआर के लिए, हो सकता है इसको और बढ़ा भी दिया जाए, 3 लाख कर दिया, 4 लाख कर दिया जाए, 1 लाख हो सकता है कम है आज के तारीख में। तो मैं समझता हूँ ये जब शुरुआत होगी 15 अक्टूबर को

दुकानदार के रूप में अलग से वसूली की गई। हालांकि मैं मानता हूं कि जितने दुकानदार हैं वो खुद उपभोक्ता भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, घर जाते हैं, वो भी सामान खरीदते हैं, पर इस बात को लेके आशंका है। और ये आशंका आपने पूछा कि क्या वो कैश का प्रचलन इससे बढ़ेगा, हो सकता है कुछ दुकानदार ये बात कहें। अब देखिए, हर दुकान पर 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई के। अगर मैं महीने के 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन लगाऊं तो 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन हो गए। 66 करोड़ ट्रांजैक्शंस पे सरकार मॉनिटरिंग करे कि कौन दुकानदार या कौन भी वेंडर

ये आशंका आपने पूछा कि क्या वो कैश का प्रचलन इससे बढ़ेगा, हो सकता है कुछ दुकानदार ये बात कहें। अब देखिए हर दुकान पर 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई के, अगर मैं महीने के 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन लगाऊं तो 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन हो गए। 66 करोड़ ट्रांजैक्शन पे सरकार मॉनिटरिंग करे कि कौन दुकानदार या कौन भी वेंडर क्या बात कर रहा है ग्राहक से, ये तो संभव नहीं है कि हम हर ट्रांजैक्शन पे नजर रखें कि ग्राहक ने क्या कहा और क्यों कैश पेमेंट की गई, किन हालातों में कैश पेमेंट की गई, क्या ग्राहक को बोला गया या

0: चीजों को देखते हुए एक बहुत ब्रॉड माइंडेड अप्रोच है। और यहीं पर जैसे हम जो आज बातचीत कर रहे हैं, इसका लक्ष्य भी मैं ये मानता हूं यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, लोगों को इस बात से अवगत कराना कि ये सदा के लिए फ्री रहने वाली चीज नहीं है। और एक और सर्वे मैं आपको इंटरेस्टिंग इसमें बताऊं, एक लोकल सर्कल्स ग्रुप है उसका 2025 का सर्वे आया
1: जी।
0: और ये उस सर्वे में निकल के आया कि 57% वेंडर्स को यूपीआई आने के बाद अपने बिजनेस में बढ़ोतरी दिखाई दी। तो आई थिंक लोगों की स्पेंडिंग पावर भी इससे बढ़ी है। वो फायदा सारा वेंडर्स को जा रहा है, किसको जा रहा है? वो मर्चेंट्स को फायदा जा रहा है अगर आपका बिजनेस
1: जी, बिल्कुल।
0: तो इसको वेंडर्स इस तरीके से सोचे कि उनके बिजनेस बढ़ा है और साथ में थोड़ी सी उस पर आपको फी देनी पड़ रही।
2: ना केवल बिजनेस बढ़ा है, इसमें देखिए एज ए बैंकर मैं बताऊंगा, बैंक में जब कोई लोन प्रपोजल प्रस्ताव आता है तो हम कागज मांगते हैं
1: जी,
2: और ये स्वाभाविक है, बैलेंस शीट मांगेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस मांगेंगे। लेकिन ये जो आपकी वेंडर की जो इसमें ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड हो जाता है, इट इज फुल प्रूफ, इसी ट्रांजेक्शन के बेस पे लोगों को लोन भी आजकल दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है
1: जी
2: वेंडर्स के लिए, ना केवल उनका व्यवसाय बढ़ रहा है बल्कि व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए जो औपचारिकता है नाम पूरा करना पड़ता था पहले, ये केवल उनका वो मशीन से दिखा देते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन ये है, कुछ इज फुल प्रूफ
1: जी।
2: तो ये भी है 6.5 करोड़ मार्चेंट्स आपके जुड़ गए हैं इसमें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान में कि ना केवल उनको रोजगार मिल रहा है बल्कि बढ़ने का और उनको स्कोप मिल रहा है
1: जी। तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा का सार यही है कि बदलाव जब भी आता है अपने साथ कुछ सवाल और शंकाएं जरूर लाता है, लेकिन जब बात डिजिटल भारत की हो तो आंकड़ों से ज्यादा भरोसा मायने रखता है। आज हमने जाना कि एमजीआर कोई आम नागरिक की जेब पर बोझ नहीं है बल्कि भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित, तेज और टिकाऊ बनाए रखने की एक सोची समझी कोशिश है। यूपीआई का सफर सिर्फ एक ऐप से पेमेंट करने तक सीमित नहीं था, ये भारत के एक आम नागरिक को देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रांति थी और ये क्रांति न रुकी है न रुकेगी और ये आगे भी जारी रहेगी। शरद कोहली जी आपका, विकास नारायण मिश्र जी आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे यूपीआई भुगतान में एमडीआर की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेशो खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद।

खुद की कसम दिल्ली दुखाने के लिए आ। हसरत जयपुरी ने बंबई के अपने इब्तदाई दिनों में 11 रुपए माहवार पर बस कंडक्टर की मुलाजमत की और कुछ दिनों बाद उन्होंने कपड़े की एक फैक्ट्री में भी नौकरी कर ली। उसी कपड़ा फैक्ट्री का कोई कल्चरल प्रोग्राम था जिसमें मकबूल अदाकार पृथ्वीराज कपूर भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल थे। पृथ्वीराज कपूर खुद उर्दू और फारसी के जानकार

राज कपूर से हसरत को मिलवाया। हसरत जयपुरी ने उन्हें अपनी चंद गजलें सुनाई जो राज कपूर को बहुत पसंद आई। राज कपूर ने शंकर जयकिशन की धुनों पर गीत लिखने के लिए हसरत जयपुरी से कहा। यह वाकया सन 1948 का है, जब राज कपूर अपनी जाती फिल्म प्रोडक्शन आरके फिल्म्स की पहली फिल्म बरसात की तैयारियों में मसरूफ थे। उन्होंने शंकर जयकिशन की धुन पर इस फिल्म के लिए सबसे पहला गाना जिया बेकरार है

शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी का एक कामयाब मुसल्ला साबित हुआ। उन्हीं दोनों गीतकार शैलेंद्र भी अपनी रेलवे की मुलाजमत से इस्तीफा देकर इस ग्रुप में शामिल हो गए। राज कपूर की आइंदा आने वाली कई फिल्मों के नगमे मकबूल होते चले गए। राज कपूर के साथ हसरत जयपुरी की यह वाबस्तगी राज कपूर की जिंदगी के आखिरी वक्त तक कायम रही और हसरत ने आर के बैनर्स के तहत बनने वाली कई दूसरी फिल्मों जैसे श्री 420, आवारा, संगम, बूट पॉलिश, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम जोकर और राम तेरी गंगा मैली जैसी कई कामयाब फिल्मों के लिए मकबूल तरीन गीत लिखे।

हसरत जयपुरी के लिखे फिल्म बरसात के नगमे काफी मकबूल हुए, इसलिए अपनी पहली ही फिल्म से हसरत जयपुरी फिल्मी दुनिया में कामयाब नगमा निगारों की हैसियत से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। फिल्मी दुनिया में गीतकार की जोड़ी मौसीकार के साथ मकबूल होती है, जैसे नौशाद और शकील बदायूनी, रवि और साहिर लुधियानवी, आर डी बर्मन और आनंद बख्शी वगैरह। ठीक उसी तरह हसरत जयपुरी की जोड़ी मौसीकार शंकर जयकिशन के साथ बनी और उन्होंने शंकर जयकिशन की धुनों पर बेशुमार नगमे लिखे। मकबूलियत के लिहाज से हसरत जयपुरी के फिल्मी नगमों की तादाद बहुत ज्यादा है और कुल मिलाकर उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 300 फिल्मों के लिए नगमा निगारी की। सन 1953 में आई फिल्म अनारकली के गीत बेहद मकबूल हुए और अपने गीतों की वजह से फिल्म ने भी काफी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इस फिल्म में हसरत जयपुरी का लिखा यह नगमा खासतौर पर पसंद किया गया।

आजकल फिल्मी नगमा निगार बहुत जल्द शोहरत हासिल करने के लिए या तो तुकबंदी कर रही हैं या फिर आइटम सॉन्ग किस्म के गाने लिख रही हैं। चंद गीतकारों को अलग रखा जाए तो ज्यादातर गीतकार म्यारी गीत नहीं लिख पा रहे, जबकि हर्षद जयपुरी ने तकरीबन 3 दहाइयों के लंबे अरसे तक म्यारी और मकबूल गीत ही हमारी फिल्मी दुनिया को दिए और फिल्मी नगमा निगारी की एक शानदार मिसाल कायम की। आइए सुनते हैं सन 1965 में रिलीज हुई फिल्म आरजू का यह नगमा।

सन 1960 में रिलीज हुई फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई के गाने भी हसरत जयपुरी ने ही लिखे। इस फिल्म के हिदायतकार और फिल्मसाज कमाल अमोवी थे। एक गाने का मुखड़ा हसरत जयपुरी ने कुछ इस तरह लिखा, मटके दिल इतना ना उछालो। दरअसल सीन के मुताबिक कई नौजवान लड़कियां नदी के किनारे हाथों में मिट्टी के घड़े लिए एक दूसरे को छेड़ते हुए इस गाने को गाती हैं। जब कमाल अमोवी ने यह मुखड़ा सुना तो काफी देर तक इस पर गौर करने लगे और फिर हसरत से कहने लगे, इस मुखड़े में अगर मटके की जगह यूं हो जाए कि शीशे दिल इतना ना उछालो तो ज्यादा बामाने हो जाएगा। ये सुनते ही हसरत जयपुरी ने फौरन कमाल अमोवी की बात मान ली और फिर बाद में ये नगमा काफी मकबूल हुआ। हसरत जयपुरी एक बेहतरीन नगमा निगार के साथ साथ एक खुश मिजाज और मिलनसार इंसान भी थे। दूसरों के अच्छे और मुफीद मशवरे बड़ी खंदा पेशानी से मान लिया करते थे। उनकी ये आदत फिल्म दुनिया में उनको मकबूल बनाए हुए थी।

इसी तरह एक वाकया है जब हसरत जयपुरी फिल्म आरजू के गीत लिख रहे थे। फिल्म साज और हिदायतकार रामानंद सागर ने श्रीनगर के एक ऐसे होटल में उनको ठहराया जिसकी खिड़की डल झील की तरफ खुलती थी और वहां से पूरी डल झील का खुशनुमा मंजर साफ नजर आता था। सिचुएशन हसरत के जहन में थी और लोकेशन आंखों के सामने। वो बार बार गीत के मिसरे लिखते और बदल देते। इसी में दोपहर हो गई और सूरज सर पर आ गया। हसरत खिड़की से बाहर डल झील को देख रहे थे। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे डल झील के रूप में कुदरत ने एक बहुत बड़ा आईना उनके सामने रख दिया, क्योंकि सूरज की रोशनी से झील की खामोश सतह दर्पण की तरह चमक रही थी। एक ख्याल उनके जहन में कौंधा और जबान पर यह मिसरा आया, तुझे इस झील का खामोश दर्पण याद करता है। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में पूरा नगमा कागज पर उतर आया और बाद में फिल्म आरजू का ये गीत बेपनाह मकबूल हुआ।

0: 60 और 70 की दहाई में राज कपूर, शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी की टीम ने फिल्मी मौसीकी की दुनिया में जो मधुर हलचल पैदा की थी, उसकी मिसालें आज भी मौजूद हैं। राज कपूर की कोई फिल्म ऐसी नहीं जिसमें मौसीकार शंकर जयकिशन और गीतकार हसरत जयपुरी मौजूद न होते थे। उस जमाने में ये लोग फिल्म की तकमील तक हर पहलू पर गौर किया करते थे। आज ऐसा नहीं होता, अपना काम किया और चले गए। सुनिए सन 1953 की फिल्म आह का ये बेहतरीन नगमा।
1: आ जा रे

कभी कभी राज कपूर आधी रात के वक्त हसरत जयपुरी के घर चले जाते और उनको नींद से जगा कर कहते, हसरत मैंने अभी एक गीत की सिचुएशन सोची है, इस पर तुम्हें गीत लिखना है, जरा बताओ ना ये सिचुएशन कैसी है। और फिर दोनों घंटों उस सिचुएशन पर बातें करते करते सुबह कर देते। एक बार सिमी ग्रेवाल ने अपने एक टीवी प्रोग्राम में राज कपूर से सवाल किया था कि आपकी फिल्मों की कामयाबी और बेपनाह मकबूलियत में सबसे ज्यादा किन लोगों का ताबून शामिल रहा। तब राज कपूर ने बर्जस्ता कहा कि वो इस कामयाबी और

हुकूमत ने बच्चों के स्कूली कोर्स में शामिल किया और वो गीत बच्चों में काफी मकबूल हुआ। हसरत जयपुरी अपने नगमों में पहेलियों और गैर मानूस अल्फाज का इस्तेमाल बड़ी खूबी से करते थे, जैसे ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना फिल्म श्री 420 और तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर फिल्म मेरा नाम जुकर, या जैसे उफ यू मां शब बखैर याहू फिल्म

अफसर जयपुरी जिंदगी भर उन लोगों को याद करते रहे और उनका एहसान भी मानते रहे जिन लोगों ने जद्दोजहद के जमाने में किसी न किसी तरह उनकी मदद की थी। वो जिंदगी के आखिरी लम्हों तक अपने मोहसिनों को याद करते रहे, यहाँ तक कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अपने दिली जज्बात की तर्जुमानी करते हुए ये गीत लिखा।

हसरत को राजेंद्र कुमार की एक फिल्म सूरज के नगमे बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, इसके लिए सन 1966 में, और राजेश खन्ना की फिल्म अंदाज के नगमे जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए सन 1971 में फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और उनको कई रियासती हुकूमतों और अखबारी नुमाइंदों की तंजीमों ने भी अवार्ड और इनाम से नवाजा।

0: किसने जाना।
1: फिल्म सूरज के लिए हसरत जयपुरी का लिखा नगमा ने फिल्मी दुनिया को जिंदगी से भरपूर बेशुमार फिल्मी नगमे दिए। उन्होंने तकरीबन 350 फिल्मों के लिए 2000 से ज्यादा नगमे तहरीर किए तो उनकी शायरी का एक मजमुआ आबशारे गजल भी शाये हुआ। अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में वो काफी बीमार रहने लगे और आखिरकार अपने नगमों में चश्मे बददूर कहने वाले इस नगमा निगार को किसी की नजरें बद लग गई। 18 सितंबर सन 1999 को बंबई के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में 81 बरस की उम्र में हसरत जयपुरी ने अपने खालिके हकीकी के बुलावे पर लब्बैक कहा और जिंदगी को अपने शोख नगमों से जगाने वाला ये फिल्मी नगमा निगार खुद लंबी नींद सो गया। उनके बेवा के अलावा दो बेटे और एक बेटी हैं।

अभी आप सुन रहे थे नगमा निगार हसरत जयपुरी पर ये फीचर। मकबूल नगमा निगार हसरत तहरीर जनाब अनीस अमरोहवी की थी, पेशकश थी अली मोहतशिम रजा की। ये आकाशवाणी है मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह किया। भारत ने नाम नेहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से मुआहदे करने का कोई इख्तियार नहीं है।

मांग दफी लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा आपने सुना फैम थी तुमसे अच्छा कौन है। प्रोग्राम की अगली पेशकश श्री 420 फिल्म से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में।

परवरिश फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे को गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में है। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

लता मंगेशकर के साथ थे महेंद्र कपूर। फिल्म का नाम था गीत। प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में फिल्म है दुनिया।

0: किशोर लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा हरियाली और रास्ता फिल्म से था। फिल्मी दो गानों का ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है अशोक आजम का जमाना।
1: अशोक आजम का अहद हिंदुस्तान में इस्तेमालियत और अमन व आसूदगी का ऐसा जिमुशान अहद था जिसकी परछाइयां आज भी हमें अपनी तहजीब के आसमान पर साया फिगर नजर आती हैं। अशोक का ताल्लुक मौर्य खानदान से था। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने चौथी सदी कबल मसीह में मगध की सल्तनत को अपनी दानिशमंदी से आलमी अहमियत का हामिल बनाया था। चंद्रगुप्त के अहद में ही सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था और शुमाल में कुछ इलाके अपने यूनानी जनरल सेल्यूकस के कब्जे में दिए थे, जिन्हें चंद्रगुप्त ने बाद में फतेह कर लिया था और अफगानिस्तान के इलाकों तक अपनी अमलदारी कायम की थी। मौर्य खानदान में अशोक को ही आलमगीर मकबूलियत हासिल हुई। उसने जनूबी हिंदुस्तान की सल्तनत कलिंगा को फतेह किया। इसी जंग में उसने जंग की हौलनाकियों से मुतासर होकर जंग न करने का अहद किया और अशोक के अहद में आइंदा 30 वर्षों तक कोई जंग नहीं हुई। अशोक ने बुद्ध धर्म इख्तियार किया। वह आला इंसानी आदर्शों में यकीन रखता था। ऐसे आदर्श उसका ईमान थे जो इंसान को सुकून और नेकी की तरफ ले जा सके। उसने अपने इसी धर्म की अपने फरमानों में तशरीह की। ये फरमान ब्राह्मी रस्म अल-खत में लिखे हुए थे लेकिन जबान प्रकृत थी। प्रकृत अवाम की जुबान थी और संस्कृत सिर्फ तालीम याफ्ता लोग बोला करते थे। अशोक

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा था असली नकली फिल्म से। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं लता मंगेशकर और कीर्ति कुमार की, फिल्म है राधा का संगम।

इस नगमे के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है। अब आप नीति पत्यागी से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह किया। भारत ने नामनिहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से मुआहदे करने का कोई इख्तियार नहीं है जिस पर उसने जबरन और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अमरीका के फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार शरह सूद में इजाफा किया है। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान ने रूस के अहदेदारों और उसकी मईशत के अहम सतूनों को निशाना बनाते हुए पाबंदियों के पैकेज को मंजूरी दी है और मर्दों की क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी टी20 मैच आज शाम दिल्ली में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह किया। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का मौजू है सिलिकॉन से सिस्टम तक इको निजाम की तामीर। इस कॉन्फ्रेंस में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन से वाबस्ता आलमी और भारतीय कंपनियां, पॉलिसी साज अहदेदार, सरमायाकार, तहकीककार, स्टार्टअप इदारे, तालीमी इदारे और तलबा शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा 600 से

मेरे से 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली की यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह किया। भारत ने नाम निहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से मुआहदे करने का कोई इख्तियार नहीं है जिस पर उसने जबरन और गैरकानूनी कब्जा कर रखा है। अमरीका के फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली मरतबा शरह सूद में इजाफा किया है। अमरीका के हमारे नुमाइंदगान ने रूस के अहदेदारों और उसकी मईशत के अहम सितूनों को निशाना बनाते हुए पाबंदियों के पैकेज को मंजूरी दी है। और मर्दों की क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज शाम दिल्ली में खेला जाएगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज और AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का सिलसिला जारी है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने जा रहे हैं। पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

जी दोस्तों, फिल्म रात और दिन। रात और दिन, अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में वरुणा जो कि ये किरदार निभाया है नरगिस जी ने, वो एक सीधी सादी और बहुत ही शांत स्वभाव की एक संस्कारी महिला है जिसकी शादी होती है प्रताप से, प्रताप यानी कि प्रदीप कुमार से। लेकिन शादी के बाद प्रताप ये देख के बहुत हैरान हो जाता है कि रात होते ही वरुणा की जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रात के वक्त वरुणा खुद को रीटा बना लेती है, शराब पीती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, क्लब जाती है और सबसे अजीब बात ये कि सुबह उठने पर वरुणा को अपनी रात की किसी भी हरकत का, किसी भी बात का जरा सा भी एहसास नहीं होता, बिल्कुल भी याद नहीं रहता। शादी के बाद में शुरुआत में प्रताप और उसका जो परिवार है वो समझता है कि जो अरुणा इस तरह का व्यवहार कर रही है तो जरूर कुछ ना कुछ भूत प्रेत का साया है। लेकिन कुछ वक्त बाद प्रताप को समझ में आता है कि भाई ये कुछ ऐसा वैसा नहीं है बल्कि ये तो कोई मानसिक बीमारी है। और जब प्रताप को ये पता चलता है तो वो लेकर जाता है उन्हें एक साइकाइट्रिस्ट के पास। डॉक्टर जांच करते हैं और पता चलता है कि वरुणा जो है वो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। सच्चाई सामने आती है और उसके बाद उनका इलाज होता है और पता चलता है कि जो वरुणा है उसके साथ बचपन में इस तरह का हादसा हुआ था कि उनकी माता और पिता के बीच में बहुत झगड़े होते थे और उसी वक्त में उनकी जो माँ का व्यवहार था उसने एक गलत तरीके से उनके दिमाग पर असर छोड़ा था और वही बचपन के जो हादसे थे वो घुटन के रूप में उनके अंदर रीटा नाम की एक दूसरी पर्सनैलिटी को जन्म दिया। और धीरे धीरे इलाज होता है और सही इलाज मिलने पर और अपने उस पुराने अतीत के कड़वे सच का सामना करने के बाद वरुणा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और प्रताप के साथ मिलके एक खुशहाल जिंदगी जीती है और इस तरह से होती है फिल्म की हैप्पी एंडिंग। तो लीजिए दोस्तों, सफर के इस अगले पड़ाव में सुनते हैं लता जी और मनाड़ी की आवाज में ये एक और खूबसूरत सा गीत।

0: अब उन्हें मत बुलाओ।
1: जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म रात और दिन के बारे में। रात और दिन फिल्म जिसमें ये डबल रोल जो किया, जो डबल पर्सनालिटी वाला किरदार निभाया, वो निभाया अभिनेत्री नरगिस दत्त जी ने। और यही वो फिल्म थी जिसके जो उनके उन्होंने मतलब अपने एक्टिंग करियर से संन्यास ले लिया था, उसके बाद उन्होंने ये फिल्म को किया। और इससे जुड़ी हुई जानकारी हम तक पहुंचाई अजीत भावसर जी ने। लिखते हैं कि जो भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर ये साबित हुई और बहुत ही अनूठी कहानी थी इसकी। मदर इंडिया जो कि 1957 में आई थी, उसकी भारी सफलता और सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था। हालांकि उसके बाद उनके भाई जाफर हुसैन जो थे, उन्होंने नरगिस जी को बोला इस फिल्म में काम करने के लिए और नरगिस जी ने सुनील दत्त की सहमति के बाद दोबारा से कैमरे का सामना किया और ये उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। और इस बेहतरीन फिल्म के लिए उन्हें, जो इन्होंने इस तरह से डबल पर्सनालिटी का डबल रोल किया था, उसके लिए जब पहली बार ये फिल्म फेयर अवार्ड शुरू हुए थे तो पहला जो अवार्ड मिला वो नरगिस जी को मिला। भारतीय सिनेमा का पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जीता नरगिस दत्त जी ने। इस फिल्म से जुड़े और भी बहुत से किस्से हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक और ये खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज में।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म रात और दिन। ये फिल्म, जिस फिल्म के जो निर्माता हैं वो हैं जाफर हुसैन, जो कि नरगिस जी के भाई थे। शुरुआत में वो इस जो ये एक साइकोलॉजिकल जो फिल्म थी, इसको बनाने के लिए ऑस्कर विजेता निर्देशक सत्यजीत रे से वो बात कर चुके थे, और रे साहब भी इस फिल्म में काम करने के लिए दिलचस्पी ले रहे थे, लेकिन वक्त की कमी और उनका शेड्यूल जो था वो नहीं मिल पा रहा था, तो बात जो थी वो आगे नहीं पढ़ पाई। और बाद में इस फिल्म को निर्देशित किया सत्येन बोस ने। इस फिल्म में काम करने के लिए वो नरगिस जी के भी पास गए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, और वो पहले ही फिल्मों से दूरी बना चुकी थी, लेकिन सुनील दत्त जी के कहने पर उन्होंने इस फिल्म में काम किया। और देखिए क्या खूब फिल्म बनी। और अगर हम बात करें इस फिल्म के संगीत की, तो वो भी बहुत खूब था। संगीत के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में एक और खूबसूरत संगीत इसी फिल्म से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हम बात कर रहे हैं फिल्म रात और दिन के बारे में। दोस्तों, अगर इंडियन सिनेमा में हम बात करें बहुत ही खूबसूरत मीठे संगीत की, शास्त्रीय संगीत और कमाल के धुनों वाले संगीत की अगर बात हो, तो 1967 की इस लैंडमार्क फिल्म रात और दिन का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, क्योंकि शंकर जयकिशन की इतनी खूबसूरत सी इस जोड़ी ने इस फिल्म के संगीत की जो जिम्मेदारी थी वो संभाली और हिंदी सिनेमा में इस खूबसूरत संगीत को दिया। और ऊपर से इस फिल्म में जो वरुणा का किरदार था, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब वरुणा तो नहीं, वरुणा और रीटा दोनों का जो किरदार था, उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को किस तरह से शास्त्रीय संगीत के रूप में और उसके साथ मॉडर्न संगीत को भी पिराया, उसके बाद उन्होंने ये संगीत तैयार किया है ना।

कमाल का संगीत तैयार किया। और फिल्मों के जो गीतों में शब्द हैं, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी के जो बोल हैं, उन दोनों महान गीतकारों ने तो बस कमाल ही किया। मतलब हर गीत ऐसा है जो कि रूह तक उतर जाता है। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं इसी फिल्म से लता जी की आवाज में एक और दिल को छू लेने वाला ये नगमा।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हम बात कर रहे हैं फिल्म रात और दिन के बारे में। हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह जी जुड़े हुए हमारे साथ गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से, और पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह के साथ जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी और सीता गीता हमारे साथ जुड़े हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। अजित भाव सर जी हमारे साथ जुड़े हैं और लिखते हैं कि इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है और जिसका क्लाइमेक्स है वो हॉलीवुड की फिल्मों से लिया गया है, उससे प्रेरित है। द थ्री फेसेस ऑफ ईव जो कि 1957 में आई थी और अल्फ्रेड हिचकॉक की मरीन जो है उससे काफी ज्यादा ये प्रेरित है, और उसमें जो मरनी फिल्म में भी पैगी का जो किरदार है जो जिक्र किया गया है वो भी इसी तरह का किरदार था। बहुत खूब जानकारी अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुन्नौर से आदिल कुमार, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगला संदेश आया है हीरामणि वर्मा जी का, दतरेंगी भट्टापारा से। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और ईशान, पूजा परिहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हमें फिल्म की दी है। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल, गुरमीत सिंह, मीता जी साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद हिसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीरोफर फातिमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से, और हरजिंदर सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया और उसको पहुंचाने वाले हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, फजिलका पंजाब से भूषण।

नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू हमारे साथ जुड़े हुए हैं निसार सलमानी के साथ, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशान नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़ के साथ कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो अगला संदेश है उसको हम तक पहुंचाने वाले हैं ग्राम नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से एक बार फिर से स्वर्ण सिंह गिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जलालाबाद वेस्ट से जुड़े हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा के साथ में। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी जो श्रोता हैं वो हमारे साथ जुड़े, और लालगिरी गोस्वामी जी भी जुड़े हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, इनके साथ हेमलता, हीना और हर्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा खैर बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य, लाडो कोयल, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू, भाविका सिक्का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और मैं यानी कि प्रीति अब आपसे लूंगी अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की, छोड़े जाती हूँ आप सभी को एक खूबसूरत से गीत के साथ, फिर आपसे कभी मुलाकात होगी नए फिल्म नए नगमे और अनसुने किस्सों के साथ, तब तक यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, सुनते रहिए अपना पसंदीदा शो एक ही फिल्म से, जाएगा कहीं नहीं, 3 बजे एक बार फिर से हाजिर होंगी लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडी, तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:40 होने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली में यशो कुंभ में सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा 25 साल पूरे होने के संबंध में बीजेपी की महीना भर चलने वाली सेवा संकल्प मुहिम शुरू हो गई है। भारत अपनी 140 करोड़ आबादी लिए ऊर्जा सुरक्षा मुहैया कराने लिए दृढ़ संकल्प है। भारत ने दहशतगर्दा नूं पनाह देने लिए पाकिस्तान की सख्त शब्दों से निषेधी की है। भारत अफगानिस्तान विचकार 3020 क्रिकेट मैच

0: इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश का हर नागरिक एक विकसित भारत बनाने के संकल्प नाल काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेजी नाल फैल रहा है और यह नवीनता निवेश के विकास के नए मौके पैदा कर रहा है।
0: बीते 1 दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में बनी चिप्स हुण देश के अंदर और दुनिया भर में उपलब्ध ने। श्री मोदी ने इस गल पर जोर दिया कि हाल ही में मोहाली और सूरत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांटों में व्यापारिक उत्पादन शुरू होया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश लिए इस पड़ाव तक पहुंचना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 तहत बजट राशि पहले पड़ाव के 8 अरब अमरीकी डॉलर तो बढ़ा के 13.5 अरब अमरीकी डॉलर कर दिया गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली हाल ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की जिस हरेक मैंबर देश की सहमति नई दिल्ली ऐलाननामा अपनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनालोजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दहाकों से सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करना चाहता था पर यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर जरूरतों के पूरे दायरे में भारत में चिप्स डिजाइन करने के लिए घट्टो घट 200 स्टार्टअप्स और कंपनियों की मदद करने का टीचा मिथ्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा में 25 साल पूरे होने के संबंध में बीजेपी की महीना भर चलने वाली सेवा संकल्प मुहिम शुरू हो गई है। यह मुहिम अगले महीने की 17 तारीख तक चलेगी। मुहिम का पहला दिन सेवा दिवस वजो मनाया जा रहा है जिस देश भर में खूनदान कैंप लगाए जाएंगे। पार्टी प्रधान नितिन नवीन ने नवी दिल्ली स्थित पार्टी हैडक्वार्टर विखे खूनदान कैंप का उद्घाटन किया। श्री नवीन ने खुद पार्टी के होर नेतावां ते वर्करां नाल खूनदान भी किया। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं बीजेपी मुखी ने कहा कि देश भर के पार्टी वर्कर इन्हां खूनदान कैंपां विच हिस्सा लै रहे ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई विच नागरिकां दे जीवन विच डूंघा बदलाव आया है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई विच भारत 2047 तक विकसित भारत दे टीचे नूं प्राप्त करन लई विकास के राह तेजी अगे बढ़ है। इस मुहिम का उद्देश्य जनतक सेवा प्रति प्रधानमंत्री मोदी की वचनबद्धता उजागर करना लोगों खास करके नौजवानों सेवामुखी गतिविधियों में हिस्सा लेने लिए उत्साहित करना है। यह खबर आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्सेंडल @AIR RN जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RN-AIR जलंधर, यूट्यूब पर साडा चैनल है @AIR जलंधर। भारत अपनी 140 करोड़ आबादी लिए ऊर्जा सुरक्षा यकीनी बनाने लिए दृढ़ संकल्प है। अमरीकी कांग्रेस विच रूस और ईरान से पाबंदियां लगाने वाले कानून के पास होने का हवाला देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले से नेड़े नजर रख रहा है। मंत्रालय अनुसार हाल ही के महीनों में वक्त-वक्त अमरीकी वार्ताकार इस मुद्दे पर पदरी विचार वटांदरे हुए हैं। भारतीय पक्ष ने दुवाले संबंधों के नाल नाल अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों के संभावी प्रभाव बारे अपनी चिंतावां स्पष्ट तौर पर प्रगट कीतियां ने। मंत्रालय ने अगे कहा कि भारतीय पक्ष ने अपने व्यापारक आर्थिक हितों की रक्षा लई सारे जरूरी उपाय करने का अपना दृढ़ इरादा भी स्पष्ट कर दिता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी के आधार पर दहशतगर्द विरोधी मुहिम में आज 2 दहशतगर्द मारे गए। साडे जम्मू वाले पत्रकार ने खबर दी है कि सुरक्षा बलों ने इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की सूचना मिलने तो बाद कल रात यह कार्रवाई शुरू की। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने खराब मौसम, मुश्किल इलाके और घट रोशनी के बावजूद मुहिम जारी रखी। फौज ने कहा कि इलाके में तलाशी और निगरानी जारी है। भारत ने दहशतगर्दों को पनाह देने लिए पाकिस्तान की सख्त आलोचना की है। भारत के स्थाई प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान में दहशतगर्द टिकाणियों और अमरीका में 11 सितंबर के दहशतगर्द

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अज नवी दिल्ली के यशोपुर विखे सैमिको इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। तीन दिन तक चलने वाली यह कांफ्रेंस भारत के सहयोग निवेश नवीनता के हुनर विकास को अगे बढ़ाने केन्द्रित है। इस मौके से बोलद श्री मोदी ने कहा कि एक पास भारत की आर्थिकता बढ़ रही है तो दूजे पास भारत में विश्वव्यापी भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है।

0: جانے سے میور القاعدہ وچکار سدھے سبندوں والا اشارہ کیتا ہے. افغانستان کی حالت بارے سنیکت راشٹر سرکھا پریشد کی میٹنگ انہوں نے نیویارک 9/11 یادگار کی کونسل کی حالیہ فیری کا حوالہ دیتا. श्री अरीश ने दहशत गर्दा के नाल नाल उन्होंने सहायता वित्त समर्थन से पनाह देने वाले विरुद्ध कार्रवाई करने की अपील की. पीएम विश्वकर्मा योजना ने अज 3 साल पूरे कर ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 इसे दिन इस योजना की शुरूआत की. हुण तक इस योजना तहत 30 लाख लाभपात्रियों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है. एक रिपोर्ट.
1: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने एक महत्वपूर्ण मील पत्थर प्राप्त कर दिया. इस योजना हेठ पंजाब समेत देश भर तो 30 लाख तो वध लाभपात्रियों नूं रजिस्टर किया है. यह योजना विश्वकर्मा दे रवायती हुनरां नूं संस्थागत सहायता, आधुनिक साधन, हुनर अपग्रेडेशन अते बाजार विच विक्री लई मौके प्रदान करके अते उन्हां नूं अपनी आमदन वधाउण दे योग बना के मजबूत करने की कोशिश करती है. हुनर विकास अते उद्यमता मंत्रालय राही इस योजना हेठ हुण तक लगभग 24,50,000 रवायती कारीगर मुढली हुनर सिखलाई प्राप्त कर चुके हैं. 6 लाख तो वध कारीगरां नूं 5% सालाना दी रियायती ब्याज दर से 1 लाख रुपए तक दे कर्जे प्रदान किए गए हैं. इस तो इलावा डाक विभाग राही इन्हां कारीगरां नूं उन्हां दे घर तक 18 लाख तो वध आधुनिक औजार भी पहुंचाए गए हैं. ब्यूरो रिपोर्ट नाल आकाशवाणी खबरां लई जलंधर तो मैं राजेश बाली.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जन्मदिन पर दुनिया भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं. सोशल मीडिया से इन शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद प्रकट करते हैं. श्री मोदी ने कहा कि अजय आशीर्वाद उनके दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं तो हर आशीर्वाद देश के लोगों की सेवा करने उनके इरादे को और मजबूत करता है. लोकसभा में विरोधी सिर के नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है. श्री गांधी ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और चंगी सेहत की कामना की. भारत और अफगानिस्तान विचकार 2020 क्रिकेट मैचों की लड़ी का आखिरी मैच अज शामी नवी दिल्ली में खेलिया जाएगा. यह मैच शामी 7:30 बजे शुरू होगा. अंत में चुनावी खबरें एक बार फिर सुन लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली में यशोभूमि में सैमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा में 25 साल पूरे होने के संबंध में बीजेपी की महीना भर चलने वाली सेवा संकल्प मुहिम शुरू हो गई है. भारत अपनी 140 करोड़ आबादी लिए ऊर्जा सुरक्षा मुहैया कराने लिए दृढ़ संकल्प है. भारत ने दहशतगर्दा को पनाह देने लिए पाकिस्तान की सख्त शब्दों की निशेधी की है. भारत के अफगानिस्तान विचकार 3 2020 क्रिकेट मैचों की लड़ी का आखिरी मैच अज शामी 7:30 बजे नवी दिल्ली खेलिया जाएगा. इसके नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंगे. नमस्कार.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है. खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का आगाज किया है. उन्होंने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निजाम तेजी से बिकत पा रहा है और इख्तिरा, सरमायाकारी और तरक्की के लिए नए इम्कान पैदा कर रहा है. मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत ने सेमीकंडक्टर की वसीतर जरूरियात के लिए देश भर में चिप डिजाइन करने की खातिर कम अज कम 200 स्टार्टअप और कंपनियों की मदद का हदफ रखा है. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी और खिदमत के 25 बरस मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी के मुल्क की सतह पर एक महातवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज हो गया है. पीएम विश्वकर्मा स्कीम को आज 3 बरस मुकम्मल हो गए हैं. भारत ने अमरीका में 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान की तनकीद की है. और मर्दों के क्रिकेट में आज नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा. अब खबरें तफसील से. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह किया. इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में इश्तराक, सरमायाकारी, इख्तिरा और भारत में हुनरमंदी के फरोग पर तवज्जो मरकूज की जा रही है. इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक तरफ भारत की मईशत तरक्की कर रही है और दूसरी

0: तरफ भारत पर आलमी एतिमाद में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि चैलेंज भरे आलमी माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की शरह तरक्की दर्ज की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त जापान की क्रेडिट दर्जाबंदी एजेंसी ने भी भारत की सॉवरेन दर्जाबंदी को बेहतर किया है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के अज़्म के साथ काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निज़ाम तेजी से वसत पा रहा है और ये इख्तिरा सरमायाकारी और तरक्की के लिए नए इम्कान पैदा कर रहा है।
1: इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर सनत के लिए एक पसंदीदा मकाम बनने की खातिर हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल भरोसा मैन्युफैक्चरिंग मकाम तलाश कर रही है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि मोहाली और सूरत में हाल ही में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में कमर्शियल पैदावार का आगाज हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के लिए इस मकाम तक पहुंचना आसान नहीं है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में हाल ही में मुनक़िद हुई ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस सरबराह मीटिंग की कामयाबी के साथ मेजबानी की, जिसमें हर मेंबर मुल्क के इत्तेफाक़ी राय के साथ नई दिल्ली एलामिया मंजूर किया गया। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मरकजी वजीर अश्विन वैष्णव ने कहा कि कई दहाइयों से भारत सेमीकंडक्टर सनत कायम करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जेर क़यादत ही मुमकिन हो पाया। उन्होंने कहा कि अब बुनियाद कायम कर ली गई है और अगला कदम सेमीकॉन 2.0 के जरिए सनत कायम करना है, जिसमें 6 अहम सतूनों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तकरीबन 200 स्टार्टअप और कंपनियों को भारत में चिप डिजाइन करने के सिलसिले में मदद फराहम करने का निशाना रखा है। सेमीकॉन इंडिया 2026 में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अक्वामी कंपनियां और 50 से ज्यादा मुल्कों के मंदूबीन शिरकत कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी और खिदमात के 25 बरस मुकम्मल होने के मौके पर आज से बीजेपी के मुल्क की सतह पर एक महातवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज हो गया है। सेवा संकल्प अभियान जो आइंदा माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा, इसका पहला दिन सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसके तहत मुल्क भर में खून अत्या करने के कैंप लगाए जाते हैं। इस मौके पर बाद में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने कहा कि मुल्क भर से पार्टी वर्कर खून अत्या करने के इन कैंपों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जेर क़यादत शहरियों की जिंदगी में यकसर तब्दीली आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी के आज 25 बरस मुकम्मल हुए हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है। आज हम खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के तहत किस तरह दफा 370 की मनसूखी के जरिए एक मुल्क एक आईन के नजरिए को फरोग मिला, इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश कर रही हैं।
1: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यह बयान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आईनी तब्दीली की अक्कासी करता है। दफा 370 की मनसूखी से खत्ते में इंतजामी और सियासी तरीक़ेकार में एक अहम तब्दीली की भी अक्कासी होती है। शाहराहों से टनल्स तक और रेलवे पुलों से मुल्क के बाकी हिस्से से बेहतर कनेक्टिविटी तक जम्मू कश्मीर ने बुनियादी ढांचे में खातिरख्वाह पेशरफ्त का मुशाहिदा किया है। 2019 के बाद से बुनियादी ढांचे, सियाहत, सरमायाकारी और हुक्मरानी के सिलसिले में नुमाया पेशरफ्त हुई है। मौजूदा हुकूमत इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम कर रही है। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज वज़ीर-ए-आज़म को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सदर जमहूरिया ने गुज़श्ता 25 बरस में जनाब मोदी की गैर मामूली अवामी खिदमात और मुल्क की तामीर में उनके गिरां कद्र तआवुन की सताइश की। नायब सदर ने कहा कि जनाब मोदी की बसीरत अफरोज क़यादत

0: तहत भारत दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई अहम मईशतों में शामिल है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भी वजीर आजम नरेन्द्र मोदी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आज ही के दिन साल 2023 में इस स्कीम का आगाज किया था, जिसका मकसद 18 मुतालिका तिजारत से मुंसलिक रिवायती फनकारों और दस्तकारों को शुरू से आखिर तक मदद फराहम करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पीएम विश्वकर्मा स्कीम ने एक अहम संगे मेल हासिल किया है और इस पहल के तहत 30 लाख मुस्तफिदीन का इंदराज हो चुका है। इस स्कीम का मकसद विश्वकर्मा के रिवायती हुनर को मुस्तहकम करते हुए उन्हें इदारा जाति मदद, जाति साजो सामान, कर्ज तक रिसाई, हुनरमंदी के फरोग और बाजार राब्तों के सिलसिले में मदद फराहम करना है, ताकि उनके आमदनी में इजाफा हो सके। हुनरमंदी के फरोग और कारोबार की वजारत के जरिए अब तक तकरीबन 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी हुनर की तरबियत फराहम की जा चुकी है। कर्ज की सहूलत के तहत 6 लाख से ज्यादा विश्वकर्माओं को 5% सालाना की रियायती शरह सूद के हिसाब से 1 लाख रुपए तक के कर्ज फराहम किए जा चुके हैं। दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: डायरेक्टर जनरल न्यूज राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी के इहाते में अफसरान और अमले को स्वच्छता अहद दिलाया। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल न्यूज एस सुब्रमण्यम भी मौजूद थे। भारत ने अमरीका में 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमलों के जिम्मेदार पाकिस्तान में कायम दहशतगर्दों के कैंपों और अलकायदा कयादत के दरमियान बराह रास्त राबते का हवाला देते हुए दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान की सख्त नुक्ताचीनी की है। मर्दों के क्रिकेट में आज भारत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 बैन अल-अक़वामी सीरीज का आखिरी मैच खेलेगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत ने पहले 2 मैचों में शानदार जीत के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निजाम तेजी से वुसत पा रहा है और ये इख्तिरा सरमायाकारी और तरक्की के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहा है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत ने सेमीकंडक्टर की वसीत जरूरियात के लिए मुल्क भर में चिप डिजाइन करने की खातिर कम अज कम 200 स्टार्टअप और कंपनियों की मदद का हदफ रखा है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की अवामी जिंदगी और खिदमात के 25 बरस मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी के मुल्क की सतह पर एक महातवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज हो गया है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम को आज 3 बरस मुकम्मल हो गए हैं। भारत ने अमरीका में 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान की तंकीद की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Semicon India 2026 in New Delhi, says India's semiconductor ecosystem expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Union Minister Ashwini Vaishnav says government has set a target to support 200 startups and companies to design chips in India across spectrum of semiconductor requirements. BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan begins today to mark Prime Minister Narendra Modi's 25 years of public life and service. PM Vishwakarma scheme completes 3 years today. India slams Pakistan for providing permissive environment for terrorists responsible for September 11 attacks in the United States. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in last match of T20 international series in New Delhi this evening. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi. The three-day conference is focusing on advancing collaboration, investment, innovation and talent development in India. Speaking on the occasion, the Prime Minister said India's semiconductor

0: Pakistani propaganda accounts. It said the footage in the claim is from a video game. The fact-check unit has urged people to report any suspicious content related to the central government at factcheck@pib.gov.in. Director General of News Services Division, Akashwani, Rajiv Kumar Jain, administered the Swachhata Pledge to officers and staff at the premises of Akashwani in New Delhi today. Additional Director General News, S. Subramanian, was also present on the occasion. The pledge was administered as part of the ongoing Swachhata Hi Seva 2026 campaign, being observed across the country from today till the 2nd of next month. In men's cricket, India will play the final match of the three-match T20 international series against Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. At the stock markets, the Sensex was trading nearly flat while the Nifty was trading moderately higher during the afternoon session today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates SemiCon India 2026 in New Delhi, says India's semiconductor ecosystem expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Union Minister Ashwini Vaishnaw says government has set a target to support 200 startups and companies to design chips in India across spectrum of semiconductor requirements. BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan begins today to mark Prime Minister Narendra Modi's 25 years of public life and service. PM Vishwakarma scheme completes 3 years today. India slams Pakistan for providing permissive environment for terrorists responsible for September 11 attacks in the United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
2: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में

0: संभव प्रयास कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है। और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमीकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सेमीकॉन कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
1: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू,

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रबते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
1: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति, खुशहाली, समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खा वो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हरतानों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
0: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृहनगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
3: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसा युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
2: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
4: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूं। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
2: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
5: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रूपये तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार।

0: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर न थोपे जाए और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को न खोए।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है।

0: ने भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर में 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक एक कलाकार में आपका स्वागत है। आज बात उस अदाकारा की जिनकी कसरारी आंखों में गहरी उदासी, गहराई और बेपरवाह मुस्कान थी। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल की। स्मिता जी का सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का वो दौर था जहां सादगी ही सबसे बड़ा आभूषण थी। उनका स्वभाव बेहद सहज, बेबाक और संवेदनशीलता से भरा हुआ। फिल्मों के अलावा वो एक बेहतरीन फोटोग्राफर थी। सामाजिक मुद्दों और महिला अधिकारों के प्रति बेहद सजग और पुणे में महिलाओं के पुनर्वास के लिए सक्रिय रूप से काम करती थी। आइए उनके इस खूबसूरत सफर को इन खूबसूरत नगमों के साथ महसूस करते हैं। तो उनके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। स्मिता जी का फिल्मी सफर दूरदर्शन पर बतौर मराठी समाचार वाचिका के रूप में शुरू हुआ, जहां उनकी आंखों की चमक ने निर्देशक श्याम बेनेगल का ध्यान खींचा। फिल्म मंथन में जब वो एक ग्रामीण महिला बनकर पर्दे पर आई तो भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान मिली। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये लोकगीत जो आज भी मिठास घोलता है।

0: श्रोताओं, स्मिता जी का स्वभाव ऐसा था कि वो कभी किसी एक ढांचे में बंद कर नहीं रही। समानांतर सिनेमा की मलिका जब अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल में मुख्य धारा के पर्दे पर आई तो पीली साड़ी में बारिश की बूंदों के बीच उन्होंने ऐसा जादू बिखेरा कि हर कोई देखता रह गया।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना, ना।

श्रोताओं, फिल्मों की चकाचौंध से दूर स्मिता जी को कैमरे के पीछे तस्वीरें खींचना बहुत पसंद है। वो आम लोगों की जिंदगी को अपने कैमरे में कैद करती। शायद यही संवेदनशीलता थी कि जब वो बाजार जैसी फिल्मों में आई तो उनकी आंखों का दर्द सीधे दर्शकों के दिल तक पहुंचा।

हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। उसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा। ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, ipradiodelhi@gmail.com। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम जिक्र कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल की। स्मिता जी महिला सशक्तिकरण की असली प्रतीक थी। उन्होंने कभी भी सिर्फ शोपीस वाले

नहीं किए और ना ही स्वीकार किया। फिल्म आखिर क्यों में एक आत्मनिर्भर स्त्री का उनका जो रूप लोगों ने देखा वो आज भी मिसाल है। इस फिल्म का ये दर्द भरा गीत आइए सुनते हैं।

0: सर मैं आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी, 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे प्रोग्राम अंदाजे नजर। 4 बजे आप सुनेंगे हमारा एक खसूसी मुख्तसर प्रोग्राम स्वच्छता ही सेवा है। 4:05 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक।
1: चार्बसान की तनकीद की है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार शरह सूद में इजाफा किया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3रा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह किया। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में इश्तराक, सरमायाकारी, इख्तिरा और भारत में हुनरमंदी के फरोग पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक तरफ भारत की मईशत तरक्की कर रही है और दूसरी तरफ भारत पर आलमी एतमाद में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि चैलेंज भरे आलमी माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की शरह तरक्की दर्ज की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त जापान की क्रेडिट दर्जाबंदी एजेंसी ने भी भारत की दिल्ली और सूरत में हाल ही में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में कमर्शियल पैदावार का आगाज हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के लिए इस मकाम तक पहुंचना आसान नहीं है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने नई दिल्ली में हाल ही में मुनक़िद हुई ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस सरबराह मीटिंग की कामयाबी के साथ मेजबानी की, जिसमें हर मेंबर मुल्क के इत्तेफाक़ी राय के साथ नई दिल्ली एलामिया मंजूर किया गया। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि कई दहाइयों से भारत सेमीकंडक्टर सनअत कायम करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन यह वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत ही मुमकिन हो पाया। उन्होंने कहा कि बुनियाद कायम कर ली गई है और अगला कदम सेमीकॉन 2.0 के जरिए सनअत कायम करना है, जिसमें 6 अहम सुतूनों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने

0: रामरवीन ने कहा कि वजीर आजम की क्यादत में भारत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की राह पर तेजी से गामजन है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज वजीर आजम को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने गुज़श्ता 25 बरस में जनाब मोदी की गैर मामूली अवामी खिदमात और मुल्क की तामीर में उनके गिरा कदर तआवुन की सताइश की। नायब सदर ने कहा कि जनाब मोदी की बसीरत अफरोज क्यादत के तहत भारत दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई अहम मईशतों में शामिल है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। भारत ने नामनिहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से मुआहिदा करने का कोई इख्तियार नहीं है जिस पर उसने जबरन और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजारत ने इस सिलसिले में रिपोर्ट्स का नोटिस लिया है और इस मामले पर भारत का मौकिफ वाज़ह और ठोस है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कोई सरहद नहीं है। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है जिसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। तर्जमान ने यह बात दोहराई कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी 1963 के नाम नेहा चीन पाकिस्तान सरहदी समझौते को तस्लीम नहीं किया और हमेशा उसका यह मौकिफ रहा है कि गैर कानूनी और नाजायज है। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमलों के जिम्मेदार पाकिस्तान में कायम दहशतगर्दों के कैंपों और अलकायदा क्यादत के दरमियान बराह रास्त राबते का हवाला देते हुए दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान की सख्त नुक्ताचीनी की है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में अकवाम मुतहदा सलामती कौंसिल की मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल पर कौंसिल के हालिया दौरे का तस्करा किया। जनाब हरीश ने बैन अक्वामी बरादरी से 11 सितंबर के हमलों के मुतासरीन को याद रखने के साथ साथ न सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया बल्कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है जो उन्हें मदद फराहम करते हैं, उनकी माली इयानत करते हैं और उन्हें पनाह देते हैं। आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बाटल इलाके में एक मुश्तरका खुफिया मालूमात पर मबनी इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मालूमात की तस्दीक किए जाने के बाद कल रात ये कार्रवाई शुरू की गई थी। मर्दों की क्रिकेट में आज भारत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 बैन अक्वामी सीरीज का आखिरी मैच खेलेगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली की यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निजाम तेजी से वसत पा रहा है और इस तरह सरमायाकारी और तरक्की के लिए नए इम्कान पैदा कर रहा है। भारत ने नामनिहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से मुआहिदा करने का कोई इख्तियार नहीं है। और भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान की तनकीद की है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामीन, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने लिए हैं जनाब हसरत जयपुरी के लिखे हुए। हसरत जयपुरी 15 अप्रैल 1922 को जयपुर में पैदा हुए। असल नाम इकबाल हुसैन था। इब्तदाई तालीम अपने दादा से ली जो खुद एक शायर थे और धीरे धीरे घर के माहौल ने शेरी जज्बात उनके अंदर पैदा कर दिए और 20 साल की उम्र में उन्होंने पहला मुशायरा पढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे वो शेर कहने लगे और अपने दादा से इस्लाह लेने लगे। 18 साल की उम्र में यानी 1940 में वो बम्बई

तमाम दुनिया को बेहतरीन नगमा देने वाला ये शायर हसरत जयपुरी, जिसका नाम था, 17 सितंबर 1999 को 77 साल की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गए और अपने पीछे छोड़ गए अपनी उन खूबसूरत लम्हात की वो फहरिस्त जो कभी भी जब जब जिक्र होगा फिल्म इंडस्ट्री में नगमा निगारों का हसरत के बगैर मुकम्मल नहीं होगी। आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं उन्हीं के नगमात के साथ।

0: आप सुन रहे थे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1073 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फिल्ड डिश पर। पेश खिदमत प्रोग्राम अंदाजे नजर।
1: ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के प्रोग्राम अंदाजे नजर में आप सबका इस्तकबाल है। आज के प्रोग्राम का मौजू है उर्दू अफसाना 21वीं सदी में। इस मुजाकरे के शुरका हैं प्रोफेसर इब्ने कवल साहब, शोबा उर्दू के सदर। आप मुहक्किक भी हैं, शायर भी हैं, अफसाना निगार हैं, नाकिद हैं, ड्रामा नवीस हैं और आपके कई अफसानवी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। मुझे लगता है कि आज की इस महफिल के लिए सबसे मौजू तरीन शख्स यही हैं। दूसरी एक बड़ी शख्सियत जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है वो है डॉक्टर खालिद अशरफ साहब। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज करोड़ी मल कॉलेज में उर्दू दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं। आपकी भी बहुत सी किताबें शाया हो चुकी हैं जिसमें अजमी दहलवी, हयात व नावल निगारी, बर्रे सगीर में उर्दू नावल और अफसाने पर आपका बहुत काम है। आपकी किताब दो जिल्दों में बर्रे सगीर में उर्दू अफसाना शाया हो चुकी है। ख्वाजा अहमद अब्बास पर भी आपने एक मोनोग्राफ लिखा है और फसाने मंटो के और फिर बयां अपना ये किताब भी आ चुकी है। और आज के इस मुजाकरे के नाजिम मैं खुद डॉक्टर शाहीना तबस्सुम, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की इवनिंग कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ और हम इस वक्त आपके सामने जिस मौजू पर बात करेंगे उर्दू अफसाना 21वीं सदी में, आप दोनों का मैं इस्तकबाल करती हूँ। इसके साथ ही हम लोग अपने सामयीन को ये बताना चाहेंगे कि 21वीं सदी और 20वीं सदी के अफसाने, दोनों सदियों में अफसाने लिखे गए हैं, उनमें ऐसा क्या फर्क है, उनके इम्तियाज किस तरह से अलहदा हैं कि उनको हम बाहम दिगर अलहदा करते हुए भी 21वीं सदी के अफसाने की मुनफरिद शनाख्त बता सकते हैं। आप हजरात इस पर कुछ रोशनी डालें कि वो क्या इम्तियाजात हैं जो 21वीं सदी के अफसाने को 20वीं सदी के अफसाने से अलग करते हैं।
2: देखिए डॉक्टर शाहीना, ये मौजू खासा वसी है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू अफसाने की तारीख भी एक सदी से ज्यादा अरसे से गुजर चुका है, इसे प्रेमचंद से लेके आज तक। और इस सदी में मौजूई एतबार से, हैती एतबार से मुख्तलिफ तब्दीलियां आई हैं। इसे अदवार में बांटना जरा मुश्किल होता है क्योंकि देखिए एक फनकार जो है, जो अगर 20वीं सदी में पैदा होता है और वो लिखना शुरू करता है 20वीं सदी में, उसकी उम्र का तवील हिस्सा 20वीं सदी में गुजरता है तो वो 21वीं सदी यानी आइंदा सदी में भी रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके मौजूआत में, उसलूब में वक्त के साथ साथ तब्दीलियां होती रहती हैं। आपने जैसा कि मौजू का तयन किया है कि 21वीं सदी में उर्दू अफसाना, तो हम उर्दू वाले असल में कुछ इस तरह की हदबंदियां करते हैं जब मौजूआत तय करते हैं कि 1857 से पहले का अदब, 1857 के बाद का अदब, 1947 से पहले का अदब, 1947 के बाद का अदब, या 20वीं सदी का अदब और 21वीं सदी का अदब। मेरे ख्याल से ये जो हदबंदियां हैं ये अदब के लिए मुनासिब नहीं लगती, क्योंकि मैं अगर 20वीं सदी के अवाखिर में मैंने लिखना शुरू किया और 21वीं सदी में भी मौजूद हूँ, लिख रहा हूँ, तो ये तो नहीं है कि 21वीं सदी आते ही मेरा मौजू भी बदल जाएगा, उसलूब भी बदल जाएगा।
1: जी ये तो नहीं।
2: तो ये तो है। तो इस वक्त जो है, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त मेरा ख्याल है कि तीन पीढ़ी के लिखने वाले हैं, तीन नस्लों के 21वीं सदी में। एक वो जो सन 47 के बाद जिन्होंने लिखना शुरू किया था, जो बुजुर्ग हैं जैसे काजी अब्दुल सत्तार की उम्र के लोग हैं, उसमें जोगेंद्र पाल गुजर गए, 21वीं सदी में उनका इंतकाल हुआ है। कुरतुल ऐन हैदर 21वीं सदी में इंतकाल हुआ है। इकबाल मजीद मौजूद हैं, काजी अब्दुल सत्तार मौजूद हैं और उनके हम और कुछ और लोग भी हैं।
1: ये ज्यादातर 20वीं सदी में
2: लिख रहे हैं, 20वीं सदी वाले, लेकिन 21वीं सदी में भी लिख रहे हैं
1: जी,
2: 21वीं सदी में भी लिख रहे हैं। एक वो हैं जिन्होंने 8वीं दहाई में लिखना शुरू किया, जैसे सलामुद्दीन रज़ाक, अनवर कमर, अनवर खान, शफाक अब्दुल समद, सैयद मोहम्मद अशरफ, तारिक ज़तारी, इन लोगों ने लिखना शुरू किया और वो आज भी लिख रहे हैं। और एक बिल्कुल वो हैं जिन्होंने पिछले दो दहाइयों में लिखना शुरू किया,
3: ताजा ताजा
2: ताजा ताजा, जिन्हें आप 21वीं सदी के से कहते हैं, जैसे अहमद सगीर हैं, और इसमें जो नौजवान लड़के हैं जैसे हमारे यहाँ नूरैन है और भी इस तरह के कुछ नाम
3: ये तो पूरी तरह से 21वीं सदी के
2: 21वीं सदी के तो ये है ना, ये पूरी तरह से 21वीं सदी के हैं।
3: तो वही मैं कह रही हूँ कि ऐसे उन लोगों की क्या अलहदा शनाख्त कैसे बनी?
2: नहीं, शनाख्त देखिए अभी वो अभी इब्तदाई स्टेज में, इब्तदाई स्टेज
3: अभी दो दहाइयां में,
2: अभी जो है वो अपने कुदमा से सीख रहे हैं। लेकिन अभी जो इस वक्त जो अफसानवी अदब पर जो लोग कहना चाहिए हावी हैं या जिनके नाम नुमाया हैं मैं कहूँ तो उसमें

0: ही लोग हैं जो 20वीं सदी के अवाखिर में जिन्होंने लिखना शुरू किया है, यानी 9वीं दहाई में, 10वीं दहाई में, या फिर वो 21वीं, जिनकी उम्र तकरीबन 50 और 55 के करीब है, इस तरह के लोग। अब आप देखिए कि बंबई में इस वक्त सलाम बिन रजाक भी लिख रहे हैं, और उसी के साथ के जैसे वो थे अनवर खमर, अनवर खां, मुश्ताक मोमिन, अली इमाम नकवी, मीम नाग, ये इस तरह, या बिहार में शफक ने लिखे, अब्दुस्समद ने लिखे, और बहुत से इस तरह के लोग हैं, हुसैन उलक हैं। तो ये लोग लिख रहे हैं, इनके मौजूआत में देखिए, अब ये मौजू का अगर हम देखें, या है मौजू जो प्रेमचंद का था उससे तकरीबन मिलता जुलता तरक्की पसंदों का था, फिर उससे बिल्कुल अलग जदीद का था, अब वो आया एक मावाद जदीद, लेकिन मावाद जदीद एक सिर्फ तर्ज फिक्र है, कोई ऐसे मावाद जदीद कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन मौजू के एतबार से, हैत के एतबार से आज का जो अफसाना निगार है 21वीं सदी का, वो अपने पुराने लोगों से सबसे इस्तफादा कर रहा है। उसके यहाँ कहानी भी है, कहानीपन भी है। ये हमारे आपके जो मेहमान हैं डॉक्टर खालिद अशरफ साहब, इन्होंने 1,000 सफे की 2 जखीम जिल्दें बर्रे सगीर में उर्दू अफसाना, मेरे ख्याल से ये, मैं तो खुश तख्लीककार हूँ, ये और ज्यादा बेहतर अंदाज में बात कर सकेंगे।
1: ये जो अभी आपने ये कहा कि मौजू के, सिर्फ मौजू के एतबार से नहीं, मैं कह रही थी कि उसमें सभी, और मौजू देखिए बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। अभी अहमद सगीर का एक अफसाना आ रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट लिखा गया है, पहचान पत्र,

0: ये मौजू हमारे 20वीं सदी के शुरू में नहीं था ये मौजू, तो ये लिहाज मौजू वक्त के लिहाज से बदलते रहते हैं।
1: देखिए एक दो चीजें मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अदब में तब्दीलियां इस तरह से मैकेनिकी ढंग से नहीं होती है, एक का अफसाना अलग है, 1999 का अलग है। यहां तो तब्दीलियां बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, एक बात। दूसरा ये कि रिकॉग्निशन आपको 40-50 साल की उम्र से पहले नहीं मिलता, आप बेशक लिखना 20 साल की उम्र से शुरू कर दें, तो किसको कहां रखेंगे, कहां से शुरू करेंगे, ये एक बड़ा टेढ़ा सा और टेक्निकल सवाल है। तो इससे बेहतर यह है कि हम अफसाने को अगर शख्सियात से हटाकर तकनीक तक और मौजूआत तक ही महदूद रखें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर नतीजे सामने आ सकते हैं। अब जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पोस्ट मॉडर्न अफसाना, तो कुछ लोगों ने कोशिश भी की है पोस्ट मॉडर्न अफसाना, हमारे दोस्त हैं कश्मीर में अल्ताफ अंजुम, वो लिख भी रहे हैं, अलीगढ़ में हैं शाफी किदवाई, वो लिख रहे हैं इस मौजू पे। लेकिन मुझे खुद जाती तौर पर ऐसा लगता है, माफ कीजिएगा, कि ये थ्योरी जो है तखलीक से कनेक्ट नहीं हुई। थ्योरी अपनी जगह और थ्योरी पढ़ाई जा रही है और थ्योरी को हमें पढ़ना चाहिए, लिटरेरी थ्योरी जो है सारे दुनिया में पढ़ी जा रही है, पढ़ना हमें चाहिए। लेकिन थ्योरी का और जो तखलीक का पुराना रिश्ता था, जैसे तरक्की पसंदों ने एक खास तरह की आइडियोलॉजी दी,
0: हाँ, नजरिया था,
1: और उसको उन्होंने तखलीक में भी इम्प्लीमेंट किया और तनकीद में भी इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह जदीदियत वालों ने शबखून वगैरह बाकायदा एक तहरीक चलाई और तनकीद और तखलीक उनकी एक तरह की एक पहचान बनाती है, हम उससे मुत्तफिक हों या ना हो। लेकिन यहां पोस्ट मॉडर्निज्म वाला मामला जो है ये अभी तक जमा नहीं। कुछ लोगों ने फैज साहब की नज्मों का एनालिसिस भी किया, जैसे कि फैज साहब को कैसे ना पढ़ें। तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि जैसे सदी बदल रही है तो कुछ चीजें यकीनन ऐसी हो रही हैं जो पहले अफसाने निगार के जहन में नहीं थी या लार्ज स्केल पे नहीं हो रही थी। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि दलित राइटिंग्स की रिवायत हिंदी में बहुत पुरानी है और प्रेमचंद से शुरू होती है, हालांकि कुछ लोग इत्तेफाक नहीं करते, उन्हें मुंशी भी कहा गया, प्रेमचंद को किसी ने कह दिया, जो जाहिर है कि अच्छी बात नहीं। मतलब एक स्कूल है जिसकी समझ यह है कि दलित राइटर ही दलित थीम्स पर, दलित मौजूदात पर लिख सकता है, लेकिन बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करते। प्रेमचंद तो अच्छे खासे मिडिल क्लास आदमी थे।
0: मैं भी इस इत्तेफाक नहीं करती कि एक दलित ही दलित के लिए लिख सकता है,
1: हाँ, लेकिन एक नजरिया चल रहा है,
0: हाँ, ये है नजरिया है,
1: बहुत से लोग मानते हैं बहुत से लोग नहीं मानते हैं, मतलब वो उनकी एक थ्योरी है, उसके पीछे एक नजरिया।
2: मौजू का डॉक्टर साहब कोई पाबंद नहीं होता है कि दलित उस पर लिखा। अब देखिए ये नहीं कि खवातीन के मसाइल पे खवातीन लिखेंगे,
0: हम तो बहुत महदूद होकर रह जाएंगे।
2: हमारे यहाँ के पहले नावल लिखा है नजीर अहमद ने, खवातीन के मसलों पर नावल लिखे।
1: सर राजेंद्र सिंह बेदी ने जिस अंदाज से खवातीन के मौजूद को छुआ है, वहां तक तो मेरे ख्याल में बहुत सी खवातीन भी नहीं पहुंच
0: पाई। अपने दुख मुझे दे तो देखिए आप, पूरा उसका खातून का जो दर्द है वो एक मर्द महसूस कर रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो हम इस तरह खानों में तो नहीं बटेंगे कि इस।
2: अच्छा ये बात जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने कही है ये बिल्कुल सही है कि कोई भी तख्लीककार किसी नजरिए को देखकर अफसाना नहीं लिखता। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हो रही है, अब बहुत से लोग आज 21वीं सदी में या 20वीं सदी के बिल्कुल अवाखिर में प्रेमचंद के यहां मावादे जदीदियत
0: तलाश कर रहे हैं।
2: अब प्रेमचंद ने कहा मावादे, अब एक साहब कहने लगे भाई मैं आपके अफसानों में मावादे जदीदियत के नजरिए से आपको मुताला करना चाहे, तो मैंने कीजिए, मैंने तो कभी लिखा नहीं।
1: वो फिर भी निकाल लेंगे कुछ,
2: वो निकाल लेंगे। तो तख्लीक कार कोई भी हो, 21वीं सदी का हो या 20वीं सदी का, वो अपने अहद के मौजूआत को देखते हुए, मसाइल को देखते हुए लिखता है और वही कामयाब होता है, वही तख्लीक जो है हमेशा जिंदा भी रहती है। आज देखिए आप 21वीं सदी में दुनिया बहुत सिमट गई है। पहले जैसे आप देखें कि कदीम दास्तानों में रोम और चीन और वो जब कहते थे तो उसका मतलब था कि बहुत दूर है वो जगह। आज कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर आदमी सब देख लिया, टीवी के लिए उसे अमरीका का भी मालूम है, लाइव टेलीकास्ट होते हैं सब। तो आज का जो तख्लीककार है उसके पास मौजूआत बहुत है, वो आलमी सतह पर लिख सकता है। क्यों? इस वजह से कि उसका मुताला और मुशाहिदा बहुत वसी हो गया है। पहले मुताला महदूद होता था, आज इंटरनेट के जरिए उसे सारी किताबें भी दस्तयाब हैं। आज टीवी के जरिए वो सब कुछ देख सकता है जो पहले लोग नहीं देख पाते थे।
0: आपने जैसे कहा कि मुताला जो है, मुझे लग रहा है मुताला कम हो गया है, मुशाहिदा ज्यादा हो गया। मतलब आप सब देखिए,
2: नहीं नहीं मुताला देखिए, मुताला चाहे वो किताब के जरिए करे चाहे वो कंप्यूटर के जरिए करे, मीडियम बदल गया है।
0: अब देखिए आज कम हो रहा है।
2: आज जो है मेरे बच्चे

0: दीदी और दूसरे नौजवान भी बजाय हाथ में हर वक्त मोबाइल रहता है, तो कभी कभी हम बच्चों से पूछते हैं तुम हर वक्त मोबाइल में क्या करते रहते हो, कि हम तो अपने कोर्स का पढ़ रहे हैं। मुझे खुद अगर किसी किताब की जरूरत पड़ती है और मेरी अपनी घर की लाइब्रेरी में नहीं है, तो मैं रेख्ता जिस पे किताबें मिलती है मैं खुद रेख्ता पे सारी किताबें पढ़ लेता हूँ। तो ये तो मुताले का मतलब यही नहीं है कि हम ये आप किताब हाथ में लेकर ही पढ़ें, उससे पढ़ रहे हैं। मुशाहिदा ये कि हम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज आप देखें कि अगर हादसा होता है कहीं, तो हादसा बाद में होता रहता है, लोग उसकी मोबाइल पे वीडियो बनाते रहते हैं
1: बिल्कुल
0: और वो वीडियो सब जगह वायरल
1: बहुत
0: होती है।
1: हो गया
0: तो सब
1: है।
0: अब मैंने देखिए कल ही टीवी पे रात एक खबरों में देखा है, गुजरात में एक मोटरसाइकिल पे एक मियां बीवी जा रहे थे, बीच में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था और बहुत तेज रफ्तार जीप जो है उन्हें कुचलती हुई चली गई। अब खुदा जाने वीडियो भी उसकी उस पर आ रही है,
2: किसी ने वीडियो बनाई
0: तो ये चीज वीडियो बन रही, कोई हर चीज की वीडियो मौजूद है। तो ये तख्लीक कार के सामने वो दर्द, अब देखिए कितना सेंसिटिव मामला है कि वहां वो जैसे मोटरसाइकिल गुजरी, ये तख्लीक कार के लिए है कि वो एक पूरी पूरी जुजियात लिख सकता है, जुजियात को देख सकता है कि मोटरसाइकिल पे से वो गिरे फैमिली, तो फौरी तौर पे उन दोनों मियां बीवी के बजाय सबसे पहले बच्चा उठ के खड़ा हो गया। तो ये चीज ये आज के तख्लीक कार के पास बहुत कुछ है कहने के लिए।
1: वही जो मैंने कहा था कि अलहदा जो शनाख्त बना रहा है वो यही कि क्योंकि मुशाहिदा ज्यादा है ये चीजें वो देख सकता है।
0: देखिए अफसाने में एक चीज होती है कि अफसाना निगार जब कुछ बयान करता है तो उसे देखना ये होता है, खालिद साहब बहुत अच्छे नक्काद हैं उसके अफसाने के, कि अफसाने में जब हम अफसाना लिख रहे हैं तो ये सोचा जाता है कि हमें क्या नहीं लिखना, क्योंकि तफसीली बयान उसमें नहीं होता अफसाने में, ये नहीं कि हमें लिखना, हमें क्या नहीं लिखना, यानी हम सिर्फ इख्तिसार जिसे कहते हैं कि हमें वही कुछ बयान करना है जो हमारा मरकजी ख्याल जो है, यानी थीम, हमारे थीम का तकाजा है। अगर हमारे थीम का तकाजा चंद अल्फाज में पूरा होता है तो हमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं, जो दास्तानों में होता था,
1: देखिए
0: दास्तानों में होता था। और आज आप देखें, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए 21वीं सदी का अदीमुल फुरसती नहीं, ये उर्दू अफसाने के फन का तकाजा है कि अगर हम देखिए, मैं आपको बताऊं,
1: देखिए अभी
0: मैं आपको एक फर्क बताऊं,
1: के पास वक्त भी नहीं है कि वो इतना 20 पेज के
0: देखिए अफसानवी अदब में हम तीन असनाफ लेते हैं, दास्तान, नावल और अफसाना। अब इन तीनों में मैं आपको एक फर्क बताऊं, दास्तान में इतनी तवालत होती है कि अगर उसमें से आप दो चार किस्से निकाल देंगे तब भी कहानी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बाहोबहार चार दरवेश का किस्सा है, एक किस्सा अगर निकाल देंगे तीन दरवेश पे भी कहानी पूरी हो जाएगी। नॉवेल में जो वसत है, नॉवेल के वसत में से अगर आप दो चार सफे निकाल देंगे तो उसकी कहानी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अफसाने में से आप दो चार जुमले निकाल देंगे तो उसके बुनियादी थीम पर असर,
2: वो तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता
1: है। मेरे ख्याल से कृष्णचंद्र के अफसाने से आप पूरे पूरे पैराग्राफ निकाल दीजिए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा।
0: नहीं वो अलग बात है, लेकिन अफसाने में यही है, जो अच्छे अफसाने हैं कि उसमें से अगर आप चाहे कफन हो उसमें से कुछ जुमले निकाल देंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आज के लिखने वाले के सामने इतना वसी मुशाहिदा है कि उसे वही लिखना है जो उसकी कहानी चाहती है।
1: अच्छा खालिद अशरफ साहब, आप क्योंकि आपकी तो किताबें भी बहुत सी आ चुकी हैं और अफसाने के बहुत अच्छे नाकिद हैं आप, तो ये बताइए कि जैसे हमें 20वीं सदी के अव्वलीन दहाई में, अव्वलीन दो दहाइयों में हमें सज्जाद हैदर यलदरम और मुंशी प्रेमचंद जैसे अफसाना निगार मिले थे और उन्हीं की राहों पे, रोशन की हुई राहों पे आज का अफसाना निगार चलता है, तो ये बताइए क्या हमें 21वीं सदी के अव्वलीन दो दहाइयों में ऐसा कोई अफसाना निगार नजर आ रहा है? आपको कुछ ऐसे नकुश मिल रहे हैं कि ये लोग इनके अफसाने बाद तक जिंदा रहेंगे?
2: और देखिए मैं अफसाने की सूरत हाल से मायूस नहीं हूं, और बहुत जगह कहा जा रहा है कि अब प्रेमचंद पैदा नहीं होंगे और कुर्तुब में हैदर पैदा नहीं होंगे, तो वो तो कहीं भी टॉलस्टॉय और बर्नार्ड शाह और शेक्सपियर पैदा तो होने बंद हो गए अब, लेकिन अफसाना लिखा जा रहा है और अफसाना हमारे यहां भी लिखा जा रहा है और सरहद के पार भी लिखा जा रहा है। चूंकि उधर की किताबें इधर नहीं आती, इधर की किताबें उधर नहीं आती, इसलिए अक्सर हम उधर की बातें ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपको सियाज करना चाहता हूं कि अफसाने में लगातार नई चीजें आ रही हैं। वो नई चीजें क्या हैं? एक तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि एक दलित मूवमेंट जिस तरह से 15-20 साल में मजबूत हुआ है, हमारे यहां दलित मूवमेंट बाकायदा दलित राइटिंग्स नहीं थी, बल्कि ये कहना चाहिए कि प्रेमचंद ने लिखा कुछ, कृष्णचंद ने कुछ अफसाने लिखे, आपने भी कृष्ण का जिक्र किया ना कि

0: के मसले जैसे अभी बात कर रहे थे,
1: डॉक्टर
0: साहब मसले तो वही हैं, देखिए चाहे फिसादात का हो, फिरके वारियत का हो, घरेलू समाजी मसाइल हो, मसले तो जो है दलित मसाइल है, मसले तो सब हर सदी में बदलते जाते हैं, लेकिन होते
2: बस
0: सब
2: उन्हीं के हिसाब से,
0: उसके हिसाब से
2: आप सही फरमा रहे हैं कि
1: डॉक्टर साहब एक बात मैं यस करना चाहता था, जबान के हवाले से जैसे आपने फरमाया कि कुर्तुलन हैदर वाली जबान नहीं लिखते, मेरा जरा सा ये कहना था कि मुझे कहीं ऐसा लगता है कि पुराने जो हमारे अदीब और शायर थे, जैसे शायरों के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर आपको शायरी शुरू करनी है उर्दू शायरी तो फुसहा के अहले जबान के 10,000 अशार आपको याद होने चाहिए।
2: बिल्कुल,
0: वो पहले होता था
1: जी,
2: दाग यही करते थे जब उनके पास कोई शागिर्दी के लिए आता था,
0: आप तो किसी को 10 शेर भी याद नहीं होंगे तब शायरी शुरू कर देते।
1: लेकिन मेरा कंसर्न ये है, मेरा कहना यह है कि क्या हमारे अदीब, हमारे अफसाने निगार, हमारे नावल निगार, क्या जो दूसरा अदब लिखा जा रहा है, आलमी अदब लिखा जा रहा है, हिंदुस्तान में इलाकाई अदब लिखा जा रहा है, क्या उसका मुताला करते हैं या नहीं, या कुर्तुल हैदर जैसी जबान लिखने की अहलियत भी रखते हैं कि नहीं, मुझे माफ कीजिए।
2: अभी मैंने पहले शुरू में यही बताया था कि ये जो आप कह रहे हैं कि वो कुर्रतुल ऐन हैदर वाली जबान रखते हैं या नहीं, या ये जबान पढ़ सकते हैं या नहीं, तो जैसा कारी होगा, अफसाना निगार जिसको दस्तरस होती है अपनी जबान पर, वो अपने कारी की जरूरियात पूरी करता है, जैसा कारी है वैसे ही वो लिखेगा। इसीलिए तो आप देख लीजिए कसीदा खत्म हो चुका
0: है ना, मार्केट में जिस चीज की जरूरत होगी वही चलेगी,
1: डिमांड सप्लाई,
0: डिमांड वही है मामला। तो आज ऐसा है, जैसा खालिद साहब ने ये बात कही कि ये लोग मायूसी नहीं है उर्दू अफसाने से, या
2: नहीं मायूसी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अफसाना
0: खूब लिखा जा रहा है। और आप देखें खालिद साहब के 8वीं दहाई में 20वीं सदी के, ये लग रहा था कि नावल खत्म हो गया
1: जी,
0: नावल लिखा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल, लेकिन जब 8वीं दहाई के अवाखिर में नावल लिखने शुरू, मेरे ख्याल से पिछले 25-30 साल में 200-300 नावल आ गए होंगे,
2: 80
1: तो 1,000 पेज के,
0: 1,000 पेज
1: के,
0: तो नावल बहुत ज्यादा लिखे जा रहे हैं। और वही अफसाना निगार ने जो सिर्फ अफसाने तक महदूद थे ये था, वो अब नावल भी लिख रहे हैं। मैंने जो एक बात कही कि अब आज के लिखने वाले का मुशाहिदा बहुत वसी है, पहले था कि कुछ और चाहिए वसत मेरे बयां के लिए वाली बात, तो अब गजल के बजाय वो जैसे गजल वाला नज्म कहे और नज्म अफसाने वाला, अब उसके पास इतना मुशाहिदा है कि वो नावल तक फैला सकता है अगर उसके पास वक्त है तो।
2: अच्छा, अभी एक तहरीक की बात हुई थी, देखिए तरक्की पसंद तहरीक हुई तो उसके तहत अफसाने लिखे गए, फिर जदीदियत की तहरीक आई, फिर हल्का अरबाब ज़ौक आए, तो ये सब अपने मकासिद को लेके, तो आप क्या समझते हैं इस दौर में हमारे उर्दू अफसाने को किसी तहरीक या तंजीम की जरूरत है?
0: नहीं, इसमें मेरी राय जो है, मैं मेरे ख्याल में कि आज के तख्लीक कार के सामने न कोई तहरीक है न कोई रुझान है, मेरी अपनी जाती राय है, न वो तरक्की पसंद तहरीक जैसा है, शालिक साहब, खालिद साहब और बेहतर बता सकते हैं, तरक्की पसंद तहरीक के जरिए असर कुछ लिख रहा है, न जदीदियत के रुझान के जरिए असर कुछ लिख रहा है, वो अपने जज्बात के इजहार के लिए अपनी तख्लीक को पेश कर रहा है, वो जो कुछ देख रहा है कि मुझे अपने एहसास को जब्त नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, तो वो जो कुछ सोच रहा है कि मैं अपनी बात को कारी तक पहुंचाऊं, उसमें न इबहाम हो न तजरीद हो ये न प्रोपेगंडा हो, ये क्या खालिद साहब,
2: खालिद साहब आपका इस बारे में क्या राय है?
1: देखिए मुझे, मैं आपसे डॉक्टर साहब इत्तेफाक करता हूं पूरी तरह, तहरीके कुछ लोगों के चलाने से तो पैदा होती नहीं है, बनती नहीं, वो एक मखसूस सियासी समाजी हालात थे, और उसमें जो एक सोशलिज्म का एक बड़ा मूवमेंट था ना सोवियत यूनियन का, उसका असर
0: था।
1: उसका कहना चाहिए कि उसकी प्रोडक्ट थी वो तरक्की पसंद तहरीक, और उसमें इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो मूवमेंट चला था आजादी का, पूरे थर्ड वर्ल्ड में चल रहा था, वो सारी चीजें थी। तो अब मुझे भी यकीन ऐसा लगता है कि तहरीकों का जमाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानता हूं कि अदब जो है सियासत से अलग नहीं हो सकता। अब जैसे आपने एक अफसाना लिखा,
0: सियासत भी समाज का हिस्सा है
1: बिल्कुल, और वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर घुस गई है वो। अब जैसे आपने एक अफसाना लिखा सिर्फ एक शब्द का फासला,
0: जी जी,
1: आपका अफसाना है, बहुत अच्छा अफसाना है, और आप उसे दास्तानों के अंदाज में लिखते हैं, अरबी किरदार डालते हैं उसमें, जैद बिन हारिस, लेकिन कहानी तो हमारे यहां की है वो। तो अफसाने की एक तो सियासी तहरीकात हुई, दूसरी जो ब्रॉडर ह्यूमन वैल्यूज हैं, मसलन ये कि मुसावात होनी चाहिए, عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے، دلتوں کو حقوق ملنے چاہیے۔

0: माइनॉरिटीज को हकूक मिलने चाहिए, एनवायरमेंट का इशू है, और जो कहना चाहिए कि सस्टेनेबल ग्रोथ का जो चल रहा है ना आजकल के, भाई इतना पोल्यूशन है, हम कैसे जिएंगे, हमारी नस्लों का क्या होगा, जमीन का नौहे का अफसाना है हसन मंजर का कराची से, वो सब इन चीजों को अहाता करता है। और तहरीकों का टाइम तो शायद नहीं रहा, लेकिन अब हम नहीं कह सकते कि मुस्तकबिल में आगे चल के कोई बड़ी तहरीक पैदा हो जाए। तहरीकें पैदा होती हैं जब तहरीकों का टाइम आता, हम कोई कहना चाहिए कि मुस्तकबिल के बारे में नहीं कह सकते।
1: अभी दलित तहरीक जैसे चल रही है,
2: अभी जैसे नायक साहब ने
0: बराबर अफसाने में है,
2: नायक साहब ने मेरे अफसाने का जिक्र किया, मैं कहूँ आज का जो लिखने वाला है वो ये जानता है कि हमें अपनी बात को कहने का सलीका क्या चाहिए। हम बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट नहीं कह सकते, तो एक अलामती अंदाज में या उसमें, जैसे मैंने अफसाना लिखा नया दरिंदा खौफ, तो उसमें है तो वो दास्तानवी अंदाज में, लेकिन है वो आज की कहानी,
0: आज के हालात पर है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर इब्ने कवल साहब और एसोसिएट प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब इस महफिल में आने का। तो आज की महफिल के मुजाकरे का जो मौजू था 21वीं सदी में उर्दू अफसाना, तो तय ये हुआ कि उर्दू अफसाने से आप लोग मायूस नहीं हैं, उर्दू अफसाना तरक्की कर रहा है और यकीनन आगे और तरक्की करेगा। बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन वही एक कमी कि मुताले की कमी, लोग दूसरा आलमी अदब नहीं पढ़ रहे हैं, इलाकाई अदब नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने फरमाया। तो अगर वो किया जाए तो यकीनन हमारे यहाँ के अफसाना निगारों को के लिए ये सब मशा ले रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया,
2: आपका भी शुक्रिया।
3: आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाज़े नज़र, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
4: मुल्क भर में आज से स्वच्छता ही सेवा मुहिम 2026 का आगाज हो गया है। ये मुहिम 2017 से हर साल मुनाकिद की जा रही है। इस साल इस मुहिम का मकसद शहरियों, इदारों और क़यादत को एक साथ लाकर आवामी शिरकत और इज्तमाही कोशिशों के जरिए सफाई को फरोग देना है। इस साल की मुहिम का मरकजी ख्याल है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत, यानी सफाई में शराकत, साफ भारत तरक्की याफ्ता भारत। ये थीम इस बात को उजागर करता है कि सफाई हर किसी की जिम्मेदारी है। एक साफ और तरक्की याफ्ता भारत का हुसूल तभी मुमकिन है जब तमाम शहरी अपने आसपास के माहौल को साफ रखने में फ़ाल किरदार अदा करें। इस साल ये मुहिम 5 अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगी। इनमें शामिल है सफाई के लिए मखसूस यूनिट्स और अवामी मुकामात की काया पलट, स्वच्छ पाठशाला, युवा फॉर स्वच्छता यानी साफ स्कूल सफाई के लिए नौजवान, सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर यानी सफाई कारकुनों की हिफाजत और एहतराम के कैंप, जन भागीदारी फॉर स्वच्छता यानी सफाई के लिए अवामी शराकत और स्वच्छता से समृद्धि यानी सफाई से खुशहाली। ये मुहिम देही और शहरी दोनों इलाकों के लोगों की हौसला अफजाई करेगी कि वो सफाई की जिम्मेदारी उठाएं। इसमें हुकूमत और मुआशरे के तमाम तबकात को शामिल करने का तरीकाकार अपनाया जाएगा जिसमें अवामी शिरकत और बाकायदा सफाई पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। सॉलिड वेस्ट यानी लोगों को ठोस फजले के इंतजाम के कवायद और फजले के इंतजाम में मुख्तलिफ मुतालिका फरीकीन के किरदार से भी आगाह किया जाएगा। फजले को उसके माखज पर ही 4 जुमरों में अलग करने पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। मरकजी वजीर बराए जल शक्ति चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने गुज़श्ता रोज नई दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान मीडिया के साथ इस साल की मुहिम की तफसीलात शेयर की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सफाई एक ऐसी कौमी तहरीक बन गई है जिसकी बुनियाद अवामी शिरकत पर है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस मुहिम के तहत सियाहती मुकामात की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, बशमूल वो इलाके जहां सयाहों की बड़ी तादाद आती है और खासकर मकबूल साहिल। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर 1 अक्टूबर 2026 को मुल्कगीर सतह पर श्रमदान यानी रजा कराना सफाई की सरगर्मी का एहतमाम किया जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम एक दिन एक घंटा एक साथ रखा गया है। اس اقدام کے تحت معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد اکٹھے ہوں گے اور صفائی کے لیے

0: एक घंटा वक्फ करेंगे। 2 अक्टूबर को, जिसे स्वच्छ भारत दिवस के तौर पर मनाया जाता है, देही इलाकों में खुसूसी ग्राम सभाएं मुनक्किद की जाएंगी। ये ग्राम सभाएं मुहिम के दौरान किए गए काम का जायजा लेंगी और इसके नतीजे पर तबादलाए ख्याल करेंगी। स्वच्छता ही सेवा मुहिम का मकसद सिर्फ अवामी मुकामात की सफाई करना ही नहीं है, बल्कि इसका मकसद लोगों की हौसला अफजाई करना भी है कि वो सफाई को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और ये समझें कि हिंदुस्तान को साफ सुथरा रखना एक मुश्तरका जिम्मेदारी है।
1: स्वच्छता ही सेवा, इस मुहिम के हवाले से अभी आप सुन रहे थे हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। आज की फिल्मी नगमों के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं हसरत जयपुरी के लिखे कुछ फिल्मी नगमे उनके यौम वफात के मौके पर। प्रोग्राम की पहली पेशकश मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का ये नगमा कुमार सानू की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया है अनु मलिक ने।

आकाशवाणी किशोर कुमार की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है कल आज और कल, मौसिकार शंकर जयकिशन।

लता मंगेशकर और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्मी राम तेरी गंगा मैली, नगमा निवास से जयपुरी मौसीकार रविन्द्र जैन। साथियों, आज के फिल्म मौसीकी के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं हसरत जयपुरी के लिखे कुछ फिल्मी नगमे उनके यौम वफात के मौके पर। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का यह नगमा, जिसे मौसीकी सजाया शंकर जयकिशन ने।

मैंने हुजूर फिल्म का नाम आप सुनते हैं कि मन्ना डे की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया था शंकर जयकिशन ने। और समझ लीजिए, सुनिए किशोर कुमार की आवाज में दुनिया फिल्म का नगमा। इसमें किशोर का साथ दे रही आशा भोसले, नगमा निगार जयपुरी, मौसीकार शंकर जयकिशन।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में आप सुन रहे थे गीत फिल्म का ये नगमा। प्रोग्राम के लिए पेशकश आप तमाम सामईन के लिए दा फिल्म का नगमा, नगमा निगार से जयपुरी मौसीकार शंकर जयकिशन।

आइडेंटिटी कार्ड के जरिए तस्लीम किया जाना, हुनरमंदी में बेहतरी लाना, कर्ज फराहम करना, डिजिटल लेन देन के लिए तरगीबात और बाजार के सिलसिले में मदद फराहम करना शामिल है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम ने एक अहम संग मील हासिल किया है और इस पहल के तहत 30 लाख मुस्तफीदीन का इंतराज हो चुका है। इस स्कीम का मकसद विश्वकर्मा के रिवायती हुनर को मुस्तहकम करते हुए उन्हें इदारा जाती मदद, जदीद साजो सामान, कर्ज तक रसाई, हुनरमंदी के फरोग और बाजार राबतों के सिलसिले में मदद फराहम करना है ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। हुनरमंदी के फरोग और कारोबार की वजारत के जरिए तक तकरीबन 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी हुनर की तरबियत फराहम की जा चुकी है। कर्ज की सहूलियत के तहत 6 लाख से ज्यादा विश्वकर्माओं को 5% सालाना की रियायती शरह सूद के हिसाब से 1 लाख रुपए तक के कर्ज फराहम किए जा चुके हैं। इसके अलावा इंडिया पोस्ट के जरिए 18 लाख से ज्यादा जरी टूल किट्स विश्वकर्माओं को फराहम किए गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी और खिदमात के 25 बरस मुकम्मल होने के मौके पर आज से बीजेपी के मुल्क गिर सतह पर एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज हो गया है। सेवा संकल्प अभियान जो आइंदा माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा, इसका पहला दिन सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसके तहत मुल्क भर में खून अतिया करने के कैंप लगाए जाते हैं। इस मौके पर बाद में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने कहा कि मुल्क भर से पार्टी वर्कर खून अतिया करने के इन कैंपों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जेर क्यादत शहरियों की जिंदगी में यकसर तब्दीली आई है। जनाब नवीन ने कहा कि वजीर आजम की क्यादत में भारत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की राह पर तेजी से गामजन है। सभी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज वजीर आजम को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने गुज़श्ते 25 बरस में जनाब मोदी की गैर मामूली अवामी खिदमात और मुल्क की तामीर में उनके गहरा कद्र तआवुन की सताइश की। नायब सदर ने कहा कि जनाब मोदी की बसीरत अफरोज क्यादत के तहत भारत दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई अहम मईशतों में शामिल है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। भारत ने नामनिहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से माहदे करने का कोई इख्तियार नहीं है जिस पर उसने जबरन और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजारत ने इस सिलसिले में रिपोर्ट का नोटिस लिया है और इस मामले पर भारत का मौकफ वाज है और ठोस है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कोई सरहद नहीं है। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है जिसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। तर्जुमान ने यह बात दोहराई है कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी 1963 के नामनिहाद चीन पाकिस्तान सरहदी समझौते को तस्लीम नहीं किया है और हमेशा उसका यह मौकफ रहा है कि यह गैर कानूनी और नाजायज है। आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बरट्टल इलाके में एक मुश्तरका खुफिया मालूमात पर मबनी इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मालूमात की तस्दीक किए जाने के बाद कल रात ये कार्रवाई शुरू की गई थी। मर्दों की क्रिकेट में आज भारत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 बैन अक्वामी सीरीज का आखिरी मैच खेलेगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत ने पहले 2 मैचों में शानदार जीत के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है, जबकि अफगानिस्तान इस मुकाबले में मुख्तसर मुद्दत के लिए खेल में बना रहा। पहले मैच में अभिषेक शर्मा ने शानदार खेल का मुजाहरा किया, जबकि दूसरे मैच में संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के शुभभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निजाम तेजी से वसत पा रहा है और इख्तिरा सरमायाकारी और तरक्की के नए इम्कान पैदा कर रहा है। भारत ने नामनिहाद पाकिस्तान

वे परचम अब्बास दा गाजी अब्बास दा सोने अब्बास दा परचम परचम।

सच्चा तेरा नाम है सच्चा, सच्ची जात है तेरी, जर तो महताब बना दे लालन हस्ती मेरी, जदों की ताज़ कर कलंदर दा, जदों की ताज़ कर कलंदर दा, मेरी हर एक मुश्किल टली टली मेरी रूह विच वसदा, लाल सखी मेरी रूह विच वसदा।

कि कोई भी कम ना आया। मुर्शद लाल कलंदर मेरे हरदम साथ निभाया। इस फानी दुनिया विच रह के कोई

झल्ला पखी पखी झल्ला में पखी झल्ला पखी पखी झल्ला में पखी पखी झल्ला में पखी पखी झल्ला में पखी झल्ला पखी

ਕਲੀਆਂ ਵੀ ਖੁੰਡ ਖੋਲਣ ਪਈਆਂ, ਬੁੱਲ ਬੁੱਲ ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕਣ ਪਈਆਂ।

आमिन अजकल सोहना साईं, आमिन अजकल सोहना साईं, पर्वत धारा रोह घनेड़े जथना गे।

आ मिल अजकल सोहना साई, ना तम मुफ्ती खून थी साई।

गुजरी सारी उम्र सफर विच पौंदे सौ सौ पौर अंदर विच या

आ मिल अजकल सोहणा साईं, ना ता मैं मुफ्ती खून थी साईं। जा देखा झुंड मी किन मिन को, रोवा कर कर याद सजन को। जा देखा झुंड मी किन मिन को, रोवा

नाता में मुफ्ती खून थी साई, वाट निहारा कांग उड़ारा पंडित जोशी दे कन खावा, वाट निहारा कांग उड़ारा।

झन

translate आशा हास आज दी इस मजलिस से थोड़े ले सिलसिले पेश कीते जान गए हम तो थोड़ी देर बाद होगी आज दी कल। आज दी कल तो बाद 5:40 का समा रहेगा हफ्तावारी प्रोग्राम माझे दी महकदा। उस तो बाद 6:10 पे पेश कीते जान गए

एक्शन पास किया गया। इस मते दे तहत हर साल 17 सितंबर नूं इह दिन मनाउण दा फैसला किया गया। पहली बार 17 सितंबर 2019 नूं अधिकारित तौर ते पहला विश्व मरीज सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसका मुख उद्देश्य की है, इस दिन नूं मनाउण दे मुख उद्देश्य जागरूकता पैदा करना, नुकसान नूं घटाउणा, साझेदारी वधाउणा, ग्लोबल यकजहती वधाउणा। दुनिया भर के लोगों, डॉक्टर, नर्सा अते नीति घड़न वालियां नूं मरीजां दी सुरक्षा दे महत्व बारे जानकारी देना, जागरूकता फैलाउणा। हस्पतालां अते सेहत केंद्रां विच इलाज, दवाईयां जां टेस्टां दौरान होण वालियां गलतियां जिन्हां नूं रोकिया जा सकता है उन्हां नूं घट करना। मरीजां अते उन्हां दे परिवारां नूं इलाज दी प्रक्रिया विच सरगर्मी नाल शामिल करना ता जो गलतियां दी गुंजाइश ना रहे। ग्लोबल यकजहती सारे देशां नूं इकट्ठे लिया के सेहत सेवावां दे म्यार नूं सुरक्षित बनाउण लई नीतियां बनाउण लई प्रेरित करना। इस साल यानी 2026 दा थीम अते महत्व इस बारे की है। हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वल्लों एक खास विशा थीम चुनिया जांदा है। साल 2026 दा विशा अते नारा इस तरह है। मुख थीम है गैर छूतकारी बीमारियां लई सुरक्षित देखभाल, सेफ केयर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। मुख नारा है जीवन लई सुरक्षित देखभाल, सेल्फ केयर फॉर लाइफ। 2026 दे थीम दी महत्ता बारे जानकारी, गैर छूतकारी बीमारियां जिवें कि दिल दे रोग, कैंसर, शुगर अते साह दियां पुरानियां बीमारियां दुनिया भर विच होण वालियां कुल मौतां दा लगभग 74% हिस्सा ने। इन्हां बीमारियां दे मरीजां नूं लंबे समय तक, कई वार सारी उम्र हस्पतालां दे चक्कर कट्टणे पैंदे ने अते बहुत सारियां दवाईयां खाणियां पैंदियां ने। वार वार इलाज दी प्रक्रिया विचों लंघण कारण इन्हां मरीजां नाल मेडिकल गलतियां होने का खतरा सब तो वध जांदा है। इसे लई साल 2026 विच इन्हां मरीजां दी सुरक्षा नूं मुख तरजीह दित्ती गई है। पिछले साल दे थीम दी गल करिए तां इस दिन दी निरंतरता अते महत्ता नूं समझण लई पिछले सालां दे थीमां ते नजर मारनी बहुत जरूरी है। 2025 दे थीम दी गल करिए तां हर नवजम्मे बच्चे अते बाल दी सुरक्षित देखभाल। 2024 दा थीम सी मरीजां दी सुरक्षा लई निदान विच सुधार। 2023 दी गल करिए तां मरीजां दी सुरक्षा लई मरीजां नूं खुद शामिल करना थीम सी। 2022 विच दवाईयां दी सुरक्षा, बिना नुकसान दे दवाई, इह थीम सी। होर पिछे चल जाइए तो 2021 विच सुरक्षित मां अते नवजम्मे बच्चे दी देखभाल, इह साडा थीम सी। 2020 विच सेहत कर्मचारियां दी सुरक्षा, मरीजां दी सुरक्षा लई इक तरजीह, इह थीम सी। 2019 दा थीम सी मरीज सुरक्षा, एक विश्वव्यापी सेहत तरजीह। कुछ मुख कारण मरीजां दी असुरक्षा दे, जिन्हां नूं आपां मेडिकल गलतियां कह सकदे हां। WHO दे आंकड़ियां मुताबक दुनिया भर विच हर 10 विचों एक मरीज हस्पताल विच इलाज दौरान किसे ना किसे नुकसान दा शिकार हुंदा है, जिन्हां विचों लगभग अद्धियां गलतियां नूं आसानी नाल रोकिया जा सकता है। मरीजां दी असुरक्षा दे कुछ खास कारण जिन्हां ते झात मार ली जाए तां ज्यादा वधिया। दवाईयां दीआं गलतियां, गलत दवाई देना, गलत मात्रा लिखना जां दो वख वख मरीजां दीआं दवाईयां दा आपस विच बदल जाणा, इह मरीजां नूं होण वाले नुकसान दा सब तों वड्डा कारण है। गलत जां देरी नाल निदान, डायग्नोस्टिक एरर्स, बीमारी दा सही समय ते पता ना लगना जां गलत बीमारी दा इलाज शुरू कर देना, जिस नाल मरीज दी हालत होर बिगड़ जांदी है। हस्पतालां विच होण वाली इन्फेक्शन, हस्पताल दी गंदगी जां मेडिकल उपकरणां दी सही सफाई ना होण कारण मरीज नूं नवी इन्फेक्शन लग जाणा। सर्जरी दीआं गलतियां,
ਸੱਚ

माझी उपाशा नु पंजाबी दी टकसाली बोली मन्या जांदा है जो कि साहित्य अखबारा अते प्रशासन दे मुख भाषा है। माझी बोली विच एक विशेष तरह दी सुर अते रवानगी हुंदी है। विशेष शब्दावली विच माझी विच कुछ खास शब्द वरते जांदे ने जो इस नु बाकी इलाकियां तो वख करदे ने जिवे पाउ पराली वरत्या जाण वाला बेहद हरमन प्यारा शब्द गांडा बहुत ज्यादा मजबूत कुड़े कुड़ी नु संबोधन करने लई वरत्या जाण वाला शब्द खड़ो यानी रुको अच्छा इसनु कहंदे ने ठीक है। सरात्मक खासियत मांझी बोली विच उच्ची अते नीवी सुर दा बहुत सुचज्जा सुमेल हुंदा है जिस कारण ए बोलन विच बहुत रोबदार अते मिठी लगती है।

दुनिया बड़ी चमेला तुम्हारे I'm not going to be able to do that.

里哟，छड़े छड़े ना समझो लोग को छड़े बड़े गुड़कारी छड़े आनो थोड़ा भी कोई सके बीमारी।

¡No tengas solo!

चाबी गीत से सुन रहे हो गरेवाल ब्रदर्स, मैंने गिप्पी गरेवाल की आवाज से गीत से सुनिया, ते अगला गीत से सुनोगे वो भी है नीची कमर गरेवाल।

0: ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਸ਼, आज गुरु सेवा कॉलेज की तरफ से बालोबाल सौकड़ी में किसान मेला के बीच आंखों का कैंप लगाया गया है, ब्लड की कैंप लगाया गया है, और सारे लोगों को यहां पर में वो सुविधा अवेलेबल हो रहा है जो सुविधा हम एक हॉस्पिटल में जाकर के 500,000 लगाते हैं। लेकिन यहां किसान मेला को देखते हुए, निगाह में रखते हुए, लोगों को फायदा के लिए मात्र 20 रूपया में सारी जाँच हो रही है। साथ में आंखों का टेस्ट हो रहा है, जो आंखों का टेस्ट के लिए मैं हम लोग डॉक्टर का जो एक फीस होता है हॉस्पिटल में 100-500, वो यहां पर फ्री किया गया है। लोगों का आंख फ्री में जांच हो रहा है, फ्री में दवाइयां दिया जा रहा है, फ्री में चश्मा दिया जा रहा है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं गुरु सेवा नर्सिंग कॉलेज से। मैं राय हॉस्पिटल में डेली बैठता हूँ 9 बजे से 5 बजे तक, और यहाँ पर मैं आज हमें ड्यूटी मिला है लोगों की सेवा करने के लिए, किसान भाई की सेवा करने के लिए, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा लोग काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए लोग जितने ही किसान बोलो अपने सामान में बिजी है, उससे ही ज्यादा लोग आके यहाँ अपना आंख नाक कान ब्लड जांच सारी जांच करवाए रहे हैं।
2: कमल शर्मा जी, रिपोर्ट सुनी?
3: हाँ जी।
2: ते कुछ बोल भी सुनाने तुहानू मनोरंजन लई?
3: बिल्कुल बिल्कुल, सुनाओ जी।

0: आनंद बजिया जी गीत
1: बहुत जी बहुत मजा आ गया पूरा जी। प्रिंसिपल साहब फिर कल दे प्रोग्राम ते मौसम दी हाल बयानी तां दसो की है।
0: कल दे प्रोग्राम सवेरे 6:30 बजे खेतीबाड़ी प्रोग्राम च लसन दी बिजाई बारे जानकारी दित्ती जाएगी।
1: ठीक है।
0: शाम 6:30 बजे किसान मेले ते आधारित रेडियो रिपोर्ट सुनोगे।
1: बिल्कुल।
0: ते मौसम बारे जानकारी ए है जी, पंजाब च किते किते दरमियानी बारिश होएगी।
1: बिल्कुल।
0: ते की कहंदे हो जी?
1: चलिए जी,
0: चलो जी, जय हिंद।

0: प्रोग्राम किसान वाणी। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सिलिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार बारिश और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित गांवों के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है, इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। श्री चौहान ने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। ये कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इससे पहले विदेश मंत्री ने तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ही वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान के साथ सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंक रोधी अभियान में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। अफगानिस्तान ने भारत के साथ तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में दिल्ली में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। शाम की 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। आज के किसान वाणी कार्यक्रम में हम बात करेंगे जड़ सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन एवं अधिक लाभ के लिए बेहतर विकल्प और साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है और उनमें से एक योजना पर हम बात करेंगे जो कि है राष्ट्रीय गोकुल मिशन।
4: बिल्कुल मंजीत, बहुत सही कहा आपने। और जानकारी अपने किसान भाइयों के साथ साझा करते हैं अपने कार्यक्रम के दौरान, तो उसमें हम बात करेंगे कृषि सलाह के बारे में, बाजार भाव और मौसम की भी जानकारी हम अपने किसान भाइयों को देंगे।
3: बिल्कुल गौतम, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत दिसंबर 2014 में हुई थी। देसी गोवंश की नस्लों के विकास और संरक्षण, पशुओं की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार तथा दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी। वर्तमान में यह योजना मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है।
4: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने मंजीत। और किसान भाइयों के लिए गोकुल मिशन योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि पशु जो है उनके लिए सिर्फ पशु ही नहीं होता, पशु धन होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण, वैज्ञानिक पशुपालन को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित एवं उत्पादक बनाने में भी मदद मिल सकती है। तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी है मंजीत।
3: बिल्कुल, हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो देसी गाय और भैंस की नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन करना, उच्च आनुवांशिक क्षमता वाले पशुओं की संख्या बढ़ाना, आधुनिक तकनीक के माध्यम से दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना है, किसानों के घर तक कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा को पहुंचाना है। जैसे कि आधुनिक युग चल रहा है, आधुनिक प्रजनन तकनीकों जैसे IVF, सेक्स सॉर्टेड सीमेन और जीनोमिक सिलेक्शन को भी बढ़ावा देना है।
4: बिल्कुल, और ये जो योजना है मंजीत वो है गोकुल ग्राम जैसी सुविधाओं का विकास भी करना इसका उद्देश्य है। और इसमें केंद्र में देसी नस्ल के पशुओं के संरक्षण, पालन पोषण और प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और पशुपालकों को खासतौर पे जो कि वैज्ञानिक पशुपालन के लिए उत्प्रेरित हों, उसके पशु पोषण प्रजनन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने पर वैज्ञानिक बहुत अधिक जोर देते हैं।
3: बिल्कुल, और किसानों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन का सीधा संबंध किसान की आय और डेयरी व्यवसाय की लाभप्रदता से है। अगर बेहतर आनुवांशिक क्षमता वाले पशुओं से प्रजनन कराया जाता है तो आने वाली पीढ़ियों में दूध उत्पादन की जो क्षमता है वो बेहतर होगी और बढ़ेगी, जिससे कि आय का जो साधन है वो और सशक्त भी होगा।
4: बिल्कुल, अगर दुग्ध उत्पादन बढ़ता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मंजीत, हमने बात की गोकुल मिशन योजनाओं की, अगर बात करें जड़ वाली सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन और अधिक लाभ कैसे करें, तो जैसे खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ अगर सब्जियों का भी उत्पादन करें और उसमें जड़ वाली सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन करें तो उनको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है।
3: बिल्कुल गौतम, और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे जड़ सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन

0: एवं अधिक लाभ के लिए बेहतर विकल्प। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गोगराज सिंह जाट, वरिष्ठ वैज्ञानिक, शाखीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: जी, धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर साहब, सब्जियां कौन कौन सी होती हैं?
1: देखिए, अगर हम जड़ वाली सब्जियों की बात करें तो जो भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख जो जड़ सब्जियां हैं उनमें गाजर है, मूली है, चुकंदर है और सरगम है। ये चार सब्जियां हैं जो प्रमुख और व्यावसायिक तौर पर किसानों के द्वारा अपनाई जाती है, जिनका जो उत्पादन है किसान व्यावसायिक तौर पर सर्दी के मौसम में करते हैं, जिनकी शुरुआत हम सितंबर माह से करते हैं और जनवरी तक इनकी बुआई होती है।
2: डॉक्टर, जड़ वाली सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन जो है वो किसानों के लिए कितना लाभकारी है?
1: जी देखिए, अगर हम बात करें और अगर हम तुलना करें अन्य सब्जियों से या जो अनाज वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, उनसे अगर हम तुलना करें तो सब्जियों का एक किसानों के लिए बड़ा महत्व है, क्योंकि जो जड़ वाली जो सब्जियां हैं वो कम समय में पककर तैयार हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें मूली की, तो मूली 25 से 30 दिन में पककर तैयार हो जाती है, उसकी खुदाई कर दें तो किसान सितंबर से लेकर जनवरी तक 3 से 4 फसल मूली की आसानी से ले सकते हैं एक ही जगह पर, और उनका जो उत्पादन होता है वो भी अधिक होता है, और उनकी जो स्पेसिंग जैसे पौधे से पौधे की दूरी कम उस पर लगाई जाती है, जिससे कि किसानों को अधिक उत्पादन मिलता है। और जैसे हम बात करते हैं गाजर की, तो गाजर का भी जो डिमांड है आप देखते हैं कि सर्दियों में बहुत बढ़ जाती है,
2: बिल्कुल
1: बाद में गर्मियों में कोल्ड स्टोरेज में जो गाजर मिलती है उसका इतना महत्व नहीं होता जितना जो सर्दियों में फ्रेश गाजर होती है। तो गाजर भी 3 महीने की फसल है, तो गाजर में कुछ ऐसी किस्में हैं जो सितंबर से शुरुआत होती है और जनवरी तक लगाई जाती है, तो किसानों को सभी प्रकार की किस्में इसमें उपलब्ध हो जाती है, चाहे जो ज्यादा ठंड में लगाई जाती हो, कम ठंड में लगाई जाती हो, जैसे कि आजकल तो ऐसी किस्म भी उपलब्ध है बाजार में जो कि अगस्त में किसान इसकी सोइंग कर रहे हैं, तो जड़ वाली सब्जियों का किसानों के लिए अच्छा महत्व, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी आमदनी किसान भाई से ले सकते हैं।
2: जी
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि जड़ वाली सब्जियों के लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है?
1: जी देखिए, अगर मृदा की बात करें तो मुख्यतः जड़ वाली जो सब्जियां हैं उसके लिए बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। जो मिट्टी है वो गहरी और सख्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सख्त मिट्टी होती है उसमें जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, जड़ें मिट्टी में अच्छे से नहीं जा पाती है। जब मिट्टी में नहीं जा पाती है जड़ें, तो उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं जिनको, साइड से छोटी छोटी जड़ें और निकलने लग जाती है, जिसकी बाजार में बिक्री नहीं होती है किसानों की। तो बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद हो, जीवांश पदार्थ की मात्रा अच्छी हो, ऑर्गेनिक जो पदार्थ है वो अच्छी मात्रा में हो, और उसका जो पीएच मान है वो जरूर टेस्ट करा लें, वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। ना मृदा अम्लीय होना चाहिए, ना क्षारीय होनी चाहिए, मतलब जिसमें ना साल्ट हो और ना अम्ल हो, इस प्रकार की मिट्टी नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल, ये तो आपने मिट्टी की बात की, खेत की तैयारी वो किस प्रकार से करें, क्योंकि जहां मृदा की बात करते हैं वहां पर खेत वो तैयार करें जब उनको बुआई करनी है, तो किस तरीके से उन्हें तैयार करना चाहिए?
1: जी देखिए, सबसे पहले तो जैसे जड़ वाली सब्जियों की खेती मुख्यतः सितंबर से शुरुआत होती है, तो किसान भाई खेत को अच्छी प्रकार से उसकी जुताई कर लेनी चाहिए, 2 से 3 जुताई, गहरी जुताई करनी चाहिए उसकी खेत की, और मिट्टी को बिल्कुल समतल बना ले, भुरभुरी बना ले, और खेत की जुताई करे उससे पहले उसमें जो गोबर की अच्छी प्रकार से सड़ी हुई खाद लगभग 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जड़दार सब्जियों में डालनी चाहिए, और उसके बाद में मिट्टी में रिजेज बना ले, जिसको बोलते हैं कि हम बंड बोलते हैं, जैसे कि उठी हुई बंड होती है वो बना लें, या उठे हुए जो बेड है जो कम से कम उनकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी से होनी चाहिए, और अगर ड्रिप में कर रहे हैं तो उसमें 4 लाइन आराम से उस पे, एक बड़ा बेड है 1 मीटर चौड़ा तो उसमें लगा सकते हैं, अगर रिजेज में कर रहे हैं तो उसमें 2 लाइन हम किसान भाई कर सकते हैं और नालियों में उसकी बुआई कर सकते हैं। अगर वो ड्रिप पे नहीं कर रहा है, खुले खेत में पानी देकर कर रहा है, तो रिजेज में कर सकता है, और मिट्टी की जांच जरूर करा लें, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, तो मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये संतुलित मात्रा में है या नहीं है ये जरूर सुनिश्चित कर लें।
2: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, उन्नत किस्मों का चयन कितना महत्वपूर्ण रखता है?
1: देखिए, अगर हम किस्मों की बात करें तो किस्मों का महत्व जड़दार सब्जियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चारों जड़दार सब्जियां, इसमें 2 प्रकार की किस्में होती है, एक तो वो किस्में होती है जिनको हम कहते हैं यूरोपियन किस्में कहते हैं, एक होती है एशियाटिक किस्में जो कि एशियन रीजन में लगाई जाती है, यूरोपियन जो बहुत ज्यादा ठंड वाले जो क्षेत्र है उसमें लगाई जाती है। तो किसान भाई जब भी किस्मों का चयन करें ये जरूर कर लें कि उसको लगानी कब है, क्योंकि अगर आपको अगस्त और सितंबर में अगर इसे शुरू करनी है तो उनके लिए अलग किस्में हैं, आपको अगर दिसंबर में करनी है तो उसके लिए अलग है, और कौन से रंग की किस्में आपको लगानी है। जैसे आजकल देखते हैं कि बाजार में ऑरेंज रंग की किस्में भी है, लाल रंग की भी है, काली रंग की भी है, और आजकल तो अलग अलग रंग की किस्में आ रही है बाजार में, तो किसानों को किस प्रकार की किस्में लगानी है, उसके पास में कौन सा मार्केट है और कब उसकी डिमांड होती है, उसी हिसाब से किस्मों का किसानों को चयन करना चाहिए। और बहुत सारी किस्में उपलब्ध है। अगर हम किस्मों की भी अगर यहाँ बात करूं तो जैसे कि गाजर की बात करूं तो अगर काली गाजर की खेती किसान भाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पूसा आशिता ले सकते हैं। लाल वाली गाजर की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए पूसा रुदिरा ले सकते हैं, पूसा प्रतीक ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसान भाई दूसरी किस्में जिनको बोलते हैं कि ऑरेंज, उनकी खेती करना चाहते हैं तो पूसा केसर ले सकते हैं, पूसा यमदागिनी ले सकते हैं, नैंटिस ले सकते हैं। और लाल वाली जो गाजर उसमें

0: और है किस्में पूसा नयन ज्योति, वो ले सकते हैं। तो बहुत सारी किस्में, अगर हम मूली की बात करें तो पूसा देसी है, पूसा चेतकी है, ये दोनों किस्में अच्छी है जो पूसा संस्थान ने विकसित की है। इसके अलावा किसानों को यही बताना चाहता हूं कि जहां पर भी किसान रहते हैं लोकल एरिया में, वहां के अगर कृषि विश्वविद्यालय ने अच्छी किस्में विकसित कर रखी है तो वहां से भी देख लें, या जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है वहां का अगर अच्छी किस्मों का बीज बिक रहा तो वहां से ले लें, या किसी प्राइवेट की भी अच्छी अगर किस्म है तो वो ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर किसान बाहर से बीज लेता है तो उसको अधिक मूल्य पे करना पड़ता है, और अगर वो किसी सरकारी संस्थान से अच्छी किस्में लेता है तो उसका बीज का जो मूल्य होता है वो कम होती है।
1: डॉक्टर साहब की अगर सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन की बात करें हम, तो किसान भाई किस प्रकार से तैयार रहें उनका जो फसल है वो अच्छी हो?
0: देखिए, अगर सिंचाई और उर्वरकों की बात करें तो सबसे पहले मैं जैसे उर्वरक प्रबंधन, तो उर्वरक में जैसे हम खाद उर्वरक दोनों की बात करें, 10 से 12 टन अच्छे प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत तैयारी से लगभग 15-20 दिन पहले ही उसमें मिलाकर अच्छे से और उसको खेत की जुताई कर दे बढ़िया से,
1: बिल्कुल।
0: और उसी समय पर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन मुख्य उर्वरक है, तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो लगभग 50 से 60 किलोग्राम रखे, फास्फोरस की मात्रा है वो 40 किलो, और पोटास की मात्रा भी 40 किलो। तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है 60 किलो अगर मान लो दे रहा है किसान किसी भी जड़दार सब्जी में, तो 30 किलो खेत की तैयारी के समय प्रति हेक्टर डाल दे, और जो 30 किलो बस्ती है वो बुआई कर देते हैं उसके 30 दिन बाद में, जब पौधे छोटे छोटे निकलने लग जाते हैं, तब रिज के बीच में अगर खुले खेत में अगर कर रहे हैं, खुले पानी से कर रहे हैं, तो खुले खेत में वो छिटक कर फिर मिट्टी चढ़ा दें, और दूसरी जो नाइट्रोजन की मात्रा है आधी बची हुई 15 किलो उस टाइम डाल दिया, और 15 किलो लगभग 60 दिन बाद में जब जड़ों का विकास होता है उस समय डालना चाहिए। दो बार नाइट्रोजन की मात्रा किसानों को डालनी चाहिए, एक बार खेत की तैयारी के समय, एक बार 30 दिन बाद में, और तीसरी 60 दिन बाद में डालनी चाहिए, और फास्फोरस और पोटास खेत की तैयारी के समय ही मिला देना चाहिए। और किसी सूक्ष्म तत्व की अगर कमी है तो मिट्टी की जांच पहले ही करा ले, उसी के हिसाब से जो सूक्ष्म तत्व है जिसमें मान लो मैंगनीज है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, कई बार इसमें मृदा में कमी होती है तो उसकी वजह से कारी की बीमारी हो जाती है, जैसे कि जो जड़ें होती है वो फटने लग जाती है, अगर कैल्शियम की कमी है, बोरोन की कमी है, तो इन सूक्ष्म तत्वों की कमी से जड़ें फटने लग जाती है, उनका विकास अच्छे से नहीं होता, कलर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है, तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व वो भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं जड़दार सब्जियों के उत्पादन में। अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई, एक तो जैसे बुआई करते हैं जो आजकल न्यूमेट्रिक सीडर आता है जिससे कि गाजर की बुआई करते हैं, तो बुआई करने के तुरंत बाद में हल्की सिंचाई करनी चाहिए, जो मेड है, जो रिजेज है वो लगभग 50% ही डूबने चाहिए पानी में, पूरा पानी नहीं भरना चाहिए, अगर पानी ऊपर से अगर निकल गया तो उसका जो अंकुरण है बहुत कम हो जाता है गाजर में, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नमी धीरे धीरे पहुंचनी चाहिए बीज में, और जब अंकुरण अच्छे से हो जाता है तो हर बार लगभग 70% से ज्यादा मेड डूबने नहीं चाहिए, और अगर ड्रिप से दे रहे हैं तो जो घुलनशील उर्वरक है उनको सिंचाई के साथ किसान भाई दे सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, जड़ वाली सब्जियों में प्रमुख कीट और रोग प्रबंधक के बारे में भी जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ उनका रोकथाम किस प्रकार से किया जाए?
0: जी देखिए, अगर हम जड़दार सब्जियों की बात करें तो जड़दार सब्जियों में मुख्यतः कीट और बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है, क्योंकि जो भी सर्दी के मौसम की सब्जियां हैं जिनमें मुख्यतः जड़दार गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शलगम है, इनमें कीटों बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। लेकिन जैसे शलगम है, मूली है, ये क्या होता है, जैसे सरसों का खेत होता है उससे एफिड होता है, जो महू होता है जिसको हम चेपा भी बोलते हैं, जो हमारे को आप देखते होंगे कि फरवरी में जब सरसों की कटाई होती है तो आंखों में भी गिरता है, वो जो पीला हम कपड़ा पहनते हैं उसके ऊपर भी आकर बैठता है, तो वो जरूर मूली की पत्तियों पर बैठकर या शलगम इन पे उनका रस चूसता है, तो पत्तियां सूखने लग जाती है, कुरकुरी हो जाती है और पीली पड़ने लग जाती है, जिससे कि जड़ों का विकास भी अवरुद्ध होता है। तो उसके रोकथाम के लिए बेहतर यही है कि एक साफ पानी का स्प्रे भी किसान भाई कर सकते हैं, जिसमें कोई दवा ना मिलाए तो बेस्ट है, क्योंकि एफिड है वो जल्दी से साफ पानी के स्प्रे से भी मर जाता है। और अगर फिर भी अगर इस प्रकार की समस्याएं आती है और उसका नियंत्रण करना मुश्किल होता है, तो जैसे कॉन्फिडोर दवा है उसका 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में मिलाकर एक हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं। और अगर हम बीमारी की बात करें तो इसमें मुख्यतः जो भी बीमारी आती है जिसको हम काढ़ी की बीमारी बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से आती है, और इसमें मेजर कोई ऐसी बीमारी नहीं आती जो इन फसलों को नुकसान करती है।
2: डॉक्टर साहब, खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो इन फसलों के अंदर किस तरीके से खरपतवार का नियंत्रण करना?
0: जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है खरपतवार नियंत्रण, न केवल जड़दार सब्जियों में बल्कि सभी जो सब्जियां हैं उनमें, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो अवांछनीय पौधे होते हैं। जब हम एक मुख्य फसल लगाते हैं उसके साथ साथ में दूसरी कोई भी फसल हो, चाहे वो जो निकल जाती है उसको हम खरपतवार कहते हैं, तो किसान भाई कभी भी नहीं चाहते हैं कि चाहे वो पिछली फसल ही हो उसके बीज भी अगर निकल गए तो वो उस टाइम पर हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होते हैं, हमें नहीं चाहिए होते हैं, वो निकल जाते हैं, तो उसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जो मुख्य फसल होती है उसकी वृद्धि को कम कर देते हैं, उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है, उसका पानी होता है वो भी सोख लेते हैं, उसके जो न्यूट्रेंट होते हैं मिट्टी के वो भी वो सोख लेते हैं, तो सही समय पर खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। और जड़दार सब्जियों में तो जैसे ही की जाती है उसके बाद में खरपतवार नाशी एक दवा आती है पेंडेमेथिलीन, उसका 1 लीटर दवा को लगभग 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर उसके ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि लेयर बन जाती है तो शुरुआती खरपतवार नहीं आते हैं, और शुरुआती तौर पर

0: खतरों का नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है जब तक हमारी मुख्य फसल की वृद्धि ना हो जाती है। और उसके बाद में अगर 45-50 दिन बाद में खरपतवार आते हैं तो मेड़ों के बीच में निराई गुड़ाई करके खुरपी से इनकी सहायता से हम खरपतवार निकाल सकते हैं। बेहतर है कि उस समय ज्यादा खरपतवार नाशियों का स्प्रे ना करें किसान भाई।
1: डॉक्टर साहब, जड़ वाली जो सब्जियां हैं, ग्रेडिंग, पैकिंग और भंडारण कितना महत्वपूर्ण है?
0: जी देखिए, अगर जड़दार सब्जियां होती है सारी मिट्टी से निकलती है, तो अगर हम ऐसे कैसे अगर किसान भाई कभी क्या करते हैं, गाजर को निकाला और ऐसे मार्केट में पहुंचा देते हैं बोरियों में या कट्टों में या जो भी बैग में भर के, तो जो भी खरीदता है वो देखता है तो उसका जो रूप है वो अच्छे से दिखता नहीं है कि भाई हाँ ये पता नहीं क्या कलर है ये। तो जब भी इन सब्जियों को निकालें, इनकी वॉशिंग सबसे पहले करनी चाहिए। जैसे कि मिट्टी से निकाला, मिट्टी से निकालते इनको अच्छे प्रकार से साफ पानी से इनको धोना चाहिए, फिर इनकी ग्रेडिंग कर लेना चाहिए इनकी आकार के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से। बिल्कुल जो अच्छी और लंबी और बढ़िया जड़ें हैं उनको एक तरफ कर लेना चाहिए और जो छोटी वाली उनको एक करना चाहिए। फिर बाजार में इनको तुरंत भेजना चाहिए क्योंकि इन 2-4 दिन बाद में इनकी भंडारण क्षमता खत्म होने लग जाती है।
1: बिल्कुल,
0: अगर उसको सही टेम्परेचर पे या जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग सब्जियों में तापमान होता है कि किसी को 0 डिग्री पे स्टोर करते हैं, किसी को 5 डिग्री पे, किसी को 10 डिग्री पे, तो जो मुख्यतः जड़दार सब्जियां इनको 0 डिग्री पे अगर हम स्टोर करते हैं तो इनको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे ही इनको वॉशिंग करें उसके बाद में थोड़ा सा सुखा के और फिर इनको गन्नी बैग्स में या पॉलीथिन के जो बैग्स हैं उसमें अच्छे से पैकिंग करके और फिर बाजार में भेजना चाहिए, तो उसको किसानों को अच्छा मूल्य मिलता है और उनकी पैकिंग अच्छी करनी चाहिए, ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए और उनको वॉशिंग प्रॉपर, उसमें किसी प्रकार की मिट्टी या नहीं चिपकनी चाहिए। जैसे धोने के बाद में उसको प्लास्टिक के कंटेनर या करेट जो भी है उनके ऊपर रखना चाहिए उनको और फिर बाजार में पहुंचाना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, जब फसल तैयार हो जाती है और कटाई का समय आ जाता है तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है?
0: देखिए, अगर जब कटाई का जो समय आता है तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने इस फसल की बुआई कब की थी, क्योंकि कुछ किस्में ऐसी होती है जो 90 दिन में पकती है, कुछ 110 दिन में, कुछ 120 दिन में। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये किस्म जब हमने बिजाई की है तब से लेकर ये निकलेगी कैसे, इसकी जड़ें कब अच्छी बन जाएगी, तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमने कब लगाई थी और हमें कब हार्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर जब ज्यादा दिन तक रखते हैं तो क्या होता है, आप देखते हैं मूली के ऊपर वाली जो जड़ होती है जहां से पत्ते लगे होते हैं वहां से हरे रंग की हो जाती है
2: जी।
0: तो वो क्या होता है कि मूली की जो वृद्धि ज्यादा हो जाती है, जैसे मूली 30 दिन की फसल है, अगर हमने 35-40 दिन तक उसकी खुदाई नहीं की है तो वो बाहर निकलने लग जाती है मिट्टी से और वो सूर्य की रोशनी की उसके संपर्क में आती है, गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, ये तो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हरा हो जाता है, तो उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ बनने लग जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, तो उस प्रकार की ओवर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं कि शलगम है वो बड़ा हो जाता है तो वो होलो हो जाता है, हल्का हो जाता है, उसमें फाइबर बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो उसकी मार्केट में डिमांड नहीं होती। जो एडिबल स्टेज है, जो खाने वाली अवस्था है, उसी समय पर उसकी खुदाई करनी चाहिए जड़ों की और उसको बाजार में भेजना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो किसानों को जरूर ध्यान रखना चाहिए।
2: और डॉक्टर साहब, जड़ वाली सब्जियां, इससे जो हमारा किसान है किस तरीके से आमदनी इससे बढ़ा सकता है?
0: जी देखिए, जड़ वाली सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें 4 प्रकार की सब्जियां हैं, चुकंदर है, गाजर है। तो आजकल हम देखते हैं कि आमदनी की अगर बात करते हैं तो जैसे काली गाजर है, कुछ किसान जो कि काली गाजर की खेती कर रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं जिससे कि काली गाजर से एंथोसाइनी निकाला जा रहा है, उसका जो नेचुरल कलर है वो निकाला जा रहा है और वो आइसक्रीम इंडस्ट्री में और भी जो फूड प्रोडक्ट्स है उसमें उसका प्रयोग किया जा रहा है। और लाल गाजर तो आप देखते ही, ऐसा कोई घर नहीं है जहां जब गाजर का मौसम होता है और उसमें गाजर का हलवा ना बनता हो, तो वो उसका एक अच्छा महत्व है। तो किसान भी अच्छी आमदनी लेते हैं गाजर की और मूली की, उनकी फसल लेते हैं क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन की फसलें हैं। मूली तो 25-30 दिन की फसल है, तो आप 3-4 फसल ले सकते हैं मूली की, और गाजर आपकी 90 दिन की फसल, आप 2 फसल गाजर की ले सकते हैं, सितंबर में भी लगा सकते हैं, अक्टूबर में भी लगा सकते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आप लगा सकते हैं, जिसको मार्च तक आप खुदाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने अक्टूबर में सारी गाजर लगा दी 2 एकड़, 5 एकड़, थोड़ी थोड़ी लगानी चाहिए कि आपका नवंबर में भी खुदाई हो, दिसंबर में भी हो, जनवरी में भी हो। तो कुछ ऐसे ओकेजन होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, उनका ध्यान रखते हुए उनकी बिजाई करनी चाहिए कि उस समय उसकी खुदाई हो ताकि किसानों को और आमदनी अच्छी मिल सके।
2: डॉक्टर साहब, व्यावसायिक खेती शुरू करने वाले जो किसान हैं उनको आपकी सलाह क्या रहेगी?
0: जी देखिए, अगर कोई किसान इस पे गाजर की और जो भी जड़दार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहली सलाह तो यह है कि आप अपने मिट्टी की जांच करा लें कि मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है क्या नहीं है, और मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए जिससे जड़ों की अच्छा विकास होता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि गाजर की फसल में आपको कभी भी कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो रूट फोर्किंग हो जाती है, एक ही जड़ से 8-10 जड़ें निकल जाती है छोटी छोटी साइड में। तो जो गोबर की खाद है बहुत अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए मिट्टी में जब भी आप डालें। और एक ये है कि मिट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारी रूट बन जाती है, मूली हो चाहे गाजर हो चाहे शलगम हो, उसमें प्रॉपर रंग का विकास है वो नहीं हो पाता है, वो ध्यान रखना चाहिए। और एक किस्मों का ध्यान रखना चाहिए, कि आपको कौन सी किस्म लेनी है, कब लगानी है, कब उसकी बिजाई करनी है, कब हार्वेस्टिंग करनी है, तो वो एक आपको फिक्स करना चाहिए कि मुझे इस समय लगानी, इस समय मुझे हार्वेस्टिंग करनी है। और अगर बीज उपचारित नहीं है, जैसे आपने किसी संस्थान से लिया, तो उसका बीज का

0: उपचार जरूर करना चाहिए, जैसे बाविस्टीन है, थायरम है, केप्टान है, केप्टाफ है, ये जो दवा है इनका 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। और एक महत्वपूर्ण बात है कि गाजर, मूली, सरगम इनकी जब बिजाई कर देते हैं तो कभी क्या होता है सीड ड्रिल से बीज इतना पास में गिर जाता है तो उसमें सारी जड़ें निकल जाती है, सारे पौधे निकलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक पौधे से दूसरे के पौधे के बीच की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसे नहीं कि 3-3 सेंटीमीटर पे पौधे निकल रहे हैं, नहीं तो क्या होता है जड़ों का विकास नहीं होता, डायमीटर नहीं बनेगा, उसकी लंबाई अच्छी नहीं होगी, उसकी मोटाई अच्छी नहीं होगी। तो कम से कम 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी एक पौधे से दूसरे के बीच, तो उसको बोलते हैं हम थिनिंग करना। जैसे आपने सोइंग कर दी, बाहर निकल रही है, तो बीच बीच में एक एक पौधा निकाल दें, नहीं तो आपकी जो सारी गाजर है वो छोटी छोटी रहेगी साइज की, बाजार में मूल्य नहीं मिलेगा और वो पकेगी भी नहीं।
1: डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और इतनी विस्तार से हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी कि जड़ वाली सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन कैसे करें और कैसे उससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे ये जानकारी, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर गोगराज सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। अब आइए सुनते हैं रागिनी राजेंद्र जाटव की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र जाटव की आवाज में ये रागिनी। अब मंजीत, बात करते हैं मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि मौसम किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर उनको पता हो कि मौसम कैसा रहने वाला है तो उस हिसाब से वो तैयार रहते हैं। तो मौसम जो है, कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और दोपहर बाद कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।
1: मौसम के बाद अब बात कर लेते हैं कृषि सलाह की, कि इस महीने में मौसम में बदलाव और कहीं कहीं बारिश की संभावनाओं को देखते हुए किसान भाई बहनों को अपनी फसलों और पशुधन का विशेष देखभाल की जरूरत है। और किसान भाई आगामी गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उन पर विशेषकर उन्हें ध्यान देना चाहिए कि जो खेत में जल भराव है वो ना हो और अच्छी जल निकासी की व्यवस्था करें।
0: बिल्कुल मंजीत, और जो सब्जी उत्पादक किसान है उनके लिए सलाह ये है कि भारी या लगातार बारिश की स्थिति में खेत में पानी जमा ना होने दें। जल भराव से जड़ों में सड़न, फफूंद जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है और सब्जियों की जो नियमित निगरानी है वो करें और रोग या कीट के लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ धान की फसल के लिए भी अहम जानकारी कि धान में इस समय तना छेदक, पत्ती लपेटक और अन्य कीटों की निगरानी करते रहें और बिना कीट की पहचान के बिना अनावश्यक कीटनाशक का प्रयोग ना करें और खेत में उचित जल प्रबंधन बनाए रखें। और पशुपालक भाई बहनों से भी ये आग्रह है कि जो पशुओं को गीले और कीचड़ वाले स्थान पर अधिक देर तक ना बांधें और साफ पानी उपलब्ध कराएं और पशुशाला में पर्याप्त साफ सफाई का तथा जल निकासी रखें और पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। कृषि सलाह के बाद आइए जानते हैं आजादपुर मंडी से प्राप्त फलों और सब्जियों के भाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आलू की। आलू 15 से 18 रुपए प्रति किलो, प्याज 40 से 45, टमाटर 30 से 35, वहीं खीरा 25 से 30 रुपए प्रति किलो।
0: मंडी सब्जियों के बाद फलों के ऊपर, क्योंकि फल जो है सेहत की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसान भाइयों को इसकी जानकारी भी होनी बड़ी जरूरी है। तो सेब की बात करें तो 100 से 120 रुपए प्रति किलो, केला 25 से 30 रुपए प्रति किलो, अमरूद की बात करें तो 60 से 70 रुपए प्रति किलो और पपीता जो है वो है 30 रुपए से 35 रुपए प्रति किलो के बीच।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फलों और सब्जियों के भाव। और किसान वाणी से जुड़ी कोई भी जानकारी या सुझाव आप हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा। ईमेल करने के लिए आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल एड्रेस, जो कि है feedback@gmail.com।
0: और अब हमें दीजिए इजाजत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब समय है कार्यक्रम गजल का, और आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल।

0: इसी के साथ गजलों पर आधारित कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया, मिलती हूं ठीक 8 बजे कार्यक्रम गीत मालिका में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, GRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मोहित शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान।

0: आज से शुरू। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए यूपीआई लेनदेन बिना किसी राशि सीमा के पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे और नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज की विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के लिए अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
1: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत श्रमिकों के कल्याण और उन्हें सरकारी सेवाओं से सीधे जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग क्षेत्र में नमो श्रमिक सेवा केंद्र और गिग वर्कर्स विश्राम केंद्र का उद्घाटन किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के विकास और निर्माण में श्रम, परिश्रम और लगन से महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्रमिक लोगों के सम्मान, सुविधा तथा कल्याण के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि श्रमिकों के लिए नमो श्रमिक सेवा केंद्र एक सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जहां उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाओं और श्रमिक कल्याण योजनाओं से जुड़ी आवश्यक सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि केंद्र पर श्रमिकों को पंजीकरण और नवीकरण में सहायता, दस्तावेजों के सत्यापन, आवेदन की स्थिति की जानकारी, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और दावों से संबंधित सेवाओं के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान गिग वर्कर्स विश्राम स्थल का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मौजूद दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि राजधानी में और भी श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे, जहां श्रमिक निःशुल्क पंजीकरण कराकर सरकार की विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
4: श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब एक श्रमिक रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद सरकार की सारी योजनाओं को उनका लाभ उठा सकते हैं। तो दिल्ली में हम लगभग 34 जगहों पर नमो श्रमिक सेवा केंद्र खोल रहे हैं, जहां पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
3: श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार ऐसे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने जा रही है, जहां श्रमिकों को तकनीकी कौशल के साथ साथ विदेशी कौशल भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्षों की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृहनगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अलीपुर स्थित श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम में आयोजित 108 कुंडली यज्ञ में हिस्सा लिया। ये यज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर दिल्ली में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन की यात्रा ने जनसेवा और राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रेरणा दी है।
5: 108 कुंडिया हवन अभी हमने संपूर्ण किया है। बाबा श्याम खाटू वालों के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और देश सेवा में वो इसी तरीके से लगातार काम करते रहे, इसकी कामना की है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज दिल्ली सचिवालय में दो विशेष गीतों का शुभारंभ किया। ये गीत दिल्ली के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज अंगदान संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य अंगदान को बढ़ावा देना, प्रत्यारोपण सेवाओं को मजबूत करना और नागरिकों को अंगदान का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। श्रीमती गुप्ता ने स्वयं अंगदान की घोषणा की और इसके लिए संकल्प पत्र भी भरा। इस अवसर पर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। इसके द्वारा दिल्ली के नागरिक अंगदान संकल्प अभियान से ऑनलाइन जुड़कर अंगदान का संकल्प ले सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में शामिल हुई। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र से प्रेरित यह कार्यक्रम जनभागीदारी और सेवा भाव का सशक्त संदेश देता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सेवा संकल्प अभियान और एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत नई दिल्ली की लोदी कॉलोनी में पौधारोपण कर भारत वन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि पेड़ पौधों और पक्षियों के लिए बेहतर वातावरण बनेगा और क्षेत्र की जैव विविधता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
6: एक पेड़ मां के नाम के निमित्त आज इस लोधी कॉलोनी में एक फॉरेस्ट की शुरुआत, एक बड़े पार्क की, एक एकड़ के पार्क की, जिसको मियावाकी फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट से भारत की माननीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारामन जी ने एक पेड़ लगा के करी, एक दिया जलाया जो आशीर्वाद के दिए के रूप में है। और यहां एनडीएमसी के स्कूल के बच्चे जिन्होंने पेड़ लगाए, पौधे लगाए, 10,000 से अधिक, एक पेड़ मां के नाम, माने प्रधानमंत्री जी का संकल्प जो एनडीएमसी में आंदोलन बन रहा है, उसकी एक शुरुआत है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
8: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने के अवसर दिए जाते हैं ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण मात्र 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी घोषणा की।
9: भगवान विश्वकर्मा जयंती, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन और सेवा दिवस के पावन अवसर पर लाडू लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। आज से इस योजना के नए लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू हो गया है। अब प्रदेश के 1,80,000 रूपए तक के वार्षिक आय वाले परिवारों की सभी पात्र बहन बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
0: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अम्बाला के पुलिस लाइन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से राज्यव्यापी 100 दिवसीय एनीमिया मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक नेत्र जांच और एनीमिया परीक्षण शिविर का भी उद्घाटन किया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने विभिन्न विभागों में लंबित करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के मामलों को गंभीरता से लेते हुए निगमायुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री वाही ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में होने वाली अनावश्यक देरी से दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। महापौर ने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों से लंबित सभी अनुकंपा नियुक्ति मामलों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
10: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीवी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए यूपीआई लेनदेन बिना किसी राशि सीमा के पूरी तरह निशुल्क रहेंगे। सरकार में सूत्रों ने बताया है कि यूपीआई ग्राहकों के लिए निशुल्क बना रहेगा। मित्रों को पैसे भेजने पर, दुकानों पर भुगतान करने पर या क्यूआर कोड स्कैन कर लेनदेन पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। एक रिपोर्ट।
11: सरकार के सूत्रों ने बताया कि यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रतिमाह 1,00,000 रुपए तक की कमाई करने वाले विक्रेताओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सूत्रों ने बताया कि रुपए डेबिट कार्ड से जुड़े यूपीआई लेन देन भी निशुल्क रहेंगे। सूत्रों के अनुसार लगभग 96% लोगों द्वारा व्यापारियों को किए गए यूपीआई लेन देन अप्रभावित रहेंगे। हालांकि रेलवे और ईंधन के लिए 2,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर प्रति लेन देन 5 रुपए का मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू होगा। 2,000 से अधिक के केवल बड़े व्यापारी लेन देन पर 0.4% का MDR लागू होगा, जिसका भुगतान व्यापारियों को करना होगा। नई यूपीआई कार्यनीति यूपीआई के दीर्घकालिक उपयोग को बढ़ावा देने के साथ लोगों के लिए भुगतान को निशुल्क बनाए रखने और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। समाचार कक्ष से सम्राट की रिपोर्ट के साथ मैं अतहर सईद।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला इस समय दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने छठे ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 86 रन बना लिए हैं। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में सुनिए लीजिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए यूपीआई लेन देन बिना किसी राशि सीमा के पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे। और नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया। गीत मालिका फिल्म संगीत की सुरीली महफिल।

संगीत वो एहसास है दोस्तों जो बिना कुछ कहे दिल की बात कह जाता है। तो कार्यक्रम में पेश है इस खूबसूरत गीत से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आइए सुनते हैं और देरी नहीं करते हैं, तो सुनते हैं ये वाला गीत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लता मंगेशकर की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, प्यार वो नहीं है जो हर पल साथ होने का वादा करे, प्यार तो वो है जो दूर रहकर भी दिल के सबसे करीब रहे। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से जुड़े होते हैं दोस्तों। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

जी हाँ दोस्तों, प्यार का रंग ना बहुत ही खूबसूरत होता है। जो दिल पर चढ़ जाए ना तो उम्र भर नहीं उतरता। ना कोई शिकायत ना कोई शर्त, बस इसमें एक दूसरे का बिल्कुल विश्वास से एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। आइए सुनते हैं गीत मालिका का अगला गीत।

दोस्तों कुछ लोग ना मिलकर जिंदगी बदल देते हैं और कुछ की यादें ना पूरी जिंदगी साथ चलती है। शायद इसी एहसास को मोहब्बत कहते हैं। अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म साजन से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। लेकिन ये बता दे कि आप अभी कार्यक्रम कहाँ से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 419 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, जब कोई प्यारा सा शख्स आपकी जिंदगी में आता है ना, तो दिल कहता है तेरे आने से मेरी दुनिया में एक बात नहीं हुई है, जो दिल में थी ख्वाहिश वो मुलाकात नहीं हुई। अब हर खुशी में तेरा एक चेहरा नजर आता है, तू मिला लगा जिंदगी को जीने की वजह मिल गई है। उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

नजरें मिली तो दिल में कुछ कहना शुरू किया, खामोशियों ने जैसे रिश्ता बुनना शुरू किया, मोहब्बत में जल्दबाजी भला कैसी, हर एहसास तो धीरे धीरे दिल में उतरना ही सिखाता है ना दोस्तों। अलका याग्निक और कुमार

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म कुली नंबर वन से। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम का और जो कि आखिरी गीत है।

0: कुमार सानू की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म क्रिमिनल से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। मैं हूं आपके दोस्त प्रिया, अब से विदा लेती हूं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को है। अब सुनेंगे आप हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में एक महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ।

0: और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकेंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: अप्रोच इन सेमीकॉन 2.0,
3: सेमीकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। यह बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। उसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी

0: राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूं। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
1: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
3: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
2: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदहनम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जय रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हो। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
4: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1,00,000 crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final.

शुरुआत इसी सोच के साथ हुई है। सरकार बनाने के कुछ ही दिनों के भीतर इस योजना पर काम शुरू हुआ और आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं तक सीधे बैंक में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। कोई कटमनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। हमारी सरकार का ये भी लक्ष्य है कि एक भी पात्र महिला अन्नपूर्णा योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए भी यहां तेजी से काम हो रहा है।

नमस्कार, 20 मिनट पर स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत एक खसूसी प्रोग्राम आप सुनेंगे और 9:25 पर प्रोग्राम पेश किया जाएगा एक फनकार। 9:45 पर मामूल खबरें नश होंगी। 9:55 पर मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। 10:30 मार्केट मंत्र प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे और 10:30 पेश किया जाएगा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामीले इरशाद। आज के तामीले इरशाद प्रोग्राम जारी रहेगा 11:45 तक। दौरान प्रोग्राम 11:00 आप सुनेंगे खबरें बरसगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन। जबकि 11:45 पर क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम बज्म मौसीकी में आप सुनेंगे पंडित मनीराम का गाया राग भोपाली में ख्याल। जबकि 12:00 आलमी खबरें नशे की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी में आप सुनेंगे श्री कृष्ण शर्मा का गिटार पर बजाया राग श्याम कल्याण। शब के 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शब 1:00 उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ इससे मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: डीएमएफ से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत सुनिए ये खुसूसी प्रोग्राम।
1: मुल्क भर में आज से स्वच्छता ही सेवा मुहिम 2026 का आगाज हो गया है। ये मुहिम 2017 से हर साल मुनक्किद की जा रही है। इस साल इस मुहिम का मकसद शहरियों, इदारों और क़यादत को एक साथ लाकर आवामी शिरकत और इज्तमाई कोशिशों के जरिए सफाई को फरोग देना है। इस साल की मुहिम का मरकजी ख्याल है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत, यानी सफाई में शराकत, साफ भारत तरक्की याफ्ता भारत। ये थीम इस बात को उजागर करता है कि सफाई हर किसी की जिम्मेदारी है। एक साफ और तरक्की याफ्ता भारत का हुसूल तभी मुमकिन है जब तमाम शहरी अपने आसपास के माहौल को साफ रखने में फुआल किरदार अदा करें। इस साल ये मुहिम 5 अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगी। इनमें शामिल है सफाई के लिए मखसूस यूनिट्स और अवामी मुकामात की काया पलट, स्वच्छ पाठशाला, युवा फॉर स्वच्छता यानी साफ स्कूल सफाई के लिए नौजवान, सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर यानी सफाई कारकुनों की हिफाजत और एहतराम के कैंप, जन भागीदारी फॉर स्वच्छता यानी सफाई के लिए अवामी शराकत और स्वच्छता से समृद्धि यानी सफाई से खुशहाली। ये मुहिम देही और शहरी दोनों इलाकों के लोगों की हौसला अफजाई करेगी कि वो सफाई की जिम्मेदारी उठाएं। इसमें हुकूमत और मुआशरे के तमाम तबकात को शामिल करने का तरीकाकार अपनाया जाएगा जिसमें अवामी शिरकत और बाकायदा सफाई पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। सॉलिड वेस्ट यानी लोगों को ठोस फुजले के इंतजाम के कवायद और फुजले के इंतजाम में मुख्तलिफ मुतालिका फरीकीन के किरदार से भी आगाह किया जाएगा। फुजले को उसके माखिज पर ही 4 जुमरों में अलग करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मरकजी वजीर बराए जल शक्ति चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने गुज़श्ता रोज नई दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान मीडिया के साथ इस साल की मुहिम की तफसीलात शेयर की। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सफाई एक ऐसी कौमी तहरीक बन गई है जिसकी बुनियाद अवामी शिरकत पर है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस मुहिम के तहत सियाहती मुकामात की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, बशमूल वो इलाके जहां सयाहों की बड़ी तादाद आती है और खासकर मकबूल साहिल। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर 1 अक्टूबर 2026 को मुल्कगीर सतह पर श्रमदान यानी रजा कराना सफाई की सरगर्मी का एहतमाम किया जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम एक दिन एक घंटा एक साथ रखा गया है। इस इकदाम के तहत मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद इकट्ठे होंगे और सफाई के लिए एक घंटा वक्फ करेंगे। 2 अक्टूबर को जिसे स्वच्छ भारत दिवस के तौर पर मनाया जाता है, देही इलाकों में खुसूसी ग्राम सभाएं मुनक्किद की जाएंगी। ये ग्राम सभाएं मुहिम के दौरान किए गए काम का जायजा लेंगी और इसके नतीज पर तबादलाए ख्याल करेंगी। स्वच्छता ही सेवा मुहिम का मकसद सिर्फ अवामी मुकामात की सफाई करना ही नहीं है बल्कि इसका मकसद लोगों की हौसला अफजाई करना भी है कि वो सफाई को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और ये समझें कि हिंदुस्तान को साफ सुथरा रखना एक मुश्तरका जिम्मेदारी है।
0: स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत अभी आप एक खुसूसी प्रोग्राम सुन रहे थे। इस सिलसिले में ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है। पेश खिदमत है प्रोग्राम एक फनकार। इस प्रोग्राम में आज की फनकारा हैं आशा भोसले।
2: आशा जी
0: की आवाज के मुतालिक क्या कहा जाए, बहुत ही खूबसूरत दिलकश आवाज न सिर्फ फिल्मी नगमों में बल्कि क्लासिक की मौसीकी

चाहे फिर गजलें हों, गीत हों, इनमें बड़ी खूबसूरत आवाज आशा भोसले ने दी। और यही जो गुनागुन सलाहियत है उनकी, वो औरों से उनको मुख्तलिफ बनाती है।

0: हिंदुस्तान की दो मुमताज आवाजें लता मंगेशकर और आशा भोसले।
1: एक फनकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे हैं आशा भोसले की गई गीत और गजलों से।
0: एटीज में आशा जी ने दिल पड़ोसी है के नाम से एक एल्बम आर डी बर्मन की म्यूजिक डायरेक्शन तैयार की थी। गजल पेश है।

0: एक फनकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे थे आशा भोसले के गाए चंद गैर फिल्मी गजलों और गीतों से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: अब आप असगर अली से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को आला एकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिले एतमाद सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हुए हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि वह तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए तमाम जरूरी इकदामात करेगा, जबकि अमरीका ने रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने का बिल मंजूर किया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम मोदी की 76वीं सालगिरह और अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है और मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सप्लाई चेन को आला एकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिले एतमाद सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल

0: डॉक्टर की सलाह के बगैर किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही नेचुरल हो या फिर वो सेफ हो, क्योंकि किसी को भी किसी भी चीज से कोई भी परेशानी या दुश्वारी हो सकती है। तो जनाब, मशवरे सेहत के सिलसिले में आज बस इतना ही। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। और जब सुनिए मार्केट मंत्र का रिपीट ब्रॉडकास्ट।
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amit Goel.
1: Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला. प्रकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा.
0: थैंक यू अमित. यस, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स ऑन फ्लैट नोट. निफ्टी सेटल्स अबव 23,250. U.S. lawmakers pass package of sanctions targeting Russia and Iran's key economic pillars. New Delhi says India remains firmly committed to ensuring energy security and will continue to do so through diversified sourcing. And country's semiconductor ecosystem is expanding rapidly, opening new opportunities for innovation, investment and growth, says Prime Minister Narendra Modi.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा. निफ्टी 23,250 के स्तर से ऊपर दर्ज. अमरीकी कानून निर्माताओं ने रूस और ईरान के मुख्य आर्थिक आधार पर प्रहार करने के लिए प्रस्ताव पास किया. भारत ने कहा कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न स्रोतों से आपूर्ति करना जारी रखेगा. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का सेमीकंडक्टर वातावरण तेजी से मजबूती की ओर नवाचार, निवेश और विकास की नई संभावनाएं पैदा कर रहा है.

0: Well, before we move any further, here's a disclaimer for our listener friends. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Right.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार में आज आमतौर पर खास बदलाव नहीं नजर आया। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मामूली बढ़त से बंद हुआ। सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर दर्ज हुआ, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। एनआईसी मिडकैप सूचकांक में 0.9% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि कारोबार की शुरुआत में अमरीकी फेडरल रिजर्व के रुख और वैश्विक परिस्थितियों पर चिंता के कारण बाजार दबाव में नजर आए, बाद में दोनों सूचकांक संभल गए और बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए।
0: इन द इंडियन स्टॉक मार्केट टुडे सेंसेक्स एंडेड लार्जली अनचेंज्ड व्हाइल निफ्टी क्लोज्ड ऑन अ पॉजिटिव नोट। सेंसेक्स डिप्ड 22 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,315। Nifty added 53 points to settle at 23,271. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.9%, while the small-cap 100 index added 0.8%. Earlier, the markets opened mildly lower after a hawkish stance from the U.S. Fed Reserve and concerns over geopolitical developments. However, both the indices soon recovered and traded with gains for most of the volatile session.

0: रिपोर्टेड बाय वैल्यू बाइंग।
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 21 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज हुई। मजबूती वाले प्रमुख शेयरों में टाटा स्टील 2.8%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2.4% और इंडिगो 2.3% की बढ़त से बंद हुए। हालांकि एचडीएफसी बैंक 1.3%, टाइटन 1.1% और आईसीआईसीआई बैंक 1% की गिरावट से बंद हुए।
0: Let's take a look at the sectors now. Well, in the sectoral indices on the BSE, 18 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, insurance advanced 3.2%, capital goods jumped nearly 2%, and industrials gained 1.5%. In contrast, top 10 banks declined 0.7%, private banks index shed 0.6%, and BankEx dropped 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,686 companies advanced and 1,642 declined and 207 remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। प्रकाश, किस तरह से आंकते हैं बाजार में? एक तरफ तो ये भी नजर आता है कि अगर तकरीबन 2,700 कंपनियां आज अगर बीसी की हम बात करते हैं तो वो मजबूती की तरफ थी, जबकि तकरीबन 1,650 कंपनियों में आज दबाव नजर आया, गिरावट नजर आई, लेकिन फिर भी सेंसेक्स अपने स्तर के आसपास ही दर्ज हुआ। वैश्विक परिस्थितियों का कारण था, अमरीकी फेडरल रिजर्व ने जो अनाउंसमेंट की है उसका असर था, या अभी भी जो अमरीका ने नए जो टैरिफ लगाने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं ये उसका असर है?
2: नहीं, खास तौर पे आम तौर पे जो ज्यादा संभावना है कि क्या रहे होंगे, किस तरह के कारण रहे होंगे कि आज के मार्केट की जो परिस्थिति है उसमें वैश्विक जो परिस्थितियां हैं वही हावी रही इस पे, क्योंकि फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसने जो इंटरेस्ट रेट, जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है 25 बेसिस प्वाइंट से, वो अपने आप में एक एक्सपेक्टेड था, वो एक तरह का डिस्काउंटेड था। 90% लोग वैसे ही उम्मीद कर रहे थे कि उसके बाद मीटिंग से बढ़ेंगी और तो डिस्काउंटेड था, इसलिए कोई मार्केट में बहुत बड़ा ना उछाल को अदला बदली नहीं हुई, एक तरह का एक्सपेक्टेड ही था। दूसरा, जो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम थी वो तो पिछले कई दिनों में हालात तो खराब ही हुए थे, तो उस चलते क्योंकि मार्केट में काफी उथल पुथल हो चुकी थी, थोड़ी बहुत ये जो फेडरल रिजर्व का डिसीजन था एक तरह का क्या होता, तो मार्केट को ना अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता पसंद नहीं है, तो अंग्रेजी बोलते हैं इट्स आउट ऑफ द वे नाउ, कि कम से कम मालूम पड़ गया 25 बेसिस प्वाइंट है। हालांकि जैसे लालिमा जी ने वो कहा कि फेडरल रिजर्व का टोन अभी भी हॉकिश है, हॉकिश के मायने ये है कि अभी भी हम इन्फ्लेशन में, अभी भी जो महंगाई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, और महंगाई अमेरिका क्या पूरे संसार में दिक्कत हो रही है, तभी इंटरेस्ट रेट जिसको हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं उसके माने यही है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट। पिछली कार्यक्रम में मैंने कहा था कि वो जो पार्टी टाइम था ना, लोअर इंटरेस्ट रेट वाला, इजी मनी वाला, द पार्टी टाइम इज ओवर, तो उसके चलते ये सब वैश्विक परिस्थितियां जा रहे हैं जो आज के मार्केट को एक तरह का ब्रीफली बताएं तो ये है।
0: Why do we see a bit of a dichotomy? Sensex is largely unchanged, but Nifty ends on a positive note.
2: It's a funny thing. I think it should not have happened because what has happened is a new system, what is called CAS, has been introduced for over a month now in the Indian market. It is still in the trial stage, and it throws this kind of surprises now and then. And then finally, when the fine tuning is done, you find a different thing. But it is quite confusing and the traders are concerned about it. They have conveyed their concerns to the market regulator SEBI, and let's hope this is sorted out.
0: For people who want to invest in the stock markets, is this the right time? Because for a change we see, as they say, no news is good news, or should we wait and watch? Because as you said, markets don't like uncertainty. Now it's the certainty is that there is, you know, uncertainty in a way.
2: I'll tell you what, when it comes to Indian investors, there is one channel which always remains open now, what is called systematic investment plan, what is SIP to sort of speak,
0: right,
2: which is done through mutual fund. Something like 30,000 crores of rupees is mopped up.

0: every month through SIP. And a lot of these professionals, young professionals, are committed to that. It is only because of that commitment that mutual funds or DIIs are able to mobilize that kind of amount. And this is the amount which is providing stability to our market.
1: प्रकाश, क्या इसके क्या ये मायने माना जाए कि भारतीय जनमानस या भारत का जो घरेलू निवेशक है उसको अपने बाजार की क्षमताओं पर, उसको अपने बाजार की स्थिरता पर पूरा भरोसा है? बाजार अगर गिरता है या उठता है, लेकिन वो जो निवेशक है, जो सतत निवेश कर रहा है, निरंतर निवेश कर रहा है, वो छोटी छोटी मात्रा में ही सही, वो निरंतर निवेश कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसका निवेश सुरक्षित है और उसको उस निवेश पर एक निश्चित आय जरूर होगी।
0: देखिए क्या हुआ है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो हमारे मुल्क में है वो बड़ी मेच्योर हो गई। अब हमारे यहाँ इतनी हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड की, और इनकी एक संस्था है एमफी बोलते हैं जिसको, उन्होंने एक नरेटिव चलाया हुआ है एड कैंपेन बड़े सालों से जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन है उसमें जैसी जैसी परिस्थितियां बनती हैं उस हिसाब से वो लोग अपना टोन एंड टेनर चेंज करते हैं। तो वो दे हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू सेंड दिस मैसेज कि भाई मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म टिकना पड़ेगा।
1: मतलब पेशेवर लोग हैं जो प्रोफेशनल,
0: जो आपको प्रोफेशनल है, जो 30,000 करोड़ रुपए आता है वही इन्वेस्ट करते हैं आपके बिहाफ पे
1: जी।
0: तो यहाँ का जो रिटेल इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता है तो उसको भी ये चीज उसने विश्वास कर लिया है कि
1: और म्यूचुअल फंड कंपनियां इस विश्वास पे खरा भी उतर रही हैं।
0: नहीं, वो कहना अभी जल्दबाजी।
1: चलिए, अगर हम
0: वो अभी कहना जल्दबाजी,
1: अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट की बात करें उसमें तकरीबन आज लगभग 1% की मजबूती भी नजर आई है। क्या ये माना जाए, जो सेंसेक्स है तो चूंकि छोटा है, और अगर निफ्टी 50 की बात करें वहां पे भी उतनी ज्यादा कंपनियों का समावेश नहीं है, तो ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप है जो चूंकि बड़ा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है वहां पे लोगों की उम्मीदें हैं और वहां पे बेहतर प्रदर्शन की भी उम्मीद है, इसलिए उसमें तेजी हुई?
0: देखिये, मिड कैप और स्मॉल कैप और वर्सेस लार्ज कैप जिसको बोलते हैं, जो बड़ी जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है, जो टॉप कंपनीज हैं, 100 टॉप कंपनी लार्ज कैप्स में आती है, पिछले दिनों में कुछ महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप ने बड़ी अच्छी रिटर्न दी है, और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो इनपे स्पेशलाइज करते हैं उन्होंने भी अच्छी रिटर्न दी है। कारण यह है कि एक तो जो ग्रोथ होता है, जो ऑलरेडी कंपनी बड़ी लार्ज हो चुकी है उसकी ग्रोथ रेट उतनी अच्छी कई बार नहीं हो पाती क्योंकि बेस बहुत ज्यादा हाई हो चुका होता है। दूसरी बात यह है कि स्मॉल कैप जो कंपनीज है अभी ग्रोथ उसमें एपिटाइट है, भूख है उसमें, आगे बढ़ने की भूख है, और वो फिर एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है उसमें, तो जैसी सिचुएशन आती है एक लेगेसी बेस इश्यूज नहीं रहते उसमें, एंड दैट्स द रीजन। और एक और रीजन है कि जो एफआईआईज हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो मोस्टली देवर इन्वेस्टेड इन द लार्ज कैप्स, सो व्हेन देवर एग्जिटिंग फ्रॉम द इंडियन मार्केट and the money was flowing out of the large caps, small and caps were not that much affected so by the FIIs outflows. ये सारे कारण थे जिसकी वजह से मिड और स्मॉल कैप्स में आपको बेटर परफॉर्मेंस दिखी।
1: तो ये मानने के लिए हमारे पास पर्याप्त कारण है कि भारत की जो मध्यम दर्जे की कंपनियां हैं उसका प्रदर्शन निरंतर मजबूत और सतत बना हुआ है, एक स्टीडी बना हुआ है।
0: हाँ, अच्छी बात है, लेकिन उनमें अब हो क्या रहा है अमित जी कि इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर कई बारी ऐसे रूल्स रेगुलेशन भी हैं, जो मान लीजिए जो म्यूचुअल फंड के जो स्मॉल कैप्स के जो फंड्स हैं तो उनको बाय फोर्स दे हैव टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स, तो स्मॉल कैप से लोग बेट कुछ ज्यादा ही लेने लग पड़े, तो स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा है तो फिर रिस्क भी ज्यादा थोड़े हो जाते हैं कई बार, तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है।
2: और शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है स्मॉल कैप?
0: नहीं नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात नहीं है, शॉर्ट टर्म में लिए कुछ भी ठीक नहीं है आज की डेट में। यू नीड टू बी पेशेंट एज आई सेड अर्लियर इन मार्केट, इन द मार्केट गेम टुडे यू नीड टू बी पेशेंट। अगर आपको अब जैसे अमित जी ने बोला कि म्यूचुअल फंड का पिछले 2 साल में समस्या रही है, तो आपको 3 साल की बैलेंस शीट दिखेगी तो अच्छी दिखेगी, लेकिन 2 साल में समस्या है, तो म्यूचुअल फंड के लिए चैलेंज है कि मेरे पे ये विश्वास करे जा रहे हैं, तो मुझे मेरे लिए चैलेंज है कि मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, तो म्यूचुअल फंड के लिए एक चैलेंज है अपने आप में, यही टेस्टिंग टाइम है सबका,
1: उनको बेहतर प्रदर्शन भी करना है साथ ही साथ निवेशकों के भरोसे को भी पूरा करना है।

0: countries that import less than 15% of Russia's natural gas exports and have taken significant steps to reduce those imports.
1: भारत अपनी 140 करोड़ आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है. विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते बाजार के साथ चलना जरूरी है. अमरीकी कांग्रेस में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम के पारित होने का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले पर आगे के घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है. मंत्रालय के अनुसार हाल के महीनों में विभिन्न अमरीकी वार्ताकारों के साथ साथ इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय चर्चा हुई है. विपक्षी संबंधों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित प्रभावों को भारतीय पक्ष ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है. मंत्रालय ने आगे कहा कि भारतीय पक्ष ने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अपना दृढ़ संकल्प भी स्पष्ट कर दिया है. बहुत संक्षेप में इन सब चीजों पे भारत की स्थिति सरकार नजर बनाए हुए है और अपनी स्थिति को भी मजबूत करने पे लगी हुई है.
2: या आप जब ये नहीं तो भारत सरकार ने तो बोल दिया ना कि हम तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम कमिटेड हैं और अपनी चॉइस जो है हम अपनी खुद चूज करेंगे.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है. नई दिल्ली की यशोभूमि में आज सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा उत्पादन स्थल बनने के लिए सभी कदम उठा रहा है. उन्होंने बताया कि भारत का सेमीकंडक्टर सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के लिए नई संभावनाएं पैदा कर रहा है.
3: इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था. जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की. अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे. पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीज पर चर्चा शुरू की. कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की. और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू हुई.
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था लेकिन यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है. उन्होंने कहा कि अब नींव रखी जा चुकी है और हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर 2.0 के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है.
4: सो द अप्रोच इन सेमिकॉन 2.0 विल बी टू प्रमोट द डिजाइन कंपनीज इन अ वेरी बिग वे, बोथ द स्टार्टअप्स एज वेल एज द लार्ज कंपनीज. लार्ज कंपनीज वुड लाइक टू गेट इन टू सेमीकंडक्टर डिजाइन बिकॉज द स्कोप इज ह्यूज नाउ. द अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज. स्टार्टअप्स कैन ब्रिंग इन इनोवेटिव सोल्यूशंस विच विल बी लाइक बाय द मार्केट.
1: प्रकाश जी, बहुत संक्षेप में जो प्रधानमंत्री की मंशा है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की जो हमारी इच्छाएं हैं कि सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत को अग्रणी बनाया जाए, कितना सहमत और कितना जरूरी है?
2: बहुत जरूरी है क्योंकि जो एआई की सर रेवोल्यूशन है वो सेमीकंडक्टर्स और चिप्स पे तो डिपेंड कर रही है जी. तो पूरी वैल्यू चेन का बहुत क्रिटिकल पार्ट है और अगर हमने एआई वैल्यू चेन का हिस्सा बनना है तो अगर हम सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी.
1: और हाल ही के दिनों में इनकी बहुत तेजी से डिमांड भी बढ़ी है और इसके दामों में भी बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है.
0: राइट, लुक एट द ऑयल प्राइसेस नाउ. वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट देम. नाउ लेट्स गेट डाउन टू इट. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन टुडे. ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.4% डाउन एट $102.17 पर बैरल इन द इंट्राडे ट्रेड एट अ टाइम ऑफ राइटिंग दिस रिपोर्ट. मीनवाइल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वाज ट्रेडिंग 2.7% लोअर एट $99.69 पर बैरल.
1: नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पर. घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 0.3% की गिरावट से 1,51,849 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 0.7% के नुकसान से 2,29,642 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. प्रकाश जी, बहुत संक्षेप में अगर मैं चाहूं, डॉलर की स्थिति को देखते हुए और सोने की स्थिति को देखते हुए क्या नजर आता है कि अभी डॉलर और सोने का जो समन्वय है वो कितना और किस दिशा में चलता हुआ नजर आएगा?
2: ये इनकी कश्मकश जारी रहती है. डॉलर भी एक अपने आप में एसेट्स है, सोना भी एसेट्स है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन अभी सोना जो है एक स्थिरता की तरफ मुझे नजर आ रहा है.
1: चलिए, प्रकाश कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
1: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार
0: जी, इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स ऑन अ फ्लैट नोट. निफ्टी सेटल्स अबव 23,250. यूएस लॉ मेकर्स पास पैकेज ऑफ सैंक्शन.

0: targeting Russia and Iran's key economic pillars. New Delhi says India remains firmly committed to ensuring energy security and will continue to do so through diversified sourcing. And country's semiconductor ecosystem is expanding rapidly, opening new opportunities for innovation, investment and growth, says Prime Minister Narendra Modi. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Amit Goyal signing off. Namaskar.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह

0: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
1: अभी आप सुन रहे थे मार्केट मंत्रा प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

बेगम वेज एक हजार 71 किलो खर्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। और अब वक्त हुआ है आपके पसंदीदा प्रोग्राम तामिल इरशाद का। आज का फरमाइशी फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान आपका दोस्त नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश आप तमाम सामेन की नजर रफी साहब का गाना और जहां तक नगमा निगार की बात है तो हसरत जयपुरी साहब के कलम से निकला एक खूबसूरत नगमा।

आई मिलन की बेला फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में नगमा निगार थे हसर जयपुरी, मौसीकी शंकर जयकिशन की थी। सुनने के ख्वाहिशमंद थे एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना और लव्य खुराना। ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ एसएम जावेद शगुफ्ता अंजुम टावर चौक गुमला झारखंड से, और आपने अगले दीवान एमपी से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी और काजल मीनाक्षी, और इसी नगमे को सुनना चाहते थे गांधी ग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी, और ही फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नयाब का रघुवीर नगर से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई, और आप हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन और उनके अहल खाना घंटाघर चौक खंडवा से, और इसी नगमे को सुनना चाहते थे अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी। ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ ही परसोगा लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो और कृष्णा शेख का, और आप हैं कदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और अंजुमन खान और उनके कुछ और साथी। पटेल नगर मलोट से फरमाइश की डॉ रमेश कुमार जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया ने। सुनील पाठक साथ में उनके कमल पाठक, गव्य मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराऊं से, और कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज की फरमाइश भी थी इसी नगमे के लिए, और इसी नगमे को सुनना चाहते थे भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा का, और आप हैं पिंजौर से चंद्रमोहन, उनके साथ में इंद्र मोहन, और करनाल से बलविंदर सिंह सोढ़ी साहब की फरमाइश भी थी प्रोग्राम के पहले नगमे के लिए। आइए एक और पायदान पर कदम रखते हैं तामिल इरशाद प्रोग्राम के, और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में जब प्यार किसी से होता है फिल्म का दुगाना, और इस खूबसूरत दुगाने को कलमबंद किया हसर जयपुरी ने, मौसीकी शंकर जय किशन की है। तो क्या ख्याल है दोस्तों, पहले नगमा सुनवाया जाए या फिर आपके नाम शामिल किए जाए? मेरा ख्याल ये कि पहले नाम शामिल कर लेते हैं, बड़ा इंतजार रहता है, बेकरारी बेचैनी सी रहती है, और कभी कभी तो सुबह उठ के लोग ये शेर अक्सर गुनगुनाते हैं कि हिसाब दां हो तो चादर के सिलवटे गिन लो, फिर उसके बाद बताओ कि कर्ब कितना था। कर्ब कहते हैं तकलीफ को। सलीम अख्तर रेशमा बेगम के साथ में हैं अलीगढ़ यूपी से, सुनने के मुंतजिर अगले नगमे को, और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चांद फारूक का, निजामाबाद तेलंगाना के नेहरू पार्क से अपने फरमाइश मिसाल की है, और मलियान सरधना मेरठ से सुनना चाहते हैं इस नगमे को, अनिल जैन, संयम जैन, साथ में मास्टर जी वी एम जैन हमेशा की तरह, और ये फरमाइश आई है बागबान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागबान, इकबाल अहमद और अखलाक अहमद बागबान की जानिब से, और अगला नगमा आपके नजर करते हैं आप है राष्ट्रपाल गजबीर, राधिका गजबीर, तन्मय अनिष्का, तन्मय पूरा नाम है, छत्तीसगढ़ के डोंगर गांव से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई है, और दूल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, किशनगंज बिहार से सुनना चाहते हैं इस नगमे को, रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और अनुराग मोहन, और ये फरमाइशी ईमेल बहुत जल्दी रिपीट हुआ, इसको करते हैं साइड लाइन। फूल चिंजोली पंधरपुर से जाकिर मौलानी, सुमैया मौलानी, सुभान की फरमाइश भी है, और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और उमंग मलिक और उनके बहुत सारे साथी। रेलवे रोड गंज डंडवा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबे फातिमा अकाजी, दादा बाबू रोड गेटी झारखंड से साइमन नवाज, हसन नवाज और यासीन अंजान साहब भी हैं इसमें शामिल, और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं गंज टंडवाज से शमसुल कुमार राही, शाहीन फातिमा और अदनान खान, और ये फरमाइश मौसूल हुई है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दुल्ला अंसारी की, और अगला नगमा आपकी नजर करते हैं आप हैं बिशनपुर गेटी झारखंड से हिना साबरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम, अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कोल सिटी बरकाकाना से सुनना चाहते हैं अगले नगमे को, दिलीप रामेकर, हर्ष रामेकर और अक्षय रामेकर राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से, अगला ईमेल रिपीट हो गया बहुत जल्दी, इसको भी करते हैं साइड लाइन, और अगला ईमेल किसका है विदय, बड़ा तफसीली ईमेल है, और एक और ईमेल शामिल करते हैं
मॉडल टाउन करनाल से किरण ठाकुर, सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी और अहल्या खाना। और ये फरमाइश ईमेल सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से मिला है शुभम किशोर वडतकर की जानिब से। और आप हैं बसंत रेखा, बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बेबी अन्विका, तनुश्री गुप्ता। आपने जी हां, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से ये फरमाइश हमें इरसाल की है। और एक और ईमेल शामिल करते हैं, उसके बाद नगमे की बारी है। आप हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।

प्यार तो वाकई ऐसे होना चाहिए जो हमेशा रहे और कभी खत्म ना हो। आपका हमारा प्यार मोहब्बत भी ऐसा ही है। उत्तम नगर दिल्ली से सुनना चाहते हैं अगला नाम है भानु प्रकाश, कमला रानी, बोधराज खोरवाल। और तमेशा प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नजर करते हैं माधव खाट अमलेश्वर के हमारे सामने डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति ठाकुर और उनके कुछ और साथी। शुगर फैक्ट्री ये भाई महाराष्ट्र से फरमाइश के दिनकर सालवे और गंगा सालवे ने, आप हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, साथ में सुमित कुमार दामोदर बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से। और किशन सपाल, आशा सपाल, विशाल की फरमाइश शास्त्री नगर बीट शहर से मौसूल हुई है। कस्बा गरवाल मंडी टटीरी बागपत ने आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और सादिक अली खान। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं नाहर मंटोला मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना, मोहम्मद साजिद अली और फारूक अली खान। फैजी फराज हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से। और अगला नगमा आपकी नजर करते हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान के बबलेश्वर डैनी पवार, साथ में मास्टर मनीष। और ईमेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइडलाइन। आनंद जोशी, तनुजा जोशी, फाल्गुनी जोशी हैं प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा एमपी से। उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, समरीन परवीन और उनके बहुत सारे साथी। और अगला ईमेल गिरडी झारखंड से मिला है सैयद शमा परवीन, बाबू सुफियान और अर्शी सुल्तान का। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहरी अंसारी, रजी बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी। इससे पहले कि नगमा हम आपकी नजर करें, आपके लिए एक सरप्राइज, और वो सरप्राइज ये है कि आज आपका हमारा साथ रहेगा 11:45 तक, यानी 15 मिनट जायद मिले हैं आज आपकी और हमारी मुलाकात को। और अगला ईमेल बड़ी तवालत लिए हुए है और नई दिल्ली से इंद्रजीत कौर छाबड़ा, रविंदर सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, बहुत कुछ लेकर भेजा है एक ऐसी शख्सियत के लिए जिनको आज याद कर रहे हैं उनके चाहने वाले। आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। मेरे कैफ आगे बढ़ते हैं, अगला ईमेल फिर रिपीट है, इसको विश करते हैं साइड लाइन, क्योंकि कुछ दोस्त बार बार ईमेल इरसाल करते हैं। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं अगला नगमा तामिलीशाद प्रोग्राम का, मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, साथ में नदीम पटेल। और जाफरगंज जहानाबाद बिहार से इंतजार में है इस नगमे को सुनने के लिए इंतजार अंजुम और आलम आरा। और ये फरमाइश ईमेल उन दोस्तों का जो हो चुके हैं अब से कुछ देर पहले शामिल। गानीबाग ककोला से अगला ईमेल मिला है रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर और धनंजय का। और आप हैं उमेर उज्जैन एमपी से भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया और उनके कुछ और साथी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी की फरमाइश भी है। और आप हैं श्याम केटे बंद्रा किले और कार्तिक केटे राहटगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। और अब आप सबको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे हुजूर फिल्म का खूबसूरत नगमा शंकर जयकिशन के मौसीकी में, और यकीन इसके कलमकार भी हैं हसन जयपुरी।

फिलहाल तो हम कहीं जाने वाले नहीं है जनाब। 11:45 तक आपका और हमारा रहेगा साथ। फिलहाल तो फरमाइशें शामिल करते हैं इस नगमे की। आरजू फिल्म का नगमा था, लता मंगेशकर के आवाज में, हसन जयपुरी का लिखा हुआ और शंकर जयकिशन की थी। मौसीकी सुनना चाहते थे मलकापुर बुल्डाना महाराष्ट्र से नारायण इंगले, मंगला इंगले और राजकुमार खर्चे। और ये फरमाइशें मेल मौसूल हुआ भोला कॉलोनी घरौंदा करनाल से विजेंद्र कुमार जयजान कांतरानी गुंजन की जानिब से। और आप हैं मास्टर विट्ठल सुरोशे, मायरा सुरोशे और सुषमा सुरोशे काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से। और ये फरमाइशी मेल नाज मंजिल मैसूर सीतामणि बिहार से मौसूल हुआ अकरम हुसैन।

0: बेगम इशाता का, मरुबीना वसीम का, और इसी नगमे को सुनना चाहते थे हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, भाटापारा छत्तीसगढ़ से, चंदेश गौर वंदना गौर जयपाल यादव की फरमाइश सागर एमपी से मौसूल हुई, और आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। इसी नगमे को सुनना चाहते थे वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जमशेदपुर फरमाइश से फरमाइश की अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी और राकेश कुमार ने। इसी नगमे को सुन रहे थे सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और शव्या रामटेके। ये फरमाइश ई मेल अकोला से मिला विजय वडालकर, लता वडालकर का, और आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हरविंदर चावला, सोहन जोशी और शिव कुमार शर्मा, और मुल्लापुर दाका से राजेश जैन, बिट्टू जैन और अत्रो जैन की फरमाइश भी थी, और इसी नगमे को सुनना चाहते थे बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र के वो दोस्त जो पहले हो चुके हैं शामिल, और आगे बढ़ते हैं। एक और ईमेल शामिल कर लेते हैं वरुण जोलका से, महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे, साथ में मिलिंद सरकटे, और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ हीरामन शिंदे और शीला देवी शिंदे का, किशोर नगर अमरावती महाराष्ट्र से। दिग्गज जिला यवतमाल महाराष्ट्र से फरमाइश की थी इस नगमे के लिए किरण शिंदे और हनुमान दास साहू ने, और आप हैं सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, साथ में कल्पित चौहान और सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल की फरमाइश थी जामनिया गाजीपुर से, और इसी नगमे को सुन रहे थे नोमान माहिर शेख, रोमा शेख और मोहम्मद आसिफ शेख, नाला सोपारा मुंबई महाराष्ट्र से, और आरजू फिल्म के इसी नगमे की फरमाइश आपने भी की थी खैर बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, और आप हैं राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रानी मुकेश गुप्ता, और अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी की फरमाइश थी बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से, और इसी नगमे को सुन रहे थे गांव हंडीखेड़ा सिरसा हरियाणा से राधे श्याम शर्मा, इंद्र शर्मा और सार्थक शर्मा, और आप हैं रामपुर नालापारा बाग छोटे साहब से नवाबुद्दीन निजामुद्दीन और मोहम्मद जमाल उद्दीन। तामिलेश्वर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से अपने मेजबान नईम के साथ। दोस्तों ये प्रोग्राम अभी जारी है, आइए पहले सुनते हैं खबरें बरे सगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन, और उसके बाद सिलसिला जारी रहेगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम का।
1: ये आकाशवाणी है बरे सगीर की खबरों के साथ मैं तौहीद हकानी। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया है। सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हुए हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि वह तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा, जबकि अमरीका ने रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने का बिल मंजूर किया है। वजीर ख्वाजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की के लिए पुरअज़्म है, और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 76वीं सालगिरह और अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल एतमाद मैन्युफैक्चरिंग मराकज की तलाश में है, और मुल्क इस जरूरत को पूरा करने के लिए मुस्तकिल तौर पर खुद को तैयार कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अहम सनदों में भारत की तरक्की आलमी सप्लाई चेन को मजबूत बनाएगी और सप्लाई के बदलते हुए चैलेंजों के दरमियान नए मौके फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी ने यह बात नई दिल्ली के यशो भूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करते हुए कही। وزیر اعظم مودی نے اجاگر کیا کہ بھارت کا سیمی کنڈکٹر ایکو نظام تیزی سے وسیع ہو رہا ہے اور اختراع سرمایہ کاری اور ترقی کے نئے مواقع فراہم کر رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی معیشت ترقی کر رہی ہے جبکہ ملک پر دنیا کا اعتماد بھی بڑھ رہا ہے.

तामलेशाद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उर्दू सर्विस से अपने मेजबान नईम के साथ। ये प्रोग्राम आज जारी रहेगा जनाब 11:45 तक, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ईमेल शामिल हो सकते हैं। पतिता फिल्म का दुगाना है, लता मंगेशकर हेमंत कुमार का गाया हुआ, शंकर जयकिशन की मौसीकी और हर्ष जयपुरी ने इसे लिखा। सुना जाते हैं हम बगड़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया और रिहान और उनके कुछ और साथी। इसी नगमे को सुनने के मुंतजर पश्चिम थोक गंज डंडवा से मास्टर नीम रजा सिद्दीकी, मास्टर मनोवर हुसैन अंसारी और साथ में नईम रजा सिद्दीकी। इसी नगमे की फरमाइश हमारे कुछ और दोस्तों ने की। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोटी ठाकुर साहेब और एडवोकेट ममता मोदी। और अगला ईमेल सुल्तानपुर यूपी से मिला है, यशमीत यशु निरंजन सिंह सौम्या सिंह का और कुछ और साथी भी साथ में शामिल हैं। आवास विकास कॉलोनी कासगंज से हैं पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, सुरेश आशीष गौड़। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं बरगद बेल हुबली कर्नाटक से फैज अहमद, शाकिर मुल्ला जी और साबिर मुल्ला जी। और ये फरमाइश ईमेल मिला है मोटाला महाराष्ट्र से विजय सरलकर, रत्नमाला और आरती कुमारी का। और अगला नगमा आपकी नजर भी करते हैं, सुशांत प्रिया, मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमारी, टिम्बर मार्केट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली से। और इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल और

आपको सुनवाते हैं तमिशात प्रोग्राम में अप्रैल फूल फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ हस्त जयपुरी के बोल नव और मौसी शंकर जयकिशन की है। सुनना चाहते हैं मीरखुसरो रोड गंज टंडवा से डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम शबनम अनवर और भुवन प्रकाश गौतम लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पनता लोखंडे शैलेश लोखंडे गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से इसी नगमे को सुनना चाहते हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं जनाब। और बड़ी हैवी चौराहा वाराणसी से सुनना चाहते हैं इस नगमे को अरुण कुमार मालवेदर त्रिभुवन नाथ मालवीय और अहले खाना। और अगला ईमेल मिला है समीरा खान कामरान खान हुरैन अजीम का मौला पठान कुरावली से। अगली फरमाइश के लिए जो ईमेल है वो है बुल्डाना वटशिंग महाराष्ट्र से अमोल मानकर शुभताई मानकर दीपाली और साथियों का। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं कैलाश फूलमाली दीपक फूलमाली वेदिका फूलमाली अहमदपुर खेगांव खंडवा से और मेहर अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा ममता अरोड़ा की फरमाइश पदमपुर श्रीगंगानगर से मिली है। और सुशांत प्रिया मास्टर निवेश कुमार ये पहले शामिल हो चुके हैं जहां तक मुझे याद है। और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं अजमेर शरीफ राजस्थान से सैयद आलम हाशमी गुलनाज सलमा हाशमी साथ में मोहम्मद आलम हाशमी। और टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दीवे राहुल डोंगर दीवे और रमताई डोंगर दीवे की फरमाइश भी है। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं रामगढ़ गेंद से कुलदीप सिंह होरा और उनके कुछ और साथी। और ये फरमाइश मेल मिला है गांव दौलेवाला मोगा पंजाब से स्वर्ण सिंह साहब का है। और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं तंगौरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगौरी जसबीर कौर और सहजप्रीत सिंह। अगला मेल उन दोस्तों का जो हो चुके हैं शामिल तो आगे बढ़ते हैं जनाब। स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी लड्डू कुमारी और साथ में टुक टुक। और दुबई सेलू से चंद्र कुलकर्णी हेमलता सी आर कुलकर्णी। और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है ऊपरकोट मोहल्ला चाकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन अब्बासी शाहनवाज सरफराज अब्बासी का। और तमराम चेन्नई से शाहिद अली इफ्फत फारूकी और हिफ्जा अली। और ये फरमाइश जलालपुरा सहारनपुर यूपी से मिली है श्रवण कुमार प्रजापति शिवम प्रजापति आर्यन प्रजापति की जानिब से। और आप हैं गुनौर से आदिल कमर तस्दीक अली और साथ में मुजफ्फर अली। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रेटा भाटिया और मयंक भाटिया। बठिंडा मंडी डब्बाली से हैं राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग बठिंडा रोड से दरअसल इनकी फरमाइश हमें मौसूल होती है। और इसी नगमे को सुनने के मतमन्नी बाजार फैल शेगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मोहाल मोहम्मद दानिश मोहाल मोहम्मद रिजवान मोहाल। और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा निखिल वर्मा यशस्वी वर्मा। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा

नींद तो उन दोस्तों को भी नहीं आने की जिनके नाम अभी तक शामिल नहीं हुए, तो चलिए उनकी नींद का इंतजाम करते हैं। जनकपुर सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो, और ये फरमाइश आई है मोहम्मद करीम अंसारी, जाहिर बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, गंजे टंडवारा कासगंज से, और छह मंदिर चौक खंडवासी दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी और गौरव सैनी भी साथ में शामिल है। आदर्श नगर मरोड पंजाब से फरमाइश की राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा ने, और आप हैं पटियाली रोड गंज डंडवासी हम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और बेबी अरिबा हबीबा, और कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसूर, शाहीन हसन, नासिया इब्राहिम की फरमाइश भी है। गुलाबदास मानिकपुरी, राजदास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी हैं, लेवाई छत्तीसगढ़ से। अगला मेल मिला है पांडु चंदन, उषा चंदन और प्रतीक्षा का, कुमार गली कोलगांव से। कुमारी से अनुप कुमार और उद्धव पाटिल, और हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक और तन्नू की फरमाइश है। बेडी एमपी से ये फरमाइश मेल मौसूल हुआ है। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंदाने, अर्चना ताई गोंदाने का, और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश। और अगले मेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइड लाइन, और इसी नगमे को सुनने के मुतवन्नी है वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं, तो ये रिपीटेशन का सिलसिला है जनाब। अब्दुल वफा डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, नाचुन रोड, संजय कॉलोनी खंडवा से सुना इस नगमे को, डोमन ठाकुर, और मुझे लगता है कहीं पहले ये शामिल तो नहीं हुए हैं, सुमन ठाकुर, मुझे लगता है पहले ही शामिल हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला मेल भी रिपीट है, इसको भी साइडलाइन करते हैं। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र में अभिजीत गौन कर रही, सरिता गौन कर, अर्जुन कुमार डुक्कू भी हैं साथ में शामिल, और पोफाली यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता, और ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता है थाना रोड बक्सर से, इसी नगमे को सुन रहे हैं। गांव वाला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर और आरती रानी, और इस बीच में नगमा भी हो रहा है खत्म, एक और नगमा आपकी नजर करते हैं, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ नगमा है, हरियाली और रास्ता फिल्म से।

इस नगमे की फरमाइश की सहारनपुर से सुरेश नारंगाशु नारंग और विनोद पुरी ने, और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित रमेश साहू। और अगला मेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइड लाइन। हरजिंदर छिंदा साथ में उनके हैं, जसवी जस्सी अस्सीता गीता गांव नथाना पंजाब से। इसी नगमे को सुनने के मुंतजर वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं जनाब। पुष्पेंद्र रावल, इंदिरा रावल, अयाश रावल, बड़वा एमपी से आपकी फरमाइश में मौसूल हुई है। अगले मेल फिर रिपीट हो गया, इसको भी साइड लाइन करना पड़ेगा। मनमोहन राजावत राज, मधुर राजावत राशि रक्षित हैं, आपने राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश हमें सैल की है। कृष्णा कॉलोनी हासिल, सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बब्बू टप्पू और धन्य छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से हैं। और ये फरमाइश मिली है पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेन्द्र जुनेजा, सीमा जुनेजा की। इसी नगमे को सुन रहे हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंत भगत, अरुणा भगत और चेतन भगत और मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और जयराज प्लॉट से आपने फरमाइश की है। साथ में उनके हैं प्रयागराज भट्ट। और अगले मेल यवतमाल इधर से संतोष खटसे, विनोद खटसे का। और ये फरमाइशी मेल मौसूल है सल्लर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और कैसरुद्दीन की जानिब से। और भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा विशु हैं, फाजिलका पंजाब से। पलसी से विजय शेगोकार और ऋषिकेश शेगोकार। और ये फरमाइश उन दोस्तों के जो हो गए हैं शामिल, तो आगे बढ़ते हैं।

0: सिक्किम की मौसी में अभी आप सुन रहे थे पंडित मनीराम का गाया राग भोपाली में विलंबित और द्रुत में ख्याल। इसके साथ ही बज़्म मौसीकी अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 12 बजे हैं, अब आलमी खबरें नशे की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तौहीद हक्कानी से आलमी खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया है। सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हुए हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि वह तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा, जबकि अमरीका ने रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने का बिल मंजूर किया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 76वीं सालगिरह और अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है और यूक्रेन की राजधानी और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किए गए रूस के हमलों में कम से कम 19 अफराद जख्मी हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल एतमाद मैन्युफैक्चरिंग मराकज की तलाश में है और मुल्क इस जरूरत को पूरा करने के लिए मुस्तकिल तौर पर खुद को तैयार कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अहम सनअतों में भारत की तरक्की आलमी सप्लाई चेन को मजबूत बनाएगी और सप्लाई के बदलते हुए चैलेंजों के दरमियान नए मौके फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी ने यह बात नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करते हुए कही। वजीर आजम मोदी ने उजागर किया कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निजाम तेजी से वसी हो रहा है और इख्तरा सरमायाकारी और तरक्की के नए मौके फराहम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की मईशत तरक्की कर रही है, जबकि मुल्क पर दुनिया का एतमाद भी बढ़ रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में मुनक्किदा ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत ने कामयाबी के साथ इस सरबराह मीटिंग की मेजबानी की, जहां नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि यह भारत पर बढ़ते हुए आलमी एतमाद का एक और सबूत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि अगला कदम सेमीकॉन 2.0 के जरिए सनअत को फरोग देना है, जो 6 अहम सुतूनों सेमीकंडक्टर डिजाइन, मशीनरी और मवाद, सिलिकॉन कंपाउंड, लॉजिक फैब्रिकेशन और तहकीक और तरक्की पर मरकूज है। जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत का मकसद

सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में चिप डिजाइन के सेक्टर में कम से कम 200 स्टार्टअप और कंपनियों की मदद करना है। बाद में नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन 2.0 इको निजाम के तहत अब तक तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हो चुके हैं। रूस खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर अमरीका की जानिब से 100% महसूल आयात करने वाले कानून के मंजूर होने के बाद भारत ने कहा है कि वह अपने माशी मफादात के तहफ़ और तवानाई की जरूरतों को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। वजारत खारजा ने कहा कि भारत अपने 140 करोड़ शहरियों की तवानाई की जरूरतों को पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है और मुख्तलिफ ज़राए और बदलती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तवानाई हासिल करने का सिलसिला जारी रखेगा। वजारत ने कहा कि हालिया महीनों में इस मुद्दे पर अमरीका के आला सतह हुकाम से बातचीत हुई है। भारत ने दोतरफा ताल्लुकात पर इसके मुमकिन असरात वाज़ेह कर दिए हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह अहद बस्ता है। उन्होंने भूटान के वजीर आजम शेरिंग टोपके और वजीर खारजा डीएन डोंगेल के हमरा भूटान आने वाले भारतीय शहरियों के लिए बैन अवी यूपीआई के दूसरे मरहले का मुश्तरका तौर पर आगाज किया। डॉ जयशंकर थिम्पू भूटान के दो रोजा दौरे पर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई के इस्तेमाल के साथ ये इकदाम भारत और भूटान के दरमियान यूपीआई पर मबनी दोतरफा डिजिटल अदायगी की कनेक्टिविटी को मुकम्मल करता है। इस मौके पर भारतीय इदारों में आला तालीम हासिल करने वाले भूटान के तलबा के लिए नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप स्कीम में तौसी से मुतालिक मफाहमत नामे का भी तबादला किया गया। डॉ जयशंकर ने इसे तालीम और सलाहियत साजी के शोबे में भारत और भूटान के बाहमी तआवुन को मजीद आगे बढ़ाने वाला कदम करार दिया। जनाब जयशंकर ने वजीर आजम टोबगे को भारत में तैयार करदा 54 इलेक्ट्रिक गाड़ियां सौंपी। उन्होंने कहा कि भारत ई मोबिलिटी और पायदार ट्रांसपोर्ट की जानिब भूटान की पेशकदमी की हिमायत कर रहा है। बीजेपी ने कल वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की 76वीं सालगिरह के मौके पर एक माह तक जारी रहने वाला मुल्कगीर सेवा संकल्प अभियान शुरू किया। जनाब मोदी 1950 में कल ही के दिन गुजरात के महसाना जिले में वाकई एक छोटे से शहर वारनगर में पैदा हुए थे। इस अभियान का मकसद वजीर आजम मोदी की अवामी खिदमत के अज़्म को उजागर करना और लोगों खासतौर पर नौजवानों को अवाम की खिदमत के मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेने की तरगीब देना है। यह मुहिम 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के वजीर आला के तौर पर नरेन्द्र मोदी के हलफ लेने के 25 साल मुकम्मल होने के मौके से भी मुंसलिक है। यह मुहिम अगले माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और गुजरात के वजीर आला भूपेन्द्र पटेल ने इस मुहिम का आगाज जनाब नरेन्द्र मोदी के आबाई शहर वादनगर से किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की अवामी जिंदगी को मुल्क मुकदम के उसूल से बेहतर तौर पर बयान किया जा सकता है। इस अभियान के पहले दिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके तहत मुल्क भर में खून हत्या करने के कैंप लगाए गए हैं। बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में खून हत्या कैंप का इफ्तिताह किया और पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों के साथ खून हत्या किया। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने खाटू श्याम मंदिर में हवन किया। कल शाम आशीर्वाद का दिया प्रोग्राम का भी इनकाद किया गया, जिसके तहत खानदानों खासतौर पर सरकारी स्कीमों के मुस्तफिदीन ने अवामी खिदमत में जनाब मोदी के 25 साल मुकम्मल होने पर तशक्कुर का इजहार करते हुए दिए जलाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने कल वजीर आजम मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन, इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू समेत दुनिया के कई रहनुमाओं ने वजीर आजम मोदी को उनके 76वें यौम पैदाइश पर पुरजोश मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में उनकी क्यादत और ताउन के लिए भरपूर सताइश की। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कोयले की वजारत ने कल नई दिल्ली में कमर्शियल कोयला कानों की नीलामी के 16वें दौर का आगाज किया। इस मरहले में 25 कोयला ब्लॉक्स की नीलामी की जा रही है, जिनमें 21 काने मुकम्मल तौर पर और 4 जुजी तौर पर दरियाफ्त शुदा हैं। ये काने कोयला पैदा करने वाली 9 रियासतों अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और मगरबी बंगाल में वाक है। वजारत के मुताबिक आज की तारीख तक कुल 147 कोयला कानों की नीलामी की जा चुकी है, जिससे सालाना मुतवक्का आमदनी 47,500 करोड़ रुपए से जायद होगी, जबकि मुतवक्का सरमायाकारी

0: 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। रूस की राजधानी और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किए गए रूस के मिसाइल और ड्रोन के शदीद हमले में कम से कम 19 अफराद जख्मी हो गए हैं। कैफ में 10 से ज्यादा मकामात पर हमले हुए और वसीतर खित्तों में 33 मकामात को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा जनूब में वाकई शहर ओडिशा में 7 अफराद जख्मी हो गए। ड्रोन हमले में तंजानिया के परचम बरदार तिजारती जहाज का कैप्टन मारा गया और इसके 3 अमले जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी फौज ने रोस्तोव के एक हवाई अड्डे और यारोस्लावोल के एक तेल रिफाइनरी पर जवाबी हमले किए। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने ओर्नमोस्क के बंदरगाह पर पानी के जहाजों समेत यूक्रेन की तवानाई सनती और ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे पर भी हमले किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को आलाएकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल-ए-एतमाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हुए हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि वह तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा, जबकि अमरीका ने रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 100% महसूल आयद करने का बिल मंजूर किया है। वज़ीर ख़ारिजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोदी की 76वीं सालगिरह और अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है और यूक्रेन की राजधानी और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किए गए रूस के हमलों में कम से कम 19 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसी के साथ आलमी खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। क्लासिकी मौसीकी में लीजिए आप सुनिए श्री कृष्ण शर्मा का गिटार पर बजाया राग श्याम कल्याण।

0: अगला कहीं का फिल्म का इलाक आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, हसन जयपुरी का लिखा हुआ, मौसीकी शंकर जयकिशन की थी। और इस नकमे के साथ ही आखिरी शब प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप तौहीद हकानी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हुए। भारत ने जोर देकर कहा है कि वह तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा, जबकि अमरीका ने रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने का बिल मंजूर किया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की के लिए पुरअज्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 76वीं सालगिरह और अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है। और यूक्रेन की राजधानी और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किए गए रूस के हमलों में कम से कम 19 अफराद जख्मी हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल एतमाद मैन्युफैक्चरिंग मराकज की तलाश में है और मुल्क इस जरूरत को पूरा करने के लिए मुस्तकिल तौर पर खुद को तैयार कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अहम सनअतों में भारत की तरक्की आलमी सप्लाई चेन को मजबूत बनाएगी और सप्लाई के बदलते हुए चैलेंजों के दरमियान नए मौके फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी ने यह बात नई दिल्ली के यशो भूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करते हुए कही। वजीर आजम मोदी ने उजागर किया कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निजाम तेजी से वसी हो रहा है और एक तरह की सरमायाकारी और तरक्की के नए मौके फराहम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की मईशत तरक्की कर रही है, जबकि मुल्क पर दुनिया का एतमाद भी बढ़ रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में मुनक़िदा ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत ने कामयाबी के साथ इस सरबराह मीटिंग की मेजबानी की, जहां नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि भारत पर बढ़ते हुए आलमी एतमाद का एक और सबूत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगला कदम सेमीकॉन 2.0 के जरिए सनअत को फरोग देना है, जो 6 अहम सतूनों सेमीकंडक्टर डिजाइन, मशीनरी और मवाद, सिलिकॉन कंपाउंड, लॉजिक फैब्रिकेशन और तहकीक व तरक्की पर मरकूज है। जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत का मकसद सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में चिप डिजाइन के सेक्टर में कम से कम 200 स्टार्टअप और कंपनियों की मदद करना है। बाद में नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन 2.0 इको निजाम के तहत अब तक तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हो चुके हैं। रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर अमरीका की जानिब से 100% महसूल आयात करने वाले कानून के मंजूर होने के बाद भारत ने कहा है कि वह अपने माशी मफादात के तहफ्फुज़ और तवानाई की जरूरतों को यकीनी बना

ने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। वजारत खारजा ने कहा कि भारत अपने 140 करोड़ शहरियों की तवानाई की जरूरतों को पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और मुख्तलिफ जराए और बदलती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तवानाई हासिल करने का सिलसिला जारी रखेगा। वजारत ने कहा कि हालिया महीनों में इस मुद्दे पर अमरीका के आला सतही हुक्काम से बातचीत हुई है। भारत ने दो तरफा ताल्लुकात पर इसके मुमकिन असरात वाज़ेह कर दिए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह अहदबस्ता है। उन्होंने भूटान के वजीर आजम शेरिंग टोपके और वजीर खारजा डी एन डुंगेल के हमरा भूटान आने वाले भारतीय शहरियों के लिए बैन अक्वामी यूपीआई के दूसरे मरहले का मुश्तरका तौर पर आगाज किया। डॉक्टर जयशंकर थिम्पू भूटान के दो रोजा दौरे पर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई के इस्तेमाल के साथ ये इकदाम भारत और भूटान के दरमियान यूपीआई पर अपनी दो तरफा डिजिटल अदायगी की कनेक्टिविटी को मुकम्मल करता है। इस मौके पर भारतीय इदारों में आला तालीम हासिल करने वाले भूटान के तलबा के लिए नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप स्कीम में तौसी से मुतालिक मफाहमतनामे का भी तबादला किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने इसे तालीम और सलाहियत साजी के शोबे में भारत और भूटान के बाहमी तआवुन को मजीद आगे बढ़ाने वाला कदम करार दिया। बीजेपी ने कल वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की 76वीं सालगिरह के मौके पर एक माह तक जारी रहने वाला मुल्कगीर सेवा संकल्प अभियान शुरू किया। जनाब मोदी 1950 में कल ही के दिन गुजरात के महसाना जिले में वाकई एक छोटे से शहर वाडनगर में पैदा हुए थे। इस अभियान का मकसद वजीर आजम मोदी की अवामी खिदमत के अज़्म को उजागर करना और लोगों खासतौर पर नौजवानों को अवाम की खिदमत के मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेने की तरगीब देना है। यह मुहिम 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के वजीर आला के तौर पर नरेन्द्र मोदी के हलफ लेने के 25 साल मुकम्मल होने के मौके से भी मुंसलिक है। यह मुहिम अगले माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी। कोयले की वजारत ने कल नई दिल्ली में कमर्शियल कोयला खानों की नीलामी के 16वें दौर का आगाज किया। इस मरहले में 25 कोयला ब्लॉक्स की नीलामी की जा रही है जिनमें 21 खाने मुकम्मल तौर पर और 4 जुजवी तौर पर दरियाफ्त शुदा हैं। ये खाने कोयला पैदा करने वाली 9 रियासतों अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और मगरबी बंगाल में वाकई हैं। वजारत के मुताबिक आज की तारीख तक कुल 147 कोयला खानों की नीलामी की जा चुकी है जिससे सालाना मुतवक्का आमदनी 47,500 करोड़ रूपये से जायद होगी जबकि मुतवक्का सरमायाकारी 55,000 करोड़ रूपये से ज्यादा होगी। नीलामी की तकरीब से खिताब करते हुए कोयला और खानों के वजीर मुमलिकत जनाब सतीश चंद्र दुबे ने भारत की तरक्की में कोयले के अहम रोल को उजागर किया। दही तरक्की और ज़राअत और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने अहलकारों को हिदायत दी है कि वो उन मौके की निशानदेही करें कि किस तरह विकसित भारत जी राम जी स्कीम गांवों को तरक्की याफ्ता और खुदकफील बनाने में मुआविन साबित हो सकती है। स्कीम से मुतालिक एक कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने जोर देकर कहा कि रोजगार के मौके पैदा करने के साथ साथ इस स्कीम को पायदार असासे कायम करने और देही बिरादरियों के लिए देरपा फायदे और देही मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए कारामद बनाना चाहिए। जनाब चौहान ने सभी अहदेदारों से अचानक मुआयना करने की हिदायत की ताकि स्कीम के तहत शुरू किए गए कामों का जायजा लिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कल सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई से कहा है कि वो छठी जमात के तलबा के लिए लाजमी तौर पर 3 जबानों की पॉलिसी को 2027 के तालीमी सेशन तक मौखर करने पर गौर करे ताकि तलबा को नए निजाम में मुंतकिल होने में आसानी फराहम हो। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने तलबा की सहूलत की खातिर इसे मौखर करने की तजवीज दी। तहम जो तलबा इस वक्त छठी जमात में है और इस साल 3 जबानें पढ़ना चाहते हैं उन्हें यह मौका देना चाहिए। ये कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 के मुताबिक है जिसके तहत तलबा को 3 जबानें पढ़ना होगी जिनमें कम से कम 2 हिंदुस्तानी जबानें होना जरूरी है। यूक्रेन की राजधानी और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किए गए रूस के मिसाइल और ड्रोन के शदीद हमले में कम अज कम 19 अफराद जख्मी हो गए। कैफ में 10 से ज्यादा मकामात पर हमले हुए और वसी तर खितों में 33 मकामात को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा जुनूब में वाकई शहर ओडेसा में 7 अफराद जख्मी हो गए। ड्रोन हमले में तंजानिया के परचम बरदार तिजारती जहाज का कैप्टन मारा गया और इसके 3 अमले जख्मी हो गए।
آخر میں

0: بس خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے سپلائی چین کو آلائے کار کے طور پر استعمال کرنے کے درمیان بھارت کو عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر پیش کیا. سیمی کون 2.0 پروگرام کے تحت 1,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے وعدے موصول ہوئے. بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا, جبکہ امریکہ نے روسی خام تیل خریدنے والے ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کا بل منظور کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بھوٹان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم مودی کی 76ویں سالگرہ اور عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک بھر میں 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکل ابھیان شروع ہو گیا ہے. اور یوکرین کی راجدھانی اور آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے روس کے حملوں میں کم از کم 19 افراد زخمی ہو گئے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کا 1 بجا جاتا ہے. ہماری تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. صبح 9:30 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر. جے ہند.
2: نمسکار. آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں انجلی. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है. श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं.
3: बीते 1 दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है. साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है. भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए.
2: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है. सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही. श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है. सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी. ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है. इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है. उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया. इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है. विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है. संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक वैध रहेगा. इन दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी पासपोर्ट की वैधता उसी समय समाप्त हो जाएगी. वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा. मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के लिए आयोजित किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों पक्षों को

0: पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया है। आयोग ने अंतरिम आदेश में दोनों पक्षों को आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों में से अलग अलग चिन्ह चुनने और नया पार्टी नाम रखने को कहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। इसके साथ ही ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वो 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावाला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने आज उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said, the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi yesterday.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Mr. Modi said the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. Later, addressing a press conference on the sidelines of the event yesterday, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav said investment commitments worth around 1 lakh crore rupees have been received so far under the Semicon 2.0 ecosystem. He said India will target at least 200 startups and companies engaged in chip design under the next phase of its semiconductor mission, Semicon 2.0. The three-day conference and exhibition bring together global semiconductor and electronics ecosystem to foster collaboration, drive innovation, strengthen manufacturing capabilities, attract investment and develop future-ready talent. India said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security. The External Affairs Ministry said yesterday the country remains firmly committed to ensuring energy security for its 140 crore people and will continue to do so through diversified sourcing and on the basis of evolving market dynamics. The statement came amid the passage of a bill by the US House of Representatives that will allow President Donald Trump to impose tariffs of up to 100% on countries for procuring Russian crude oil. The BJP launched a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan yesterday to mark Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday. Mr. Modi was born on this day in 1950 in a small town of Vadnagar in Mehsana district of Gujarat. The campaign focuses on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The drive also marks 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. It will continue till 17th of next month. Senior BJP leader and Union

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाजी से ये गीत गीता दत्त, लता मंगेशकर व अन्य आवाजों में। अगली आवाज तलत महमूद की आपको सुनवाने जा रहे हैं।

और अब पेश है अगला गीत फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से लता मंगेशकर की आवाज में। बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत से पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे और अगला जो गीत आपके लिए आ रहा है वो है फिल्म माँ बाप से। गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं, संगीत चित्रगुप्त का है। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे। अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज। फिल्म कटी पतंग से ये अगला गीत आ रहा है, प्यार दीवाना होता है।

और अब है प्यार के नगमे की बारी। जी हाँ, जिसके बोल हैं एक प्यार का नगमा है। फिल्म शोर से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत आपके लिए आ रहा है, जिसके बोल संतोष आनंद ने लिखे थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था।

ऐसा गीत जिससे आप गुनगुनाए बिना नहीं रह सकते जब आप इस गीत को सुन रहे हैं। भाई मैंने यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा दी थी और साथ में गुनगुनाया भी है। चलिए अब अंत में एक गीत आपके लिए आ रहा है और फिल्म आशा से लता मंगेशकर की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने संगीत दिया है। आइए सुनते हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। रात्रि के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल थिम्फू में भूटान नरेश जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ शंकर ने कहा, भूटान और भारत के बीच विशेष मित्रता को और मजबूत करने के लिए भूटान नरेश का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक वैध रहेगा। अमरीका ने ईरान के राष्ट्रपति मजूस पेजेशकियन और विदेश मंत्री अब्बास आराग्ची सहित वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों को अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए वीजा मंजूर किया है। अमरीकी विदेश विभाग के अनुसार ईरान के मुख्य प्रतिनिधिमंडल और जरूरी कर्मचारियों को भी वीजा दिया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमरीका और ईरान के बीच 6 महीने से अधिक समय से संघर्ष जारी है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया है। आयोग ने दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने लिए 3-3 नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के 3-3 विकल्प देने को कहा है। इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह आयोग आवंटित करेगा। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति पुणे जिले के लोनावला में कैवल्य धाम के गोवर्धन दास सेक्सरिया योग और सांस्कृतिक संश्लेषण महाविद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के लिए आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा 9 और 10 सितंबर को देशभर के 272 शहरों में 454 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे टी20 मैच में 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 221 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 108, संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम 14 ओवर एक गेंद में 94 रन पर आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Tamil Congress factions from using party symbol and party name in West Bengal assembly polls. In an interim order yesterday, EC asked both TMC factions to choose any symbol notified by it and other party name for West Bengal assembly by polls. It has directed both party factions to submit three preferred names and symbols by today morning. In men's cricket, India crushed Afghanistan by 127 runs in T20 to complete a 3-0 series sweep in Delhi last night. Put into bat, India posted 221 runs for the loss of 7 wickets in stipulated 20 overs. In reply, Afghanistan were bowled out for 94 in 14.1 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्यरात्रि के 2:10 और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बहार, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कीर्ति, और गीतों की फहरिस्त तैयार है आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए निकल चलते हैं इस गीतों के सफर पर ठीक 3 बजे तक, बैक टू बैक और नॉन स्टॉप गीत आपके लिए।

इसी गीत के साथ नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार यहीं समाप्त करने की दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत और जुड़े रहिए हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए AR लाइव न्यूज 24x7।

0: रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विकास हो रहा है, इससे नवाचार, निवेश और विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की शुरुआत के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। श्री चौहान ने तेलंगाना के थिम्पापुर में किसानों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने रोड मैप तैयार किया है। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। वे 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावाला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति पुणे जिले के लोनावाला में कैवल्य धाम के गोवर्धन दास सेक्सरिया योग और सांस्कृतिक संश्लेषण महाविद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के लिए आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। इसके साथ ही यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड के ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया है। आयोग ने दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने लिए 3-3 नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के 3-3 विकल्प देने को कहा है। इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह आयोग भी आवंटित करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी अपने उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। एशियाई खेल 2026 में भारत का अभियान आज से शुरू होगा। मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे करोगी एथलेटिक पार्क में होगा। दोनों टीमों के बीच यह पहला मुकाबला होगा। एशियाई खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। मेघालय में पूर्वोत्तर जोन अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता लगभग 10 वर्ष के बाद फिर से आयोजित की जा रही है। यह टूर्नामेंट शिलांग के जवाहरलाल नेहरू इंडोर कॉम्प्लेक्स में कल से शुरू हो रहा है। इस प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में 250 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 3:10 और 10 सेकंड। साथियों, ये कार्यक्रम प्रस्तुत है बहुत ही खूबसूरत लाजवाब अनमोल रचनाओं के साथ। जी हाँ, कार्यक्रम गीत गजल। गीत गजल में आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत और गजल की पहली और बहुत ही शानदार खूबसूरत गजल।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, कभी खुशी से खुशी की तरह नहीं देखा, वाकई बहुत ही रूहानी खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, हरिहरन की आवाज में शानदार रचना, वेलवेट वॉइस। साथियों, ये एल्बम 1999 की है और कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, हरिहरन साहब की बहुत ही खूबसूरत मधुर आवाज में शानदार गजल। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर। यह गजल है बहुत ही प्यारी, खूबसूरत है गजल है और यह गजल अपने आप में बहुत ही अनमोल है, यूनिक गजल है। जी हाँ, बस्ती में इशारा फिल्म है और आवाज दी है रूप कुमार राठौड़ ने। इशारा एल्बम 1997 में प्रदर्शित हुई है और ये ख्वाब बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है और गीत कैस उल जाफरी के हैं और आवाज रूप कुमार राठौड़ की। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गजल।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गजलें भी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारी गजल। सुनते हैं एक और खूबसूरत गजल।

बेहद अनमोल खूबसूरत बेहतरीन गजल अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वफा का नाम बज़्मे लैला, रूना लैला की आवाज में बहुत ही खूबसूरत रचना भी आप सुन रहे थे। बज़्मे लैला 1996 प्रदर्शित गजल रही है और संगीत से सजाया है निसार बज़्मी ने। सुनते हैं एक और बेहतरीन गजल।

0: साथियों, समय हुआ है
1: एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गजल, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्रीमती सुधा रघुरामन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में श्रीमती सुधा रघुरामन प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्णा की रचना।

इस कार्यक्रम का समापन श्रीमती सुधा रघुरामन गुरु सुरजानंदा की रचना गंगाधीश्वरम शंकरम से करेंगी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। गायन अमुथा वार्षिणी अम्मु द्वारा। वंदे मातरम।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 सितंबर 2026।

5:10 से प्रसारित होगा कार्यक्रम आओ योग करें, और योग पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन 5:20 पर होगा देशभक्ति संगीत हिंदी फिल्मों से प्यारी जन्मभूमि। 5:30 पर होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी।

0: 6:10 पे होंगे कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुनेंगे आरती श्री संतोषी मां, और 6:40 पर होंगे कार्यक्रम रामधारी पर आधारित रचनाएं चिंतन। 6:45 पर होगा रामचरितमानस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: तातरे ओ मा

जाति दिष्ट अमृत तार कालुख खान उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेवा शब्द थार गाखड़ी बिखमकार ते नर पाव उतार किए निरपार सत संगत सहज थार जागी ले।

0: दर्शन परसे हैं गुरु के आठ साठ मज्जन होए।
1: सच तीरथ सत इशना और पोजन पाओ साच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुरु शब्द सच नाम संगति वो है जिस सच संयम वरत सच कबजन काल वख दर्शन परसे गुरु का साजन परवा।
2: अमय दृष्टि शुभ कराए हरे अग पाप सकल माला काम क्रोध अर लोभ मोह वस कर सब वाला सदा सुख मन वसाय दुख संसार खोवाय गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवै सुखो टल गुर सेविया अहनस सहज सुपाए दर्शन परसे आए गुरु काय जन्म मरण दुख जाए।

तोहे बन आवे देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बिठायो रहस्य किए सुरदेव तुह जस जा जा जम्पे असुर गए ते पाग पाप तिन पीतर कंपे काटे सो पाप ते नरो के गुर रामदास जिन पायो छतर सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जुन को दया।

0: अंतन पावत देव सबे मुनो इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप नशा द्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जन माहे तरी
1: सतगुर खेमा ताणिया जुग जूस समाणे अनपो नेजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत।

जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नहीं।

परम पै भूले सुखदारा से पीकल एक तम पंथ सुनो गुर संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास